कतहु न तावो शरण पावो करना मैं प्रभ करमया। सम्राथ अगाथ अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो, कर जोड़ नानक दान मांगे जन्म मरण निवार लेहो। अपराधी मतहीन निर्गुणा नाथ नीच, साठ कठोर कुलहीन व्याप्त मोह कीच, मल भरम कर्म अहं ममता मरण चीत न आवै, बंता विनोद आनंद माया अज्ञानता लपटावै। खिसै जोबन बदै जरुआ दिन हारे संग मीच, बिनवंत नानक आस तेरी शरण साधु राख नीच। परमे जन्म अनेक संकट महाजोन, लपट रहो तहे संग मीठे भोग सोन। भ्रमत पार अगांत आयो बहु परदेसै तायो, आवे ओढ़धारी प्रभ मुरारी सर्व सुख हरनायो। राखन हारे प्रभु प्यारे मुइते कछु ना होवा हो ना, सुख सहजानंद नानक कृपा तेरी तरै पौन। नाम तारी को धारे भगतै संसा कौन, जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवण। सुन श्रवण बाणी पुरख ज्ञानी मन निधाना पावहे, हर रंग राते प्रभ दाते राम के गुण गावहे। बसद गागद बन राज कलमा लिखण कौ जय होए पवन, बेअंत अंत न जाए पाया गही नानक चरण सरण। आसा महला पंजवा पुरख पते भगवान, ताकी शरण गही निरपो पे प्राण, चिंता सगल लही। मात पिता सुत मीत सुरजन इष्टबंध पजाणिया, गह कंठ लाया गुर मिलाया जस बिमल संत बखाणिया। बेअंत गुणिया नेक महिमा कीमत कछु ना जाए कही, प्रभ एक अनक अलख ठाकर ओट नानक तिस गही। अमृत बन संसार सहाई या पय राम नाम उरहार, बिहके दिवस गए। गत परम हो बिकार बिनसे जोने अमन सब रहे, अग्न सागर पय शीतल साध अंचल गए रहे। गोविंद गोपाल दयाल सम्राथ बोल साधु हर जय जय। नानक नाम ते आए पूर्ण साध संग पाई परम गते, जय देखो ते संग एको रव रहया, घट घट वासी आप विरलै कने लहया। जल थल महियर पूर पूर्ण कीट हस्त समानिया, आदि अंते मद सोई गुर प्रसादी जानिया। ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुणनिद जन कहया, सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नानक रव रहया। दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे, चरण कमल संग प्रीत कर मलट पाप टरे। दुख भूख दर दर नाठे प्रगट मग देखाया, मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया। हर देख दर्शन इच पुन्नी कुल संभूहा सब तरे, दिन सरैण आनंद आंदन सिमरंत नानक हर हरे। आसा महला पंजवा शंत कर सतवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक। शुभ चिंतन गोबिंद रमन निर्मल साधु संग, नानक नाम न ना विसरो एक कड़ी कर कृपा भगवंत संत। पिनी रैनड़िए चमकन तारे जागे संत जना, मेरे राम प्यारे राम प्यारे सदा जागे, नाम सिमरै आंदेनो चरण कमलो ध्यान हिरदय प्रभ बिसर नाही एक खेनो। तज मान मोह बिकार मन का कलमला दुख जारे, बिनवंत नानक सदा जागे हरदास संत प्यारे। मेरी से जिड़ी है आडंबर बनिया मन आनंद भया, प्रभ आवत सुनिया प्रभ मिले स्वामी सुखैगामी, चाव मंगल रस परे अंग संग लागे दुख भागे प्राण मंत्र सब हरे। मन इच्छ पाई प्रभ त्याई संयोग साहा शुभ गणिया, बिनवंत नानक मिले श्री तार सगल आनंद रस बनिया। मिल सखिया पुछे कौ कंतनी साणी, रस प्रेम भरी कछ बोल ना जानी।
ਗੁਣ ਗੂੜ ਗੁਪਤ ਅਪਾਰ ਕਰਤੇ ਨਿਗਮ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵਹੇ ਭਗਤ ਪਾਏ ਧਿਆਏ ਸਵਾਮੀ ਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹੇ ਸਗਲ ਗੁਣ ਸੁਗਿਆਨ ਪੂਰਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਣੀ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿ ਸਮਾਣੀ ਸੁਖ ਸੋਹਿਲੜੇ ਹਰ ਗਾਵਣ ਲਾਗੇ ਸਾਜਨ ਸਰਸਿਆੜੇ ਦੁਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਾਗੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਰਸੇ ਹਰ ਨਾਮ ਰਹਿਸੇ ਪ੍ਰਵਿਆਪ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀਆ ਹਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਸਦਾ ਜਾਗੇ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਬਨਵਾਰੀਆ ਸੁਭ ਦਿਵਸ ਆਏ ਸਹਿਜ ਪਾਏ ਸਗਲ ਨਿਧ ਪ੍ਰਭ ਪਾਗੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਸਵਾਮੀ ਸਦਾ ਹਰ ਜਨ ਤਾਗੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਉੱਠ ਮੰਜ ਵਟਾਉੜਿਆ ਤੈਂ ਕਿਆ ਚਿਰ ਲਾਇਆ ਮੁਹਲਤ ਪੁੰਨੜੀਆ।

नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार। पौड़ी बिन सतगुर कने ना पायो, बिन सतगुर कने ना पाया। सतगुर विच आप रखियो नु कर प्रगटिया सुनाया, सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया, जग जीवन दाता पाया। श्लोक महला पहला, हौं च आया हौं च गया, हौं जमया हौं च मुआ, हौं दिता हौं च लया, हौं च खटिया हौं च गया। हौं विच सत्यार कूड़ियार, हौं च पाप पुन विचार, हौं विच नरक सुरग अवतार। हौं विच हसै हौं विच रोवै, हौं विच भरीऐ हौं विच धोवै, हौं जाति जन सी खोवै। हौं विच मूर्ख हौं विच सियाणा, मूख मूत की सार ना जाना। हौं विच माया हौं छाया, हौं मैं कर कर जन तो पाया। हौं मैं बूझै तांदर सूझै, ज्ञान में हूणा कथ कथ लूझै। नानक हुक्मी लिखिया लेख, जेहा वेखै तेहा वेख। महला दूजा, हौं मैं यहा जात है, हौं मैं कर्म कमाहे। हौं मैं एही बंदना फिर जोनी पाहे। हौं मैं किथों उपजै कित संजम एह जाए। हौं मैं एहो हुक्म है पया किरत फिर आहे। हौं मैं दीर्घ रोग है दारू पिय समाहे, कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाहे। नानक कहे सुनो जनो, इत संजम दुख जाहे। पौड़ी सेव कीती संतोखी, जिनी सचो साहित्य आया। उन्नी मंदै पैर न रखियो, कर सुकिरत धर्म कमाया। ओनी दुनिया तोड़े बंदना, अन पानी थोड़ा खाया। तू बख्शी सी अगला, नित देवै चढ़ै सवाया। वड्याई वड्डा पाया। श्लोक महला पहला, पुरखां बिरखां तीर्थां तटां मेघां खेतां, दीपां लोवां मंडलां खंडां वरपंडां। अंडज जेरज उत्पजां खाणी सेत जाहां, सुमत जाने नानका सरा मेरा जनता हां। नानक जन तो पाए कै संभाले सब नाहा, जिन करते करना किया चिंता पे करनी ताहा। सो करता चिंता करे जिन उपाया जग, तिस जो हारी स्वस्थ तिस तिस दी बाणिया पग। नानक सच्चे नाम बिनु क्या टिका क्या तग। महला पहला, लख नेकियां चंगियाईयां लख पुन्ना प्रवान, लख तप उपर तीर्थां सहयोग बेबाण। लख सुरतन संग्राम रण में छुटै प्राण, लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िया पाठ पुराण। जिन करता करना किया लिखिया आवन जान, नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान। पौड़ी सच्चा साहब एक तू, जिन सचो सच वरताया। जिस तू देह तिस मिलै सच, ता तिन्नी सच कमाया। सतगुर मिलिया सच पाया, जिनकै हृदय सच वसाया। मूर्ख सच ना जाननी मनमुखी जन्म गवाया, विच दुनिया काहे आया। श्लोक महला पहला, पढ़ पढ़ गड्डी लदी है पढ़ पढ़ भरी है साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डी है खात। पढ़िया जेते बरस बरस, पढ़िया जेते मास, पढ़िया जेती आरजा पढ़िया जेते सास। नानक लेखे एक गल होर, हौं मैं चखना चाख। महला पहला, लिख लिख पढ़िया ते ता कढ़िया, बहु तीर्थ पव्या ते तो लव्या। बहु पेह किया देही दुख दिया, सोहवे जिया अपना किया। अन ना खाया साध गवाया, बहु दुख पाया दूजा पाया। बस्तर ना पहरै एनस कहरै, मोन विगूता क्यों जागै गुरबिन सूता। पग उपे ताणा अपना किया कमाणा, अलमल खाई सिर शाही पाई। मूर्ख अंधे पत गवाई, विण ना वै किश थाए ना पाई। रह बे बाणी मड़ी मसाणी, अंध ना जाने फिर पछताणी। सतगुर भेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए। नानक नजर करे सो पाए, आसा देसे ते नह केवल, होमै शब्द जलाए। पौड़ी भगत तेरे मन भावदे, दर सोहन कीर्त गावदे। नानक कर्मा बाहरे,
ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲੈਨੀ ਧਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣੇ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਦੇ ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜਿੱਤ ਜੈ ਧਿਆਏ ਦੇ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਵੈਸਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੁਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪਿਆ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨਿਹੋਂ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣਾ ਬੇਨਤੀ ਤੁਦਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੈ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਧੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਰੇਸੀਐ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੈ ਜੀਉ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕੈ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣੈ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੈ ਬਹਿ ਰਹਿ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੈ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੈ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਐ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਐ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲੱਖ ਧਿਆਈਐ ਫਲਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈਐ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਦੀ ਪਾਈਐ ਮਾ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਾਲ ਕਾਲ ਬੇਤਾਲ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੈ ਦਾਲ ਜੇ ਕਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ ਰੁੱਤੀ ਹੂੰ ਰੁੱਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੈ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੈ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਭੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈਐ ਸਰਮ ਪਹੁ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰੱਪੈ ਕੂੜੈ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਵਾ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇਵ ਸਤ ਪੁੱਛੀਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹੀਅਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਪਾਹੇ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ

देखो को निर्जास। वस्तु अंदर वस समावै, दूजी होवै पास। साहिब सेती हुक्म ना चलै, कही बने अरदास। कूड़ कमाणे कूड़ो होवै, नानक सिफत विगा।

पहर चोलना गधा नाचै पैसा भगत करावै। राजा राम ककरिया बरे पकाए कने बुजन हारे खाए रहाओ। बैठ सिंह कर पान लगावै कीस गलौरे लियावै कर कर मुसरी मंगल गावै। कछुआ शंख बजावै बंस को पूत बियाहन चलिया सोए ने मंडप छाए। रूप कन्या सुंदर बेदी ससै सिंह गुण गाए। कहत कबीर सुनोरे संतो कीटी पर्वत खाया। कछुआ कह अंगार पे लोरो लूकी शब्द सुनाया। आसा बटुआ एक बहत्तर आधारी एको जसै द्वारा। नवे खंड की प्रथमी मांगे सो जोगी जग सारा।

ज्ञान ध्यान कर सोई शब्द तागा मथ काल पंच तत् की कर मृगाणी गुर कै मार्ग चाल दया फाहरी काया कर तुई दृष्ट की अग्नि जलावे तिसका पाओ ले हृदय अंतर चौह जुग ताड़ी लावे सब जो गतन राम नाम है जिसका पिंड पुराना कहो कबीर जे कृपा तारे दे सच्चा निशाना आसा हिंदू तुर्क कहां ते आए किन ए राह चलाई दिल में सोच विचार गवा दे पिस्त दो जुक किन पाई काजी तय कवन कते बखानी पड़त गुण ऐसे सब मारे किन्हू खबर ना जानी रहाओ सगत स्नेहो कर सुनत करिए मैं ना बदोगा पाई जौरे खुदाए मोह तुर्क करेगा अपन ही कट जाई सुन्नत किए तुर्क जे होएगा औरत का क्या करिए अर्ध शरीरी नार ना छोड़े ताते हिंदू ही रही है शाड़क तेव राम भज बौरे जुर्म करत है भारी कबीर है पगड़ी टेक राम की तुर्क रह पछहारी आसा जब लग तेल दीवे मुख बाती तब सूजे सब कोई तेल जले बाती ठहरानी सुना मंदर होई रे बौरे तुह करी ना रखे कोई तू राम नाम जप सोई रहाओ का की मात पिता कहो का को कवन पुरख की जोई कट फूटे को बात ना पूछे काडो काडो होई देहोरी बैठी माता रोवै खटिया ले गए भाई लटछट काए त्रिया रोवै हंस अकेला जाई कहत कबीर सुन।

दोतु के एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा श्री कबीर जियो के चौपदे एक तुके सनक सनंद।

तृष्णा गागर फूटी, काम चोलना पया है पुराना, गया परम सब छूटी। सर्वभूत एक कर जानिया, चूके बाद बिबादा, कह कबीर मैं पूरा पाया, पहे राम प्रसादा। आसा रोजा तरह मनावे अल्लाह, स्वादत जी संघार है, आपा देख अवर नहीं देख, काहे कौ चख मार है। काजी साहेब एक तो ही मैं तेरा, सोच विचार ना देख, खबर ना करे दीन के बौरे, ताते जन्मया लेख रहाओ। साज कते बखाने अल्लाह, नार पुरख नहीं कोई, पड़े गुणे नाही किश बौरे, जो दिल में खबर ना होई। अल्लाह गैब सगल घट पीतर, हृदय लिहो बिचारी। हिंदू तुर्क दुहू मह एक, कह कबीर पुकारी, आसा ते पदा एक तुगा,

होरिया, आराम बड़े मैं तनक लहोरिया रहाओ। तन पर एक संग बसेरा, सेज एक पै मिलन दुहेरा। तन सुहागन जो पी पावै, कह कबीर फिर जन्म न आवै। आसा श्री कबीर जियो के दो पदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हीरा हीरा बेद पवन मन, सहजे रहा समाई। सगल जोत इन हीरे बेदी, सतगुर बचनी मैं पाई। हर की कथा अनाहद बानी, हंस होए हीरा ले पछानी रहाओ। कह कबीर हीरा अस देखियो, जग में रहा समाई। गुप्ता हीरा प्रगट पायो, जब गुरगम दिया दिखाई। आसा पहली क्रूप, कुजात को लखनी, साहुरे पे ये बुरी। अब की स्वरूप सुजान सुलखनी, सहजे उदर तरी। पली सरी मुई मेरी पहली बरी, जुग जुग जीवाओ मेरी अब की तरी रहाओ। कहो कबीर जब लहुरी आई, बड़ी का सुहाग टर्यो। लहुरी संग पहिया मेरा, जेठी और तर्यो। आसा मेरी बहुरिया को तनिया नाओ, ले रखियो राम जनिया नाओ। इन मुंडियां न मेरा घर तुंदरावा, बिटवे राम रमऊआ लावा रहाओ। कहत कबीर सुनो मेरी माई, इन मुंडियां मेरी जात गवाई। आसा रहो रहोरी बहुरिया, कुंगट जिन काडे, अंत की बार लहगी ना आडे रहाओ। कुंगट कांड गई तेरी आगे, उनकी गैल तुहे जन लागे। कुंगट काडे की यह बड़ाई, दिन दस पांच बहु पले आई। कुंगट तेरो तो पर साचे, हर गुण गाए कूदे अर नाचे। कहत कबीर बहु तब जीते, हर गुण गावत जन्म बतीते। आसा करवत पला ना करवट तेरी, लाग गले सुन बिनती मेरी। हों वारी मुख फेर प्यारे, करवट दे मोको काहे को मारे रहाओ। जो तन चीरा अंग ना मोरो, पिंड पर तो प्रीत ना तोरो। हम तुम बीच भयो नहीं कोई, तुम्हें सो कंत नार हम सोई। कहत कबीर सुनो रे लोई, अब तुमरी प्रतीत ना हुई। आसा कोरी को कहूं मर्म ना जाना, सब जग आनत ना होता ना रहाओ। जब तुम सुन ले वेद पुराना, तब हम इतनक पसरे होता ना। तरने आकाश की कर गए बनाई, चंद सूरज दो साथ चलाई। पाई जोर बात एक कीनी, तै तांती मन माना। जो लाहे कर अपना चीना, कट ही राम पिशाना। कहत कबीर कार गह तोरी, सूते सूत मिलाए कोरी। आसा अंतर मैल जे तीर्थ नावै, तिस बैकुंठ ना जाना। लोकपतीने कछु ना होवै, ना ही राम एना। पूजो राम एक ही देवा, साचा नावन गुर की सेवा रहाओ। जल कै मज्जन जे गत होवै, नित नित मेंढक नावै। जैसे मेंढक तैसे ओए नर, फिर जोनी आवै। मनो कठोर मरै बानारस, नरक ना बांचिया जाई। हर का संत मरै हाड़म्बै, तां सगली सैन तराई। दिन सनारैन बेद नहीं शास्त्र,

एक अनेक व्यापक पूरक जत देखो तत सोई माया चित्र विचित्र विमोहत बिरला बूझै कोई। सब गोबिंद है सब गोबिंद है गोबिंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत सहंस जैसे ओत पोत प्रभ सोई रहाओ। जल तरंग अर फेन बुदबुदा जल ते भिन्न ना होई। एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन ना होई। मिथ्या भरम अर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया। सुकृत मनसा गुरु उपदेसी जागत ही मन मानिया। कहत नाम देव हर की रचना देखो हृदय विचारी। घट घट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी। आसा आनी ले कुंभ भराई ले उदक ठाकर कौ स्नान करो। बयालीस लख जी जल मैं होते बीठर पहला काय करो। जतर जाओ तत बीठल पहला महा आनंद करे सदकेला रहाओ।

आसा सेख फरीद जियो की बाणी एको अंकार सतगुर प्रसाद दिलो मोहब्बत जिन सही सचिया जिन मन होर मुख होर से कांडे कचिया रते इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरिया जिन नाम ते पोए भारतीये रहाओ आप लिए लड़ लाए दर दर वेस से तिन धन जिने दी माओ आए सफल से पर्वत गारिया पार अगम बेअंत तू जिना पछाता सच चुमा पैर मूह तेरी परै खुदाए तू बख्शंदगी सेख फरीद दे खैर दी जय बंदगी आसा बोले सेख फरीद प्यारे अल्लह लगे एहो तन हो सी खाक निमाणी गौर करे आज मैं लावा सेख फरीद टाक मकुंजड़िया मनोम चिंदड़िया रहाओ जे जाना मर जाइए घुम ना आईए झूठी दुनिया लग ना आप वजाइए बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए जो गुरदसे वाट मुरीदा जोलिए शैल लगंदे पार गोरी मन तीरिया कंचन वन्ने पासे कलवत चीरिया सेख है आती जग ना कोई थिर रहा जिस आसन हम बैठे केते बैस गया कतक कूंजा चेत डाओ सावन बिजलियां सियाले सोहंदियां पिर गल बाहड़ियां चले चलन हार विचारा ले मनो गंडें दिया शे मां तुड़न दिया हिक खिनो जिमी पुछे असमान फरीदा खेवट किन गए जालन गोरा नाल उलामे जी सहे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंग गुर प्रसाद राग गुजरी महला पहला चौप दे कर पहला तेरा नाम करी चननाठिया जे मन उरसा होए करनी कुंगू जे रल कट अंतर पूजा होए पूजा कीचे नाम ते आईए बिन नावे पूजना होए रहाओ बाहर देव पखाली है जे मन तो वह कोए झूठ लह जियो मांझी है मोख पयाना होए पशु मिले चंगे आईया खड़ खावे अमृत दे नाम विहुने आदमी त्रिग जीवन कर्म करे नेड़ा है दूर ना जाने आओ नित सारे संभाले जो देवे सो खावना कहो नानक साचा है गुजरी महला पहला नाभ कमल ते ब्रह्मा उपजे वेद पड़े मुख कंठ सवार ताको अंतना जाई लखना आवत जात रह गोबार प्रीतम क्यों बिसरै मेरे प्राण आधार जा की भगत करै जन पूरे मुन जन सेवै गुर विचार रहाओ राव सस दीपक जाके तिर पवन एका ज्योत मुरार गुरमुख होए सो अहिरस निर्मल मन मुख रैण आधार सिद्ध समाध करै नित झगरा दोह लोचन क्या हेरै अंतर ज्योत सब तुन जागै सतगुर चगर नबेरै सुर नर नाथ बेअंत अजोनी साचै महल अपारा नानक सहज मिले जग जीवन नदर करो निस्तारा राग गुजरी महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्रिग अवेहा जीवना जित हर प्रीत ना पाए जित कम हर विसरै दूजे लगे जाए ऐसा सतगुर सेवी है मना जित सेवे है गोविंद प्रीत उपजै अवर विसर सब जाए हर सेती चित गह रहै जरा का पौ ना हो वही जीवन पदवी पाए रहाओ
गोबिंद प्रीत सियों एक सहज उपजिया वेख जैसी भगत बनी आप सेती आप खाया ता मन निर्मल होवा ज्योति ज्योत समई बिन भागा ऐसा सतगुर ना पाई है जे लोचे सब कोए कूड़े की पाल विचों निकले ता सदा सुख होए नानक ऐसे सतगुर की क्या ओह सेवक सेवा करे गुर आग्या जियो धरे सतगुर का पाणा चित करे सतगुर आपे कृपा करे गुजरी महला तीजा हर की तुम सेवा करो दूजी सेवा करो ना कोई जी हर की सेवा ते मनो चिंदिया फल पाई है दूजी सेवा जन्म बिरथा जाए जी हर मेरी प्रीत रीत है हर मेरी कथा कहानी जी गुरप्रसाद मेरा मन पीजै एहा सेव बनी जी ओ रहाओ हर मेरा सिमरत हर मेरा शास्त्र हर मेरा बंधप हर मेरा भाई हर की मैं भूख लागे हर नाम मेरा मन तृप्त है हर मेरा साक अंत होए सखाई हर बिन होर रास कूड़ी है चलद्या नाल ना जाई हर मेरा तन मेरा साथ चल है जहां हाँ जाऊं तह जाई सो झूठा जो झूठे लागे झूठे कर्म कमाई कह नानक हर का पाणा होवा कहना कछु ना जाई गुजरी महला तीजा जोग माहे नाम

से कुकर सुकर गर्द पवाय गर्भ जोनी दइये मारे महा हत्यारे। दीन दयाल हो जन उपर कर कृपा लिहो बारे। नानक जन हर की सरनाई हर पावै हर निस्तारे। गुजरी महला चौथा हो दयाल मेरा मन लावो। हाँ आंदन राम नाम नित्य आई सब सुख सब गुण सब निधान हर। जित जपै दुख भुख सब लै जाई। मन मेरे मेरा राम नाम सखा हर भाई। गुरमत राम नाम जस गावा अंत बेली दरगैले छडाई रहाओ। तू आपे दाता प्रभु अंतर जामी कर कृपा लोच मेरे मन लाई। मैं मन तन लोच लगी हर सेती प्रभु लोच पूरी सतगुर सरनाई। मानस जन्म पुन कर पाया बिर नावै त्रिग त्रिग बिरथा जाई। नाम बिना रस कस दुख खावै मुख फीका थुक थूक मुख पाई। जो जन हर प्रभ हर हर सरना तिंदर गै हर हर दे वड़ियाई। धन धन सा बास कह प्रभ जन कहो जन नानक मेल लय गलाई। गुजरी महला चौथा गुरमुख सखी सहेली मेरी मोको देवो दान हर प्राण जीवाया। हम होवे लाले गोले गुरसिखा के जिना अंदन हर प्रभ पुरख ते आया। मेरा मन तन बिरहो गुरसिख पग लाया मेरे प्राण सखा गुर के सिख भाई। मोको करो उपदेश हर मिले मिलाया रहाओ। जा हर प्रभ भावै ता गुरमुख मेले जिन वचन गुरु सतगुर मन पाया। वड भागी गुर के सिख प्यारे हर निर्बाणी निर्बाण पद पाया। सत संगत गुर की हर प्यारी जिन हर हर नाम मीठा मन पाया। जिन सतगुर संगत संग ना पाया से भागहीन पापी जम खाया। आप किरपाल किरपा प्रभ धारे हर आपे गुरमुख मिलै मिलाया। जन नानक बोले गुरबाणी गुरबाणी हर नाम समाया। गुजरी महला चौथा जिन सतगुर पुरख जिन हर प्रभ पाया। मोको कर उपदेश हर मीठ लगावै मन तन शीतल सब हरिया होवा। वडभागी हर नाम ते आवै भाई रे मोको कोई आए मिले हर नाम दृढ़ावै। मेरे प्रीतम प्राण मन तन सब देवा मेरे हर प्रभ की हर कथा सुनावै। रहाओ तीर्ज धर्म गुरमत हर पाया नित हर नामै हर स्यो चित लावै। अमृत बचन सतगुर की बाणी जो बोलै सो मुखे अमृत पावै। निर्मल नाम जित मैल ना लागै गुरमत नाम जपै लिव लावै। नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया से भागहीन मोए मर जावै। आनंद मूल जग जीवन दाता सब जन को अंध करो हर त्यावै। तू दाता जी सब तेरे जन नानक गुरमुख बख्श मिलावै। एको अंकार सतगुर प्रसाद गुजरी महला चौथा कर तीजा। माई बाप पुत्र सब हर के किए सबना कौशन बंद हर कर दिए। हमरा जोर सब रहे ओ मेरे वीर हर का तन मानो सब हर कै वस है शरीर। रहाओ भगत जना को सरदा आप हर लाई। विचे ग्रस्त उदास रहाई जब अंतर प्रीत हर स्यो बन आई। तब जो किश करे सो मेरे हर पर पाई। जित कारै काम हम हर लाए सो हम करै जो आप कराए। जिनकी भगत मेरे प्रभ पाई ते जन नानक राम नाम लिवलाई। गुजरी महला पंजवा चौप दे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काहे रे मन चित्त वै उद्यम जा आहर।

हर तन इशनान हर तन ज्ञान हर संग लाए ध्याना हर तन तुल्हा हर तन बेड़ी हर हर तार पराना हर तन मेरी चिंत विसारी हर तन लाया धोखा हर तन ते मैं नवनिद पाई हाथ चरियो हर थोका खावो खर्चो तोट न आवे हलत पलत कै संगे लाद खजाना गुरु नानक कौ दिया एहो मन हर रंग रंगे गुजरी महला पंजवा जिस सिमरत सब किले विख नासै पितरी होए उधारो सो हर हर तुम सधी जापो जां कांत न पारो पूता माता की आसीस निमख न बिसराओ तुम कहो हर हर सदा भजहो जगदीश रहाओ सतगुर तुम कहो होए दयाला संत संग तेरी प्रीत कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अनद अनंता रंग तमासा पूर्ण आसा कबह ना व्यापै चिंता भवर तुम्हारा एहो मन होवो हर चरणा हो कौला नानक दास उन संग लपटायो ज्यों बूंदे चात्रक मौला गुजरी महला पंजवा मता करे पछम कै ताई पूर्व ही लै जात खिन मैं था पो था पनहारा अपन हाथ मतात स्यान पो काहू कामनायात जो अनरूपयो ठाकर मेरा होए रही हो बात रहाओ देश कमावनो तन जोरन की मनसा बीचे निकसे सास लस्कर नेव खवास सब त्यागे जंपर उठ सिदास होया नान मन हठ की दृढ़ता आपस कौ जा नात जो अनिंद निंद कर छोड़ियो सोई फिर खात सह सुभाए पय कृपाला ते जनकी काटी फास कहो नानक गुर पूरा भेटिया प्रवान ग्रस्त उदास गुजरी महला पंजवा नाम निधान जिन जन जपयो तिनके बंधन काटे काम क्रोध माया बिख ममता ए ब्याह ते हटे हर जस साध संग मिल गायो गुर प्रसाद पयो मन निर्मल सर्व सुखा सुख पायो रहाओ जो किश कियो सोई पल मान ऐसी भगत कमानी मित्र सत्र सब एक समाने जो जुगत निशानी पूर्ण पूर रहो सर्व थाई आ नकत हूं जाता घट घट अंतर सर्व निरंतर रंग रवयो रंग राता पय कृपाल दयाल गोपाला ता निरपै कह कर आया काल कलेश मिटे खन भीतर नानक सहि समाया गुजरी महला पंजवा जिस मानुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय आराध्या तिन पौ सागर तरिया गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटै प्रभ तज अवर सेवक जे होई है तित मान महत जस घटै रहाओ माया के संबंध सैन साक कित ही काम न आया हर का दास नीच कुल उच्चा ते संगमन वाइंत फल पाया लाख कोट बिखिया के बिंजन ता मैं त्रिशन ना बूझी सिमरत नाम कोट उजियारा बसता गोचर सूजी फिरत फिरत तुमरे द्वार आया पै पंजन हर राया साध के चरण तूर जन बांछ सुख नानक हो पाया गुजरी महला पंजवा पंच पदा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रथमे गर्भ माता कै वासा ऊहा छोड़ तरन मैं आया चित्रसाल सुंदर बाग मंदिर संग न कछू जाया अवर सब मिथ्या लोभ लभी गुरपूरे दियो हर नामा जी को एहा वस्त फबी रहाओ
इष्टमीत बंद पसुत भाई संग मंता रच हसया जब अंति अवसर आए बन्यो है उन पेखत ही काल ग्रसया कर कर अनर्थ बिहाजी संपै सोइना रूपा दामा पहाड़ी का ओह पहाड़ा मिलिया होर सगल पयो बेराना हैवर गैवर रथ संभाहे गहो कर कीने मेरे जब ते होई लामी ताई चले नाही एक पैरे नाम तानो नाम सुख राजा नाम कुटम सहाई नाम संपत गुरु नानक कौ दी ओह मरे ना आवै जाई गुजरी महला पंजवां ते पदे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुख बिन से सुख किया निवासा तृष्णा जलन बुझाई नाम निधान सतगुरु दरडाया बिरसना आवै जाई हर जप माया बंधन टूटे भय कृपाल दयाल प्रभ मेरे साध संगत मिल छूटे रहाओ आठ पहर हर के गुण गावे भगत प्रेम रस माता हर सोग दोह माहे निराला करने हर पिछाता जिसका साथ इन्हीं रख लिया सगल जुगत बने आई कहो नानक प्रभ पुरख दयाला कीमत कहन ना जाई गुजरी महला पंजवा दो पदे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पतत पवित्र लिए कर अपने सगल करत नमस्कारो वर्ण जात को पूछे नाही बाछे चरण रवारो ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो सगल श्रेष्ठ को तनी कही जय जन को अंग निरारो रहाओ साध संग नानक बुद्ध पाई हर कीर्तन आधारो नाम देव त्रिलोचन कबीर दास रो मुक्त पयो चमियारो गुजरी महला पंजवा है नाही को बूझन हारो जाने कवन पता शिव बिरंच यार सगन मोहन जानो गह नास काहे गता प्रभ की अगम अगाध कथा सुनिया अवर अवर बिद बुचिया बकन कथन रहता रहाओ आपे भगता आप स्वामी अपन संगरता नानक को प्रभ पूर रहे हो है पेख्यो जतर कथा गुजरी महला पंजवा मता मसूरत अवर सियानप जन को कछु ना आयो जह जह अवसर आए बन्यो है तहां तहां हर त्यायो प्रभ को भगत वच्छल बिरदायो करे प्रतपाल बार की न्याई जन को लाड लड़ायो रहाओ जप तप संजम कर्म धर्म हर कीर्तन जन गायो शरण पर्यो नानक ठाकर की अपहदान सुख पायो गुजरी महला पंजवा दिन रातिया राधो प्यारो निमख ना की जय ढीला संत सेवा कर भावनी लाई है त्याग मान हर ठीला मोहन प्राण मान रंगीला बास रहो ही रह कै संगे पेख मोहयो मन लीला रहाओ जिस सिमरत मन होत आनंदा उतरे मनोह जंगीला मिलबे की महिमा वर्ण ना साकौ नानक परै परीला गुजरी महला पंजवा मन जोगी शास्त्रक कहावत सब कीने बस अपन ही तीन देव अर कोड़ ते तीसा तिन की हैरत कश ना रही बलवंत ब्याप रही सम ही अवर न जान सको मरमा गुर कृपा ते लही रहाओ जीत जीत जीते सब थाना सगल पवन लपटही कहो नानक साते भागी ओए चेरी चरण गही गुजरी महला पंजवा दोए कर जोड़ करी बेनंती ठाकरे अपना त्याया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मिटाया ठाकर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप होई है उबरे बाल गोपाल रहाओ
मिलवर नारी मंगल गाया ठाकर का जयकार, कहो नानक तिस गुर बलिहारी जिन सब का किया उधार। गुजरी महला पंजवा मात पिता भाई सुत बंद पो तिनका बल है थोरा, अनक रंग माया के पेखे किछ साथ ना चल पोरा। ठाकरो तुझ बिन आहे ना मोरा, मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही, मैं आहो तुमरा तोरा रहाओ। बल बल बल बल चरण तुम्हारे, इहां उहां तुम्हारा जोरा, साध संग नानक दर्श पायो, बिन सो सगल ने होरा। गुजरी महला पंजवा आल जाल प्रम होत जावै, प्रभ से तीरंग लाई, मन को एह उपदेश दरड़ावै, सहज सहज गुण गाई। साजन ऐसो संत सहाई, जिस पेटे टूटे माया बंद, बिसरना कब हूं जाई रहाओ। करत करत अनक बहु भांति, नीकी ए ठहराई, मिल साधु हर जस गावै, नानक पवजल पार पराई। गुजरी महला पंजवा खिन मैं थापो था पनहारा, कीमत जाय ना करी, राजा रंक करै खिन पीतर, नीचे जो तरी। त्याई है अपनो सदा हरी, सो जन देसा ताका कहां करिए, जा मैं करी रहाओ। तुमरी टेक पूरे मेरे सतगुर, मन सरन तुम्हारे परी, अचेत याने बारक नानक, हम तुमरा खोतार करी। गुजरी महला पंजवा तू दाता जिया सबना का, बसो मेरे मन माही, चरण कमल रिदमाए सुमाए, तै परमा देरा नाही। ठाकुर जा सिमरा तू ताही, कर कृपा सर प्रतपालक, प्रभ को सदा सलाही रहाओ। सास सास तेरा नाम सुमाराओ, तुम ही को प्रभ आही, नानक टेक पई करते की, होर आस बिडाणी लाही। गुजरी महला पंजवा कर कृपा अपना दर्श दीजै, जस गावो निस्यार पोर, केस संग दास पग चारो, एह मनोरथ मोर। ठाकुर तुझ बिन बिया ना होर, चित चित वो हर रस न्यारा दो, निरखो तुमरी ओर रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकर, बिनो करो कर जोर, नाम जपै नानक दास तुमरो, उधर से आखी फोर। गुजरी महला पंजवा ब्रह्म लोक अर रुद्र लोक, आई इंद्र लोक ते ताए, साध संगत को जोहे ना सकै, मल मल धोवै पाए। अब मोहे आए परयो शरणाए, गुज पाव को बहुत पर जा रहे, मोको सदगुर दियो है बताए रहाओ। सिद्ध साधक अर जख किन्नर नर, रही कंठ उर जाए, जन नानक अंग किया प्रभ करता, जा कै कोट ऐसी दास आए। गुजरी महला पंजवा आप जस मिटै होवै जग कीर्त, उंदर गै बैसन पाई है, जम की त्रास नास होए खिन मैं, सुख अंध सेती कर जाई है। जाते काल न बिरथी जाइए, आठ पहर सिमरो प्रभ अपना, मंत्र सदा त्याइए रहाओ। मोहे सरन दीन दुख भंजन, तू देह सोई प्रभ पाईए, चरण कमल नानक रंग राते, हर दास पैज रखाइए। गुजरी महला पंजवा विश्वंपर जियन को दाता, भगत परे भंडार, जाकी सेवा निफल ना होवत, खिन मैं करे उधार। मन मेरे चरण कमल संगराज, सगल जी जा को वारा दे, ताहू को तू जाच रहाओ। नानक शरण तुम्हारी करते, तू प्रभ प्राण आधार, हुए सहाय जिस तू रखै, तिस कहां करे संसार। गुजरी महला पंजवा जन की

आओ मात पिता सुत मीत भाई तिस बना नहीं कोए ईत ऊत जी नाल संगी सर्व रव्या सोए कोट जतन उपाव मिथ्या कछ न आवै काम सरन साधु निर्मला गत होए प्रभ कह नाम आगम दयाल प्रभु ऊचा सरन साधु जोग तिस प्राप्त नानका जिस लिखिया तुरसन जोग गुजरी महला पंजवा आपना गुर सेव सदी रमह गुण गोबिंद सास सास याराद हर हर लह जाए मन की चिंद मेरे मन जाप प्रभ का नाओ सुख सहज आनंद पावे मिली निर्मल थाओ रहाओ साध संग उधार एहो मानो आठ पहरे आराध काम क्रोध अहंकार बिनसै मिटै सगले उपाद अटाला शेदा भेद स्वामी सरन ता की आओ चरण कमल आराध हृदय एक सिउ लिव लाओ पार ब्रह्म प्रभ दया धारी बख्श लीने आप सर्व सुख हर नाम दिया नानक सो प्रभ जाप गुजरी महला पंजवा गुर प्रसादी प्रभ ते आया गई संका टूट दुखा नेरा।

जाप ताप अनेक करनी सफल सिमरत नाम कर अनुग्रह आप राखे पहे पूर्ण काम। सास सास ना बिसर कब हूं ब्रह्म प्रभ समरथ गुण अनक रसना क्या बखाने अगंत सदा अकथ। दीन दर्द निवार तारण दयाल कृपा करण अटल पदवी नाम सिमरण दृढ़ नानक हर हर शरण। गुजरी महला पंजवा अहम बुद्ध बहु सगन माया महा दीर्घ रोग हर नाम औखद गुर नाम दीनो करण कारण योग। मन तन बांछिया जन तूर कोट जन्म के लह पातक गोविंद लोचा पूर रहाओ। आदि अंते मध्य आसा कुकरी बिकराल गुर ज्ञान कीर्तन गोविंद रमण काटिया जमजाल। काम क्रोध लो मो मूठे सदा आवा गवन प्रभ प्रेम भगत गोपाल सिमरन। मिटत जोनी पवन मित्र पुत्र कलत्र सुर रिद तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख निवारे मिले हर जन संत।

तार सतगुर प्रसाद आराध श्री तार सफल मूर्त करण कारण योग गुण रमन श्रवण अपार महिमा फिर ना होत बियोग मन चरण अरबिंद उपास काल कलेस मिटंत सिमरन काड़ जम दूत फास रहाओ सत्र दहन हर नाम कहन अवर कछ ना उपाओ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुवाओ गुजरी महला पंजवा तू समरथ सरन को दाता दुख भंजन सुख राय जाहे क्लेश मिटे पै परमा निर्मल गुण प्रभ गाए गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाओ रहाओ सतगुर सेव लगे हर चरनी वड्डे भाग लिव लागी कवल प्रगास पए साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी आठ पहरो हर के गुण गावे सिमरै दीन दयाला आप तरै संगत सब उदरै बिन से सगल जंजाला चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ साथ सरन परयो नानक प्रभ तुमरी दे राख्यो हर हाथ गुजरी अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक नगरी पंच चोर बसियले बरजत चोरी तावै त्रह दस माल रखे जो नानक मोख मुक्त सो पावै चेताओ बास देव बनवाली राम हृदय जप माली रहाओ उर्द मूल जिस साख्त लाहा चार बेद जित लागे सहज पाए जाए ते नानक पार ब्रह्म लिव जागे पार जात कर आंगन मेरा पुहप पत्र तत डाला सर्व जोत निरंजन संभू छोडो बोझ जंजाला सुन सिखवंते नानक बिनवै छोडो माया जाला मन विचार एक लिव लागी पुनरप जन्म ना काला सो गुरु सो सिख कथियाले सो वै जे जाने रोगी तिस कारण कामना तंदा नाही तंदै गिरही जोगी काम क्रोध अहंकार तजियाले लोभ मोह तिस माया मन ताते अवगत ते आया गुरप्रसादी पाया ज्ञान ध्यान सब दात कथियाले सेत बरन सब दूता ब्रह्म कमल मदत तासर साधं जगत नाही सूता महा गंभीर पत्र पाताला नानक सर्व जो आया उपदेश गुरु मम पुनै ना गर्म बेख तज अमृत पी आया गुजरी महला पहला कवन कवन जाचे प्रभ दाते ताके अंत न परै सुमार जैसी पूख होए अब अंतर तू समरासाय देवनहार ऐ जी जप तप संयम सच आधार हर हर नाम दे सुख पाईए तेरी भगत परे भंडार रहाओ सुन समाद रहे लिव लागे एका एकी शब्द विचार जल थल धरण गगन तह नाही आपे आप किया करतार ना तद माया मग ना छाया ना सूरज चंद ना जोत्या पार सर्ब लोचन शब्द दृष्ट लोचन अभ्यंतर एका नजर

कलयुग में नाम निदान भगती खटिया, हरि उत्तम पद पाया, सतगुर सेव हर नाम मन वसाया, अंदर नाम त्याया, विचे ग्रह गुर बचन उदासी, हो मैं मोह जलाया, आप तरिया कुल जगत तराया, तन जने दीमाया, ऐसा सतगुर सोई पाए, जिस तुर मस्तक हर लिख पाया, जन नानक बलिहारी गुरे अपने विटों, जिन भ्रम पुला मार्ग पाया। महला तीजा, त्रै गुण माया वेख पुले, जो देख दीपक पतंग पजाया, पंडित पुल पुल माया वेखै, दिखा किने केहो आन चढ़ाया, दूजे पाए पड़े नित बिखया, नामो दईए खुआया, जोगी जंगम सन्यासी पुले, ओना अहंकार बहु गर्भ वधाया, शादन भोजन ना लही सत पिखया, मन अठ जन्म गवाया, एतड़िया विचों सो जन समदा, जिन गुरमुख नाम ते आया, जन नानक किसनो आग सुनाई है, जा कर दे सब कराया, पौड़ी माया मोह प्रेत है, काम क्रोध अहंकारा, एह जम की सिरकार है, इना उपर जम का डंड करारा, मनमुख जम मग पाईयन, जिन दूजा पाओ प्यारा, जम पर बदे मारियन, को सुने ना पुकारा, जिसनो कृपा करे तिस गुर मिले, गुरमुख निस्तारा। श्लोक महला तीजा, हौ मैं ममता मोहनी, मनमुखा नो गई खाए, जो मोहे दूजे चित लाए दे, तिन्ना व्याप रही लपटाए, गुर कै शब्द पर जाली है, ता एह विच्चों जाए, तन मन हो वै उजला, नाम वसै मन आए, नानक माया का मारन हर नाम है, गुरमुख पाया जाए। महला तीजा, एहो मन केतड़िया, जुग भरमिया, थिर रह न आवै जाए, हर पाणा ता परमायन।

तुरे बिसम भय बिसमाद देह कुदर तेरिया शरण परे तेरी दास करगत होए मेरिया तेरे हथ निदान पावे तिस देहे जिसन होए दयालु हर नाम से लेहे आगम्या गोचर बेअंत अंत ना पाई है जिसनो होहे कृपाल सो नाम त्याई है। सरुक महला पंजवा कड़शिया फिर अन्न स्वाव न जान सुनिया सेई मुख दिसानो नानक रते प्रेम रस। महला पंजवा खोजी लदम खोज छड़िया उजाड़ तै सह दित्ती वाड़ नानक खेतना छिजई पौड़ी आराध्य हो सच्चा सोए सब केशो जिस पास दुहां सरिया खसम आप खिन मैं करे रास त्यागो सगले पाप तिसकी ओट गहो पौ सरनाई भज सुखी हूं सुख लहो कर्म धर्म तत् ज्ञान संता संग होए जपिया अमृत नाम बिघन लगे कोए जिसनो आप दयालु तिस मन उठिया पाईयन सब निधान साहेब तुठिया। श्लोक महला पंजवा लदम लबन हार कर्म करंदो मां पिरी इको सृजनहार नानक ब्याह ना पसीऐ। महला पंजवा पापड़िया पाशाड़ बाण सचावा सन कै गुरमंत्रा चितार नानक दुख ना थी वई पौड़ी वाह वाह सृजनहार पाईयन ठांड आप जी जंत मेहरवान तिसनो सदा जाप दया तारी समरथ चुके बिल बिलाप नठे ताप दुख रोग पूरे गुर प्रताप कीतियां ने अपनी रख गरीब निवाय थाप आपे लयन छड़ाए बंधन सगल काप तिसन बुझी आस पुनी मन संतोख त्राप वड्डी हूं वड्डा पार खसम जिसले अपना पुन पाप। श्लोक महला पंजवा जा कौ पय कृपाल प्रभ हर हर सही जपात नानक प्रीत लगी तन राम सियों पेटत साध संगात। महला पंजवा राम रमो वडभागी हो जल थल मैयल सोए नानक नाम आराध्य बिघन ना लागै कोए पौड़ी भगतां का बोलिया प्रवान है दरगह पवै थाए भगतां तेरी टेक रते सच नाए जिसनो होए कृपाल जिसका दुख जाए भगत तेरे दयाल ओना मेहर पाए दुख दर्द वड रोग ना पोहे तिस माए भगता एहो आधार गुण गोविंद गाए सदा सदा दिन रहन एको एक ते आए पीवत अमृत नाम जन नामे रहे अगाए। सलोक महला पंजवा कोट बिघन तिस लागते।

कड़ी मोहत है विसरा नानक रवि है नित पौड़ी सूर बीर वरियाम किन ना होड़ी है फौ सतानी हाठ पंचा जोड़ी है दस नारी अवधूत देन चमोड़ी है जिन जिन लैन रलाए एहो इना लोड़ी है त्रै गुण इनकै वस किन ना मोड़ी है परम कोट माया खाई कहो कित बिद तोड़ी है गुरपुरा आराध बिखम दल फोड़ी है हौ तिस अगै दिन रात रहा कर जोड़ी है श्लोक महला पंजवां किल विख सबे उतरन नीत नीत गुण गाओ कोट कलेसा उपजै नानक बिसरै नाओ महला पंजवां नानक सतगुर भेटे है।

पौड़ी सो सतगुर तन तानो जिन परमगढ़ तोड़िया, सो सतगुर वाहो वाहो जिन हरस्यों जोड़िया, नाम निदान या खोट गुर दे दारुओ, महारोग बिकराल उतने बिदारुओ। पाया नाम निदान बहुत खजाने आ, जिता जन्मया पार आप पछाने आ, महिमा कही ना जाए गुर समर्थ देव, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अरम अपरंपरा लाखा पेव। सलोक महला पंजवा, उद्यम करेंदिया जियो तू, कमावदिया सुख पुंच, ते आए दिया तू प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। महला पंजवा, शुभ चिंतन गोबिंद रमण, निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक घड़ी, कर कृपा भगवंत पौड़ी। तेरा कीता होए ता काहे डरपिए, जिस मिल जपिए नाओ तिस जियो अरपिए। आया चित निहाल साहेब बेसुमार, तिसनो पोहे कवन जिस वल निरंकार। सब किश तिसकै वस ना कोई बाहरा, सो भगता मन उठा सच सुमहरा। तेरे दास ध्यान तुद तू रखण वालिया, सिर सबना समरथ नदर निहालिया। सलोक महला पंजवा, काम क्रोध मद लोभ मोह दुष्ट बासना निवार। राख ले हो प्रभ अपने नानक सद बलिहार। महला पंजवा, खांदिया खांदिया मोह कठा, पैनंदिया सब अंग, नानक त्रिग तिना दा जीविया, जिन सच ना लगो रंग। पौड़ी ज्यों ज्यों तेरा

प्रभदास का दुख ना खप सके फड़ जो नी जुते मथे वाल पछाड़िया नू जा मार्ग मुक्ते दुख लगे बिल लाणिया नरक कोर सुते कंठ लाए दास रखिया नू नानक हर सते। श्लोक महला पंजवां। राम जपो वड भागी हो जल थल पूर्ण सोए नानक नाम ते आए बिघन लागे कोए। महला पंजवा। कोट बिघन तिस लागते जिसनो विसरै नाओ नानक अन दिन बिलपते ज्यो सुनै कर काओ। पौड़ी। सिमर सिमर दातार मनोरथ पूरिया इच्छ पुन्नी मन आस गए विसूरिया पाया नाम निदान जिसनो पालदा। जोत मिली संग जोत रहया कालदा सुख सहज आनंद उठे तित कर आवन जान रहे जन्म ना तहा मर। साहेब एवक साहेब सेवक एक एक दृष्टाया गुर प्रसाद नानक सच समाया सुध राग गुजरी।

चार पाव दोए सिंग गुंग मुख, तब कैसे गुन गई है। उठत बैठत ठेगा पर है, तब कत मूंड लुकई है। हर बिन बैल बिराने हुई है, फाटे नकन टूटे कंधन, कोदव को पुसखई है। रहाओ सारो दिन डोलत बन महिया, अजहो ना पेट अगई है। जन भगतन को कहो ना मानो, कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रभुडो, अनक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ विसरियो, एहो अवसर कत पई है। भ्रमत फिरत तेलक के कप ज्यो, गत बिन रहन बिहई है। कहत कबीर राम नाम बिन, मूंड तुने पछतई है। गुजरी करती जा

कहत कबीर सुनो मेरी माई, हमरा इनका दाता एक रगराई। गुजरी श्री नामदेव जी के पदे, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जौ राज देहे ता कमन वडाई, जौ भीख मंगावै ता क्या घट जाई। तू हर भज मन मेरे पद निर्वाण, बहुर ना होए तेरा आवन जान। रहाओ सब तैं उपाई भरम भुलाई, जिस तू देवै सह बुझाई। सतगुर मिलै ता से सह जाई, किस हों पूजो दूजा नजर न आई। एकै पाथर की जय पाओ, दूजे पाथर धरियै पाओ। जे ओह देओ ता ओह पी देवा, कहे नाम देओ हम हर की सेवा। गुजरी कर पहला मलै ना लाछै पार मलो, परम लियो बैठोरी आई। आवत किने ना पेखियो, कमने जाने री बाई। कौन कहे किन बूझी है, रमैया या कुलरी बाई। रहाओ ज्यों आकाश पंखिया लो, खोज निरखियो ना जाई। ज्यों जल माझे मछलो, मार्ग पेखणो ना जाई। ज्यों आकाश कड़ुवलो, मृग तृष्णा भरिया। नामे चे स्वामी बीठलो, जिन तीने जरिया। गुजरी श्री रविदास जी के पदे, करती जा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दूता बछर थनो बिटारियो, फूल पावर जलमीन बिगारियो। माई गोबिंद पूजा कहां लै चरावो, अवरना फूलिया नूपन पावो। रहाओ मैं लागर बेरे है भयंगा, बिख अमृत बसै एक संगा। धूप दीप नहीं बेदै बासा, कैसे पूज करें तेरी दासा। तन मन अर्पाओ पूज चरावो, गुर प्रसाद निरंजन पावो। पूजा अर्चा आहे ना तोरी, कह रविदास कमन गत मोरी। गुजरी श्री त्रिलोचन।

काहे भया सन्यासी परमे पुली रे जय चंदा नहीं नहीं चीनिया परमानंदा रहाओ। घर घर खाया पिंड बधाया खिंथा मुंदा माया भूम मसान की पसम लगाई गुरबिन तत नाम पाया। काय जपोरे काय तपोरे काय बिलोवो पाणी लख चौरासी जिन पाई सो सिमरो निर्वाणी। कायक मंडलो कापड़िया रे अड़सठ काय फिराही बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी कण बिन गाहो के पाही। गुजरी अंतकाल जो लक्ष्मी सिमर।

अंत काल जो स्त्री सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै बेसवा जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सूकर जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो मंदिर सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै प्रेत जोन वल वल अवतरै।

गुजरी श्री जयदेव जियो का पदा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद परमाद पुरख मनोपमं सत आद भावरतं परमद पुतं परकृत परं जद चिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्मयं ना दनोत जा स्मरणेन जन्म जराद मरण भयं रहाओ इच्छ सजमाद परा भयं जस स्वस्थ सुकृत कीर्तं पाव भूत भाव समग्यं परमं प्रसन्न मिदं लोभाद दृष्ट पर गिरहं जद विद आचरणं तज सकल दोहकृत दुर्मति पज चक्कर तार शरणं हर भगत निज नेह केवला रिद कर्मणा बचसा जोगेन किं जगेन किं दानेन किं तपसा गोविंद गोविंद देत जप नर सकल सिद्ध पदं जय देव आयो तस सफटं पवभूत सर्वगतं एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहपं गुरप्रसाद राग देव गंधारी महला चौथा कर पहला सेवक जन बने ठाकर लिव लागे जो तुमरा जस कहते गुरमत तिन मुख भाग सुभागे रहाओ टूटे माया के बंधन फाहे हर राम नाम लिव लागे हमरा मन मोहयो गुरमोहन हम बिस्म भई मुख लागे सगली रहन सोई अंधियारी गुर किंचित कृपा जागे जन नानक के प्रभ सुंदर स्वामी मोहे तुम सारे अवर ना लागे देव गंधारी मेरो सुंदर कहो मिले कित गली हर के संत बतावो मार्ग हम पीछे लाग चली रहाओ प्रे के बचन सुखाने ही अर एह चाल बनी है पली लटरी मदरी ठाकर पाई ओह सुंदर हर टोल मिली एको प्रेयो सखिया सब प्रे की जो पावे पिरसा पली नानक गरीब क्या करे बिचारा हर पावे तितराहे चली देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है गुरमुख रंग चलू लै राती हर प्रेम पीनी चोली है रहाओ हाँ फिरों दीवानी आवल बावल तिस कारण हर ढोली है कोई मेले मेरा प्रीतम प्यारा हम तिसकी गुलगुली है सतगुर पुरख मनावो अपना हरे अमृत पी झोली है गुर प्रसाद जन नानक पाया हर लादा देह टोली है देव गंधारी अब हम चली ठाकर पै हार जब हम शरण प्रभु की आई राख प्रभु पावे मार रहाओ लोकन की चतराई।

जन्म जन्म के किल बिखनास कोट मजन इशनाना नाम निधान गावत गुण गोविंद लागो सहित्याना कर कृपा अपना दास कीनो बंधन तोर निरारे जप जप नाम जीवा तेरी बाणी नानक दास बलिहारे शके तेनो देवगंधारी महला पंजवां।

साधु तूर लाई मुख मस्तक काम क्रोध बिख जारो सब ते नीच आत्म कर्मानो मन में असुख धारो गुण गावे ठाकर अबनासी कलमल सगले चारो नाम निधान नानक दान पावो कंठ लाए और तारो देवगदारी महला पंजवा प्रभ जीओ पेखो दर्स तुम्हारा सुंदर ध्यान धार दर रैनी जी प्रांते प्यारा रहाओ शास्त्र वेद पुराण अवलोके सिमरत तत् विचारा दीनानाथ प्राण पथ पूर्ण पावजल उदर नहारा आद जुगाद भगत जन सेवक ताकी बिखै आधारा तिन जन की धूर बांछ है नित नानक परमेश्वर देव नहारा।

प्रेम रसाने जा को उपजी छोड़ न कतहू जाता रहाओ। बैठत हर हर सोबत हर हर हर रस भोजन खाता अठ सठ तीर्थ मज्जन कीनो साधु तूरी नाता। सफल जन्म हर जन का उपजया जन कीनो सौत बेदाता सगल समूह लै उदरे नानक पूर्ण ब्रह्म पछाता। देव गंधारी महला पंजवा माई गुरबिन ज्ञान ना पाई है अनक प्रकार फिलत बिललाते मिलत नहीं गोसाई है रहाओ। मोह रोग सोग तन बांधे हो बोझो नी परमाई है टिकट ना पावे बिन सतसंगत किस आगे जाई रुआई है। करे अनुग्रह स्वामी मेरा साध चरण चित लाई है संकट घोर कटे खिन पीतर नानक हर दर्श समाई है। देव गंधारी महला पंजवा ठाकर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप होई है उबरे बाल गोपाल रहाओ। दोए कर जोड़ करी बेनंती पार ब्रह्मन त्याया हाथ दे राखे परमेसर सगला दुर्त मिटाया। वर नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार कहो नानक जन कहो बल जाइए जो सबना करे उधार। एक ओंकार सतगुर प्रसाद देव गंधारी महला पंजवा अपने सतगुर पै बिनो कहया भय कृपाल दयाल दुख भंजन। मेरा सगल अंधेसरा गया रहाओ हम पापी पाखंडी लोभी हमरा ओ गुण अवगुण सब सहया। कर मस्तक तार साज निवाजे मोए दुष्ट जो खया पार उपकारी सर्व सुधारी सफल दर्शन सहजया। कहो नानक निर्गुण कहो दाता चरण कमल उर धरिया। देव गंधारी महला पंजवा अनाथ

तब तुहारे उन सुमार मेरा मन साधारे सुन गावो गुर बचनारे बल बल जाओ साध दरसारे मन में राखो एक या सारे नानक प्रभ मेरे करण हारे। देव गंधारी महला पंजवा प्रभ।

लागो जन चरणी निस्बा सर दस पावा तन मन अर्प करो जन सेवा रसना हर गुण गाव सास सास सिमरो प्रभ अपना संत संग नित रही है एक आधार नाम तन मोरा अनद नानक एहो लई है राग देव गंधारी महला पंजवा घर तीजा एको अंकार सतगुर प्रसाद मीता ऐसे हर जियो पाए छोड़ ना जाई सधी संगे अंदन गुर मिल गाए रहाओ मिलियो मनोहर सर्व सुखैना त्याग न कत हूं जाए अनक अनक भांत बहु पेखे प्रेरोम ना सम सर लाए मंदर भाग शोभ द्वार अनहद रोण चुन लाए कहो नानक सदा रंग माने गृह प्रे थीते सद थाए देव गंधारी पंजवा दर्शन नाम कौ मन आचे भ्रम आयो है सगल थान रे आहे परयो संत पाछ रहाओ किस हों सेवी किस आराधी जो दिष्ट सो गाछ साध संगत की सरणी परिय चरण रेन मन बंछ जुगत ना जाना गुण नहीं कोई महादुत्र माया छ आए पयो नानक गुर चरणी तो उतरी सगल दुराछ देव गंधारी पंजवा अमृता प्रे बचन तुहारे अत सुंदर मन मोहन प्यारे सबहू मद निरारे रहाओ राज ना चाहो मुक्त ना चाहो मन प्रीत चरण कमलारे ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंदिरा मोहे ठाकर ही दरसारे दीन द्वारे आयो ठाकर शरण परयो संत हारे कहो नानक प्रभ मिले मनोहर मन सीतर बिगसारे देव गंधारी महला पंजवा हर जप सेवक पार उतारियो दीन दयाल पए प्रभ अपने।

रहाओ। कथन सुनावन गीत नीके गावन मन में तरते गार, अत सुंदर बहुचतर सियाने विद्या रसनाचार, मान मोह मेर तेर बिबरजत एहो मार्ग खंडे तार, कहो नानक तिन पव जल तरियले, प्रभु कृपा संत संगार। राग देव गंधारी महला पंजवा, कर पंजवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद मैं पेख्योरी उचा, मोहन सबते उचा, आना सम

संत प्रसाद तरे पवजल पूर्व लिखिया पाया वजी वधाई मनसा ते आई मिलिया पुरखिया पारी बिनवंत नानक सिमर हर हर इच्छ पुनी हमारी बिहागड़ा महला पंजवा कर दूजा एको अंकार सतनाम गुरप्रसाद वद सुख रैनड़िए प्रे प्रेम लगा घट दुख नींदड़िए परसौ सदा पगा पग तूर बांछो सदा जाचो नाम रस बैरागनी प्रेरंग राती सहज माती महा दुर्मत त्यागनी गह पुजा लीनी प्रेम पीनी मिलन प्रीतम सच मगा बिनवंत नानक तार कृपा रहो चरण संग लगा मेरी सखी सहेलड़ियो प्रभ कै चरण लगे मन प्रे प्रेम घना हर की भगत मंगे हर भगत पाईए प्रभ ते आईए जाए मिलिए हर जना मान मोह विकार तजिए अर्प तन तन एहो मना बड पुरख पूर्ण गुण संपूर्ण प्रभ प्रीत हर हर मिल पगे बिनवंत नानक सुन मंत्र सखिए हर नाम नित नित नित जपै हर नार सुहागणे सब रंग माणे रांड ना बैसई प्रभ पुरख चराणे न दुख पावै प्रभ ते आवै तन ते वट पागिया सुख सहज सोवै किल बिख खोवै नाम रस रंग जागिया मिल प्रेम रहना हर नाम गहना प्रे बचन मीठे भाणे बिनवंत नानक मने छपाई हर मिले पुरख चराणे तित ग्रह सोहलड़े कोड नंदा मानता नो रव रहया प्रभ परमानंदा हर कंत अनंत दयाल श्री तर गोविंद पत उदारणो प्रभ कृपा तारी हर मुरारी पै सिंध सागर तारणो जो सरन आवै तिस कंठ लावै एहो बिरद स्वामी संदा बिनवंत नानक हर कंत मिलिया सदा केल करंदा बिहागड़ा महला पंजवा हर चरण सरोवण तै करो निवास मना कर मज्जन हर सरे सब किल विख नास मना कर सदा मज्जन गोविंद सज्जन दुख अंधेरा नासे जन्म मरण ना होए तिस कहो कट्टे जमके फासे मिल साध संगे नाम रंगे तहां पूर्ण आसो बिनवंत नानक धार कृपा हर चरण कमल निवासो तह आनंद बिनोद सदा अनहद चुनकारो राम मिल गावै संत जना प्रभ का जयकारो राम मिल संत गावै खसम पावै हर प्रेम रस रंग पिनिया हर लाभ पाया आप मिटाया मिले चिरी विछुनिया गह पुजा लीने दया कीने प्रभ एक अगम्या पारो बिनवंत नानक सदा निर्मलो सच शब्द रुण चुनकारो सुन वड भागिया हरि अमृत बाणी राम जिनको कर्म लिखी तिसरदै सुमाणी राम अकथ कहानी तिन्नी जानी जिसया प्रभ कृपा करे अमृतिया फिर नामुआ कल कले साधुख हरे हर सरन पाई तज ना जाई प्रभ प्रीत मंतन पाणी बिनवंत नानक सदा गाई है पवित्र अमृत बाणी मन तन गलत पए किश कहन ना जाई राम जिसते उपजियाड़ा तिन लिया समाई राम मिल ब्रह्म ज्योति ओत पोती उदक उदक समाया जल थल महियल एक रविया न दूजा दृष्टाया बन त्रिण त्रिपवन पूर पूर्ण कीमत कहन ना जाई बिनवंत नानक आप जाने जिन एह बणत बनाई बिहागड़ा महला पंजवा खोजत संत फिरै प्रभ प्राणिया धारो राम तान तन खीन पया बिन मिलत प्यारे राम प्रभ मिलो प्यारे मया तारे कर दया लड़ लाई लीजिए देह नाम अपना जपो स्वामी हर दर्श पेखे जीजिए समर्थ पूर्ण

जप तप वर्त कीने पेखन कहो चरनाराम, तपत नाकत बुझै बिन स्वामी सरनाराम। प्रभ शरण तेरी काट बेरी संसार सागर तारी है, अनाथ निर्गुण कश ना जाना मेरा गुण अवगुण ना बिचारी है। दीन दयाल गोपाल प्रीतम समर्थ कारण करना, नानक चात्रक हर बूंद मांगे, जप जीवा हर हर चरना, अमै सरोवर पियो अमै सरोवरो पियो, हर हर नाम राम संत संग मिले, जप पूर्ण काम राम सब काम पूर्ण दुख बदीर्ण, हर निमुख मनो ना बिसरे, आनंद अंदन सदा साचा सर्व गुण जगदीसर। अगणत ऊचिया पार ठाकर अगम जाको धामा, बिनवंत नानक मेरी इच्छ पूर्ण मिले श्री रंग रामा। कई कोटक जग फला सुन गावन हरे राम, हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम। हर नाम जपत सोहंत प्राणी ताकि महिमा कित गना, हर बिसर नाही प्राण प्यारे चितवंत दर्शन सदमना। शुभ दिवस आए गह कंठ लाए प्रभ ऊचक म्या पारे, बिनवंत नानक सफल सब किश प्रभ मिले अत प्यारे। बिहागड़ा महला पंजवां शंत अनकाए रातड़िया, वड़ दुहेली राम पाप कमाउंदिया, तेरा कोई ना बेली राम कोई ना बेली होए तेरा, सदा पछोता वहे गुण गोपाल न जपै रसना फिर कदो से देह आवे। तार वार विशुन्ने न पाप जुड़ते जम्बा गौनिया केली, बिनवंत नानक बिन नाम हर के सदा फिरत दुहेली। तू वल वंच लूप करै सब जाने जानी राम, लेखा तरम पया तिल पीड़े कानी राम। किरत कमाणे दुख सहो प्राणी अनक जोन परमाया, महामोहनी संग राता रतन जन्म गवाया, एक सहर के नाम बाजो आन का सियाणी। बिनवंत नानक लेख लिखिया परम मोहे लोभाणी, बीच ना कोय करे अकिरत कान विछड़ पया, आए खरे कठन जम कंकर पकड़ लया, पकड़े चलाया अपना कमाया महामोहनी रातिया। गुण गोविंद गुरमुख ना जपते जपया, तप तो थम गल लातिया, काम क्रोध अहंकार मूठा खोए ज्ञान पछता पिया। बिनवंत नानक संजोग भूला हर जाप रसन ना जापया, तुझ बिन को नाही प्रभ राखण हारा राम। पतत उदाहरण हर बिरद तुम्हारा राम, पतत उदाहरण शरण स्वामी कृपा निदयाला, अंध कूप ते उदर करते सगल कट प्रपाला, शरण तेरी कट महा बेड़ी एक नाम देह आधारा। बिनवंत नानक कर दे राखो गोबिंद दीन दयारा, सो दिन सफल गणिया हर प्रभु मिलाया राम, सब सुख प्रगटिया दुख दूर पराया राम। सुख सहज आनंद विनोद सदही गुण गोपाल नित गाइए, भज साध संगे मिले रंगे बहुड़ जोन ना ताइए। गह कंठ लाए सह सुभाए आदि अंकर आया, बिनवंत नानक आप मिलिया बहुड़ कतू ना जाया। बिहागड़ा महला पंजवां शंत सुनो बिनंतिया, स्वामी मेरे राम कोट अपराध भरे पी तेरे चेरे राम। दुख हरण कृपा करन मोहन कल कलेसै भंजना, शरण तेरी रख ले हो मेरी सर्व मैं निरंजना। सुनत पेखत संग सब कै प्रभ नेर हूं ते नेरे, अरदास नानक सुन स्वामी रख ले हो करके चेरे। तू समर्थ सदा हम दीन पिखारी राम,
माया मोहे मगन कट लिहो मुरारी राम। लोभ मोहे बेकार बांधियो अनक दुख कमावने, अलिपत बंधन रहत करता किया अपना पावने। कार अनुग्रह पतत पावन बहु जोन प्रमते हारी, बिनवंत नानक दास हर का प्रभ जी प्राण आधारी। तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोरी राम, पल है अकृत कना पूर्ण दृष्ट तेरी राम। आगाध बोध अपार करते मोहे नीच कछु ना जाना, रतन त्याग संग्रहन कौडी पशु नीच एना। त्याग चलती महा चंचल दोह कर कर जोरी, नानक शरण समर्थ स्वामी पैज रख मोरी। जा ते विछड़िया तिन आ मिलाया राम, साधु संग में हर गुण गाया राम। गुण गाए गोविंद सदा नीके कल्याण मैं प्रगट पए, सेजा सुहावी संग प्रभ कै अपने प्रभ कर ले। छोड़ चिंत अचिंत होए बहुड़ दुख ना पाया, नानक दर्श पेख जीवे गोविंद गुण निद गाया। बिहागड़ा महला पंजवा शंत बोल सो तरमीड़िया, मोन का तारी राम तू नेत्री देख चलिया। माया ब्योहारी राम संग तेरे कश ना चले, बिना गोविंद नामा देश वेश स्वर्ण रूपा सगल ऊने कामा। पुत्र कलतरना संग सोबा हस्त कोर विकारी, बिनवंत नानक बिन साध संगम सब मिथ्या संसारी। राजन क्यों सोया तू नींद परे, जागत कत नाही राम। माया झूठ रुदन केते बिललाही राम, बिललाहे केते महामोहन बिन नाम हर के सुख नहीं। सहस सियाणप उपाव था के जय पाव तै जाई, आद अंते मद पूर्ण सर्वत्र कटकट आही। बिनवंत नानक जिन साध संगम से पत सेती कर जाही, नरपत जान ग्रहयो सेवक स्याणे राम। सर पर विछड़ना मोहे पछताणे राम, हर चंदौरी देख पूला कहां अस्थित पाई है। बिन नाम हर के आन रचना अहला जन्म गवाई है। हां हां करत ना तृष्ण बूझे न काम पूर्ण ज्ञाने, बिनवंत नानक बिन नाम हर के त्या पछताने। तार अनुग्रह अपना कर लीना राम, पूजा गह काढ़ लियो साधु संग दीना राम। साध संगम हरिया राधे सगल कलमल दुख जले, महा धर्म सो दान किरिया संग तेरे से चले। रसना अराधा एक स्वामी हर नाम मन तन पीना, नानक जिसनो हर मिलाए सो सर्व गुण परबीना। बिहागड़े की वार महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक महला तीजा, गुर सेवा ते सुख पाई है होर थै सुख ना पाल। गुर कै शब्द मन भेदी है सदा वसै हर नाल। नानक नाम तिन्ना कौ मिलै जिन हर वेखै नजर निहाल। महला तीजा, सिफत खजाना बख्स है जिस बख्सै सो खर्चै खाए, सतगुर बिन हथ ना आवई सब थके कर्म कुमाए। नानक मनमुख जगत तनहीन है, अगै भुखा के खाए पौड़ी सब तेरी तू।

का संबंध नानक सच्चे नाम बिन वर्तन वर्तै अंध महला चौथा। अंधे चानन तां थीऐ जा सतगुर मिलै रजाए, बंधन तोड़ै सच वसै अज्ञाना दे राजाए। सब किश देखै तिसै का जिनकी आतन साज, नानक सरण करतार की करता रखै लाज। पौड़ी जदों आपे थाट किया बै करतै, तदों पुछना सेवक बिया, तदो क्या को लेवै क्या को देवै, जा अवरना दूजा किया। फिर आपे जगतो पाया करतै, दान सबना को दिया। आपे से बनाईयन गुरमुख, आपे अमृत पिया, आप निरंकार आकार है आपे, आपे करै सोथिया। सलोक महला तीजा, गुरमुख प्रभ सेवै सद साचा, अंदन सहज प्यार, सदा आनंद गावै गुण साचे, अर्ध उर्द उरतार। अंतर प्रीतम वसिया, तुर कर्म लिखिया करतार, नानकिया मिलाया नू आपे कृपा तार। महला तीजा, कहया कथया ना पाईऐ, अंदर रह सदा गुण गाए, विण कर मैं किने ना पायो, भौक मोए बिललाए। गुर कै शब्द मन तन भिजै, आप वसै मन आए, नानक नदरी पाईऐ आपे ले मिलाए। पौड़ी आपे वेद प्राण सब शास्त्र, आप कथा आप भिजै, आपे ही बै पूजे करता, आप पर पंच करी जै। आप निर्विरतो आप निर्विरती, आपे कथ कथी जै। आपे पुन सब आप कराए, आप अलिप्त वर्ती जै, आपे दुख सुख देवै करता, आपे बख्श करी जै। सलोक महला तीजा, सेखा अंदरों जोर छड तू, पाओ कर चल गवाए। गुर कै पै केते निस्तरे, पै विच निरपाओ पाए, मन कठोर शब्द भे तू, सांत वसै मन आए। शांति विचकार कमावणी, सा खसम पाए थाए, नानक काम क्रोध किनै ना पायो, पुछो ज्ञानी जाए। महला तीजा, मन मुख माया मोह है, नाम ना लगो प्यार, कूड कमावै कूड संग्रह, कूड करे आहार। बिख माया तन संच मरे, अंते होए सब शार, कर्म धर्म सुच संयम करे, अंतर लो विकार। नानक जे मन मुख कमावै, सो थाए ना पवै, दरगै होए खुआर। पौड़ी आपे खानी आपे बाणी, आपे खंडवर पंड करे, आप समुंद आप है सागर, आपे ही विचरतन तरे। आप लहाए करे जिस कृपा, जिसनो गुरम करे हरे, आपे पवजल आप है बोए था, आपे खेवट आप तरे। आपे करे कराए करता, अवरना दूजा तुझे सरे। सलोक महला तीजा, सदगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, नाम पदार्थ पाई है, अचिंत वसै मन आए। जन्म मरण दुख कटिए, हमें ममता जाए, उत्तम पदवी पाई है, सच्चे रहे समाए। नानक पूर्व जिन कौ लिखिया, तिन्ना सतगुर मिलिया आए। महला तीजा, नाम रता सतगुरु है, कलयुग बोइथ होए, गुरमुख होवै सो पार परै, जिन्ना अंदर सच्चा सोए। नाम संभाले नाम संग्रह, नामे ही पत होए, नानक सतगुर पाया कर्म प्राप्त होए। पौड़ी आपे पारस आप तात है, आप की तोन कंचन, आपे ठाकर सेवक आपे, आपे ही पाप खंडन।
ਆਪੇ ਸਭ ਘਟ ਭੋਗਵੈ ਸੁਆਮੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਅੰਜਨ, ਆਪ ਬੇਕ ਆਪ ਸਭ ਬੇਤਾ, ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਭੰਜਨ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਾ ਲਾਹੇ ਨਾ ਰੱਜੈ, ਤੁਧ ਕਰਤੇ ਤੂੰ ਹਰ ਸੁਖਦਾਤਾ ਵੱਡਨ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜੀ ਕੇ ਬੰਦਨਾ, ਜੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕੁਮਾਹੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਠਵਰ ਨਾ ਪਾਵਹੀ, ਮਰ ਜਮੈ ਆਵੈ ਜਾਹੇ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ, ਨਾਮ ਨਾ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜੰਪੁਰ ਬੱਧੇ, ਮਾਰੀ ਹੈ ਮੋਹਿ ਕਾਲੈ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੈ ਚਾਕਰੀ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ, ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਕੁਲ ਕਾ ਕਰਨ ਉਧਾਰ। ਪੌੜੀ। ਆਪੇ ਚਾਟ ਸਾਲ ਆਪ ਹੈ ਪਾਦਾ, ਆਪੇ ਚਾਟੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕਉ ਵਾਣੇ, ਆਪੇ ਮਿਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਹੈ ਆਪੇ, ਆਪੇ ਬਾਲਕ ਕਰੇ ਸਿਆਣੇ। ਇਕ ਥੈ ਪੜ ਬੁਜੈ ਸਭ ਆਪੇ, ਇਕ ਥੈ ਆਪੇ ਕਰੇ ਇਆਣੇ, ਇਕ ਨਾ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਏ, ਜਾਂ ਆਪ ਤੇਰੇ ਮਨ ਸੱਚੇ ਪਾਣੇ। ਜਿਨਾ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਸੇ ਜਨ ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਜਾਣੇ। ਸਲੋਕ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਲ ਕਲ ਵਾਲੀ ਕਾਮ ਮਦ, ਮਨੁਆ ਪੀਵਣਹਾਰ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਟੋਰੀ।

संध्या नानक संध्या करै मनमुखी जियो ना टिकै मर जमै होए खुवार महला तीजा प्रयो प्रयो करती सब जग फिरी मेरी प्यास ना जाए नानक सतगुर मिलया मेरी प्यास गई फिर पाया कर आए पौड़ी आपे तंत परम तंत सब आपे आपे ठाकर दास पाया आपे दास अठ वर्ण उपायन आप ब्रह्म आप राज लया आपे मारे आपे छोड़ आपे बक्से करे दया आपा भुल ना भुले कभी सब सच तपावस सच थया आपे जिन्ना बुझाए गुरमुख तिन अंदरों दूजा भरम गया श्लोक महला पंजवां।

साहिब सदा हजूर है भरमे के शौड कट कै अंतर जो तरे हो हर का नाम अमृत है दारू एओ लाए हो सतगुर का पाणा चित रखो संजम सच्चा ने हो नानक अथ है सुख है अंदर रख सी अगे हर स्यों केल करे हो पौड़ी आपे पार अठारे बनस्पत आपे ही फल लाए आपे माली आप सब सिंचै आपे ही मुए पाए आपे करता आपे भुगता आपे दे दिवाए आपे साहेब आपे है राखा आपे रहा सुमाए जन नानक वड्याई आखे हर करते की जिसनो तिल ना तमाए श्लोक महला तीजा मानस परिया आणिया मानस परिया आए जित पीता मत दूर होए बरल पवै विच आए अपना पराया ना पछाणी खसमो धक्के खाए जित पीता खसम विसरै दुर्गै मिलै सजाए झूठा मद मूल ना पीचई जेका पार वसाए नानक नदरी सब सच मद पाई है सतगुर मिले जिस आए सदा साहेब कै रंग रहै महली पावै थाओ महला तीजा एहो जगत जीवत मरै जा इसनो सोजी होए जा तिन सवालिया ता सब रहया जगाए ता सिद्ध होए नानक नदर करे जे अपनी सतगुर मिल है सोए गुर प्रसाद जीवत मरे ता फिर मरण ना होए पौड़ी जिसदा कीता सब किश होवे जिसनो परवाह नाही किसे केरी हर जियो तेरा दिता सब को खावे सब मोहताजी कड्डे तेरी जे तुदनो सा लाहे सो सब किश पावै जिसनो कृपा निरंजन केरी सोई साहो सच्चा वणजारा जिन वखर लद्या हर नाम तन तेरी सब तिसैनो सा लाहो संतो जिन दूजे भाव की मार विडारी ढेरी सलोक कबीरा मरता मरता जग मुआ मर पे ना जाने कोए ऐसी मरनी जो मरे बौर न मरना होए महला तीजा।

अग्गै जाए, ज्ञानी होए सो चेतन होए, अज्ञानी अंध कमाए, नानक एथै कमावै सो मिलै, अग्गै पाए जाए महला तीजा, तुर खसमै का हुकुम पया, विन सतगुर चेत्या न जाए, सतगुर मिलिया अंतर रव रहिया, सदा रहिया लिव लाए, दम दम सदा संभालदा, दम न बिरथा जाए, जन्म मरण का पहो गया, जीवन पदवी पाए, नान केहो मर्तबा तिसनो दे, जिसनो कृपा करे रजाए पौड़ी, आपे दाना बीनिया, आपे प्रधाना, आपे रूप दिखालदा, आपे लाए ध्याना, आपे मोनी वरतदा, आपे कथै ज्ञाना, कौड़ा किस न लगई सब नाही पहना, उस्तत बरना सकिय ऐसा सत कुरबाना, श्लोक महला पहला, कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार, पुत जिनूरा ती जिनूरी, जोरू जिन्ना दा सिकदार महला पहला, हिंदू मूले पूले अखुट्टी जाही, नारद कया से पूज कराही, अंधे गुंगे अंधे अंधार, पाथर ले पूजे मुद गवार, ओहे जे आप डुबे तुम कहां तरन हार पौड़ी, सब केहो तेरा वस है तुम सच्चा साहो, भगत रते रंग एक कै पूरा वे साहो, अमृत भोजन नाम हर राज राज जन खाहो, सब पदार्थ पाईयन सिमरन सच लाहो, संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगमागा हो, श्लोक महला तीजा, सब किश हुक्मे आमदा सब किश हुक्मे जाए, जे को मूर्ख आपो जाने अंधा अंध कमाए, नानक हुक्म को गुरमुख बुझै, जिसनों कृपा करे रजाए महला तीजा, सो जोगी जुग सो पाए, जिसनों गुरमुख नाम प्राप्त होए, तिस जोगी की नगरी सब को वसै, पेखी जोग ना होए, नानक ऐसा विरला को जोगी, जिस कट प्रगट होए पौड़ी।

आपे वट परवार नानक मंगै दान हर संता रेनहार होर दा तार ना सुजई तू देवनहार सुध एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद राग वढ़ंस महला पहला कर पहला अमली अमल ना अंबड़ै मच्छी नीर ना होए जो रते सह अपने तिन भावै सब कोए हाँ वारी वन्या खनिए वन्या तो साहेब के नामै रहाओ साहेब सफलियो रुखड़ा अमृत जाका नाओ जिन पिया ते तृप्त पए हों तिन बलहा रह जाओ मैं की नजर ना आवही वसै हबिया नाल तिखा तिहाया क्यों लह जा सर पी तरपाल नानक तेरा बाणिया तू साहेब मैं रास मन ते तोखा ता लह जा सिफत करी अरदास वढ़ंस महला पहला गुणवंती सहोरावया निर्गुण कूके काए जे गुणवंती थी रहे ता भी सहोरावन जाए मेरा कंतरी सालू की तन्यवरा रावे जी रहाओ करनी कामन जे थी है जे मन तागा होए माणक मुल ना पाई है लीजे चित परोए राहो दसाई ना जुलाया खामड़ी आस तै सह ना

जिन जेहवा हर रस न चखियो सा जेहवा जल जाओ, अन रस सादे लग रही दुख पाया दूजे पाए, सबना नदर एक है आपे फर्क करे, नानक सतगुर मिले फल पाया, नाम वढाई दे वढांस महला तीजा। माया मोह गुबार है गुरबिन ज्ञान ना होई, शब्द लगे तन बुझया दूजे पर जवे गोई, मन मेरे गुरमत करनी सार, सदा सदा हर प्रभ रवै ता पावै मुख द्वार रहाओ। गुणा का निदान एक है आपे देता को पाए, बिना मैं सब विछड़ी गुर कै शब्द मिलाए, मेरी मेरी कर दे कट गए इतना हथ के हो ना आया, सतगुर मिलै सच मिलै सच नाम समाया, आसा मनसा एहो शरीर है अंतर जो जगाए, नानक मनमुख बंद है गुरमुख मुक्त कराए, वढांस महला तीजा। सुहागणी सदा मुखी उजला गुर कै सहज सुभाए।

तै कार्य अपने तामस बहुत अहंकारा। किसन सदा अवतारी रूदा कित लगत रह संसारा। गुरमुख ज्ञान रते जुगे अंतर चूकै मोह गुबारा। सतगुर सेवा ते निस्तारा गुरमुख तरह संसारा। साचै नर ते बैरागी पाए मुख द्वारा। एको सच वरतै सब अंतर सबना करे प्रतपाला। नानक इक्स बिन मैं अवर ना जाना सबना दीवान दयाला। अवढांस महला तीजा। गुरमुख सच संजम तत् ज्ञान गुरमुख साचै लगै ध्यान। गुरमुख मन मेरे नाम संभाल सदा निभै चलै तेरे नाल रहाओ। गुरमुख जात पात सच सोए गुरमुख अंतर सखाई प्रभ होए। गुरमुख जिसनो आप करे सो होए गुरमुख आप वडाई देवै सोए। गुरमुख शब्द सच करनी सार गुरमुख नानक परवार साधार। वढ़ंस महला तीजा। रसना हर साध लगी सह सुभाए मन तृप्तिया हर नाम ते आए। सदा सुख साचै शब्द विचारी अपने सतगुर विटों सदा बलिहारी रहाओ। अखी संतोखिया एक लिव लाए मन संतोखिया दूजा पाओ गवाए। देह शरीर सुख होवै शब्द हर नाए नाम परमल हृदय रया समाए। नानक मस्तक जिस वड भाग गुर की बाणी सहज बैराग। वढ़ंस महला तीजा। पूरे गुरते नाम पाया जाए सच्चा शब्द सच समाए। ए मन नाम निदान तू पाए अपने गुर की मन लहर जाए रहाओ। गुर कै शब्द विचों मैल गवाए निर्मल नाम वसै मन आए। परमे पूला फिर संसार मर जन्म जम करे खुवार। नानक सेवड़ पागी जिन हर नाम ते आया।

जल थल महियल रहया भरपूरे, निकट वसै नाही प्रभ दूरे। जिसनो नजर करे सो त्याए, आठ पैर हर के गुण गाए। जी जंत सगले प्रतपारे, शरण परयो नानक हर द्वारे। वढ़ंस महला पंजवा, तू वड़दाता अंतर जामी। सब मैं रावया पूर्ण प्रभ स्वामी। मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा, हाँ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ। तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे, मन निर्मल होए संता तूरे। चरण कमल हृदय उरतारे, तेरे दर्शन को जाई बलिहारे। कर कृपा तेरे गुण गावा, नानक नाम जपत सुख पावा। वढ़ंस महला पंजवा, साध संग हर अमृत पीजै। ना जियो मरै ना कबहू चीजै, वडभागी गुरपुरा पाई है। गुर कृपा ते प्रभु त्याई है रहाओ। हर रतन जवाहर हर माणक लाला, सिमर सिमर प्रपय निहाला। जत कत पेखो साधु सरना, हर गुण गाए निर्मल मन करना। घट घट अंतर मेरा स्वामी उठा, नानक नाम पाया प्रभु।

जह चित आवै सो थान सुहावा, जित वेला विसरै तां लागै हवा। तेरे जी तू सधी साथी, संसार सागर ते कढ दे हाथी। आवन जाना तुम ही किया, जिस तू राखै तिस दुख ना थिया। तू एको साहिब अवर ना होर, बिनों करै नानक कर जोर। बड़हंस महला पंजवां, तू जाना है ता कोई जाने, तेरा दिया नाम खाने। तू अचरज कुदरत तेरी बिस्मा रहाओ, तुझे आपे कारण आपे करना, हुक्मे जमण हुक्मे मरना। नाम तेरा मंत्र आधारी, नानक दास बख्शीश तुम्हारी।

सच कमाई है, जब साच अंदर होए साचा ताम साचा पाई है, लिखे बाजो सुरत नाही बोल बोल गवाई है, जिथे जाए बहिया भला कही है, सुरत शब्द लिखाई है, काया कूड़ विगाड़ काहे नाई है।

नदर तुद अरदास मेरी जिन आप्यो पाया ता मैं कहया कहण जा तुझै कहाया वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना मंदा किसै ना आख झगड़ा पावना नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आवना जिस नाल संगत कर श्री की जाए क्या रूवावना जो दे सहना मन कहना आखिया आख नाही वावना वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना साबियो पाईया ने आप आपे नजर करे कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे सब कोई मीठा मांग देखे खसम पावे सो करे किश पुन दान अनेक कर।

पहला करहो दया तेरा नाम वखाणा सब यो पाई है आप आपे सर्वे समाणा सर्वे समाणा आप तू है उपाय तंदे लाइया एक तुझी की है राजे एक ना पिख पवाइया लोभ मोह तुझ किया मीठा एत परम पुलाना सदा दया करो अपनी ता नाम खाना नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना दू गया सुख आए समाणा गावन सुर नर सुगड़ सुजाना सुर नर सुगड़ सुजान गावे जो तेरे मन पावे माया मोहे चेत नाही ऐला जन्म गवावे एक मूड मुगद ना चेतै मूले जो आया ते जाना नाम तेरा सदा साचा सोए मैं मन पाणा तेरा भक्त सुहावा अमृत तेरी बाणी सेवक सेवै पाओ कर लागा साओ प्राणी साओ प्राणी तिन्ना लागा जिन्नी अमृत पाया नाम तेरा जोए राते नित चढ़ै सुवाया एक कर्म धर्म ना होए संजम जाम नायक पछाणी वक्त सुहावा सदा तेरा अमृत तेरी बाणी हाँ बलिहारी साचे नावे राज तेरा कबो ना जावे राजू ता तेरा सदा निश्चल एहो कबो ना जावे चाकर ता तेरा सोए होवे जोए सह समावे दुश्मन ता दुख ना लगे मूले पाप नेड़ ना आवे हाँ बलिहारी सदा होवा एक तेरे नावे जुगै जुगंतर भगत तुम्हारे कीर्त करे स्वामी तेरे द्वारे जपै ता सा

गुरप्रसादी करो कृपा लेहो जम ओबारे जुगा जुगंतर भगत तुम्हारे वड्डे मेरे साहेबा लाख्या पारा क्यों कर करो बेनंती हूं आख ना जाना नदर करे ता सच पछाणा साचो पछाणा ताम तेरा जामया बुझावे दुख भूख संसार की सह चुकावे बिनवंत नानक जाय सहसा बुझे गुर विचारा वड्डा साहिब है आप अलख अपारा तेरे बंके लोयन दंतरी साला सोहने नक जिन लंबड़े वाला कंचन काया सोने की ढाला सोवन ढाला कृष्ण माला जपो तुसी सहेलियो जम द्वार ना हो खड़िया सिख सुनो महेली हो

तरल जवानी तरला जवानी आप पानी इच मन की पूरी है। सारंग ज्यों पग तरै ठिम ठिम आप संदूर है। श्री रंग राती फिरै माती उद गंगा वाणी बिरवंत नानक दास हरका तेरी चाल सुहावी मदराड़ी बाणी। वडहंस महला तीजा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अपने पिर कै रंग रती मुइये सोभावंती नारे सच्चा शब्द मिल रहीये मुइये। पिर रावे पाए प्यारे सच्चा पाए प्यारी कंत सवारी हर हर स्यों ने हो रिचाया। आप गवाया ता पिर पाया गुर कै शब्द समाया। सा तन शब्द सुहावी प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी नानक सा तन मिल लई पिर आपे साचा साहे सवारी। निर्गुण मंत्रिये पिर देख अधूरे राम गुरमुख जिनी रावया मुइये। पिर रव रया पर पूरे राम पिर रव रया पर पूरे वेख अजूरे जुजुए को जाता। तन बाली भोली पिर सहज रावै मिलिया करम विधाता। जिन हरा चाखिया शब्द सुपाखिया हर सर रही परपूरे नानक कामण सा पिर भावै सबदे रह हदूरे। सुहागणी जाए

जिन्नी आप गवाया तिन्नी फिर पाया रंग सौरलिया माण सदा रंग राती सहजे माती अंधन नाम वखाण कामन वड़ पागी अंतर लिव लागी हर का प्रेम सुभाया नानक कामन सहजे राती जिना सच सिंगार बनाया हमें मार मुइये तू चल गुर कह पाए हर वर रावे सदा मुइये निकर वासा पाए निकर वासा पाए शब्द बजाए सदा सुहागण नारी पर रलियाला जुबन बाला अंधन कंध सवारी हर वार सुहागो मस्तक भागो सच्चे शब्द सुहाए नानक कामण हर रंग राती जा चले सतगुर पाए वडांस महला तीजा गुरमुख सब

मन मेरिया जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे व्यापारा सतगुर सेव ने अपना अंतर शब्द अपारा अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा नामे नौनद पाई मन मुख माया मोहे व्यापे दुख संतापे दूजे पत गवाई हाउ मैं मार सच शब्द समाने सच रते अधकाई नानक मानस जन्म दुलंब है सतगुर बूझ बुझाई मन मेरे सतगुर सेव ने अपना से जनवट पागी राम जो मन मारे अपना से पुरख बैरागी राम से जन बैरागी सच लिव लागी अपना आप पछाणिया मत ने चलियत गूड़ी गुरमुख सहजे नाम वखाणिया एक कामन हितकारी माया मोहे प्यारी मन मुख सोए रहे अपागे नानक सहजे सेवै गुरे अपना से पूरे वडभागे वडहंस महला तीजा रतन पदार्थ वणजी है सतगुर दिया बुझाई राम लाहा लाभ हर भगत है गुण मैं गुणी समाई राम गुण मैं गुणी समाए जिस आप बुझाए लाहा भगत संसारे बिन भगती सुख ना होई दूजे पत खोई गुरमत नाम आधारे वखर नाम सदा लाभ है जिसनो एतवा पार लाए रतन पदार्थ बन जी है जा सतगुर दे बुझाए माया मोह सब दुख है खोटा होवा पारा राम कूड़ बोल बेखावनी बो वदै विकारा राम बो वदै विकारा सह सहो संसारा बिन नाम पत खोई पढ़ पढ़ पंडित वाद वखाणा बिन बूझे सुख ना होई आवन जाना कदे ना चूकै माया मोह प्यारा माया मोह सब दुख है खोटा होवा पारा खोटे खरे सब परखिया नु ते सच्चा कै दरबारा राम खोटे दरगह सुटियन उबे करन पुकारा राम उबे करन पुकारा मुगद गवारा मनमुख जन्म गवाया बिखिया माया जिन जगत भुलाया साचा नाम ना पाया मनमुख संता नाल वैर कर दुख हटे संसारा खोटे खरे परखियन ते सच्चा दरबारा राम आप करे किसे आखिया होर करना छूना जाई राम जित पावै तित लाए सी ज्यो तिसदी वड्याई राम ज्यो तिसदी वड्याई आप कराई वरियाम ना फुसी कोई जग जीवन दाता कर्म विधाता आपे बख्शे सोई गुरप्रसादी आप गवाई है नानक नाम पत पाई आप करे किसे आखिए होर करना किछु ना जाई वड़हंस महला तीजा सच्चा सौदा हर नाम है सच्चा वापारा राम गुरमती हर नाम पाई है अतमोल अफारा राम अतमोल अफारा सच वापारा सच वापार लगे वडभागी अंतर बाहर भगती राते सच नाम लिव लागी नदर करे सोई सच पाए गुर कै शब्द विचारा नानक नाम रते तिन्ही सुख पाया साचे के वापारा हमें माया मैल पुरी जय राम गुरमति मन निर्मला रसना रस पी जय राम रसना हर रस पीजै अंतर पीजै साच शब्द बिचारी अंतर खूहटा अमृत भरिया शब्दे काढ़ पी अपनिहारी जिस नजर करे सोई सच लागै रसना राम रिविजै नानक नाम रते से निर्मल होर हमै मैल भरीजै पंडित जोत की सब पढ़ पढ़ कूक दे किस पै करै पुकारा राम माया मोह अंतर मन लागै।

मैं गुर बिने अवरना कोई बेली गुर सतगुर प्राण हमारे कहो नानक गुर नाम दृढ़ाया हर हर नाम हर सती हम चात्रक दीन हर पास बेनंती वड़हंस महला चौथा हर कृपा कर सतगुर मेल सुदाता राम हम पूछे सतगुर पास हर बाता राम सतगुर पास हर बास पूछे जिन नाम पदार्थ पाया पाए लगे नित करे बिनंती गुर सतगुर पंथ बताया सोई भगत दुख सुख समत कर जाने हर हर नाम हर राता हर कृपा कर गुर सतगुर मिल सुखदाता सुन गुरमुख नाम साबिन से हो मैं पापा राम जप हर हर नाम लथे अड़े जगता पा राम हर हर नाम जिनी आराध्या तिनके दुख पाप निवारे सतगुर ज्ञान खड़ग हथ दीना जम कंकर मार बिदारे हर हर हर प्रभ कृपा तारी सुखदाते दुख लाथे पाप संतापा सुन गुरमुख नाम सब बिन से हम मैं पापा जप हर हर नाम मेरे मन पाया राम मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम गुरमुख जप सब रोग गवाया अरुत पय शरीरा आंदन सह समाध हर लागी हर जपया गैर गंभीरा जात या जात नाम जिन त्याया तिन परम पदार्थ पाया जप हर हर नाम मेरे मन पाया।

तू दुख पंजन सर्व सुख दाता, हम पाथर तरे तराया। सतगुर पेट राम रस पाया, जन नानक नाम उदारे। हर तारो कृपा कर, कृपा लिहो उबारे राम। वडहंस महला चौथा, कोड़ियां एक ओंकार। सतगुर प्रसाद देह तेजन जी, राम यो पाईया राम। तन मानस जन्म पुन पाईया राम, मानस जन्म वड पुन्ने पाया। देह सो कंचन चंगड़िया, गुरमुख रंग चलूला पावै। हर हर हर नवरंगड़िया, एह देह सो बांकी जित हर जापी। हर हर नाम सुहाविया, वड भागी पाई नाम सिखाई। जन नानक राम यो

बेखम पयंगा अंत तरंगा गुरमुख पार लंघाए हर बोहित चाड़ बड़ पागी लंगा गुर खेवट शब्द दराए आन देनो हर रंग हर गुण गावे हर रंगी हर रंगा जन नानक निर्वाण पद पाया हर उत्तम हर पद चंगा कड़ियाल मुखे गुर ज्ञान दृढ़ाया राम तन प्रेम हर चाबक लाया राम तन प्रेम हर हर लाए चाबक मन जिने गुरमुख जीतिया अगड़ो गड़ावे शब्द पावे अप्यो हर रस पीतिया सुन सरवण बाणी गुर बखाणी हर रंग तुरी चढ़ाया महा मार्ग पंथ बिखड़ा जन नानक पार लंघाया कोड़ी ते जिन दे हे राम पाइया राम जित हर प्रभ जापै सा तन तन तुखाइया राम जित हर प्रभ जापै सा तन सा बासै तुर पाया किरत जुड़ंदा चढ़ देहड़ कोड़ी बिखमन गाए मिल गुरमुख परमानंदा हर हर काज रचाया पूरा मिल संत जना जाने आई जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना वादाई वढांस महला चौथा देहे तेज नड़ी हर नवरंगिया राम गुर ज्ञान गुरु हर मंगिया राम।

ज्ञान मंगी हर कथा चंगी, हर नाम गत मित जानिया, सब जन्म सफलियो किया करता, हर राम नाम खानिया, हर राम नाम सलाहे हर जप, हर भगत हर जन मंगिया, जन कह नानक सुनो संतो, हर भगत गोविंद चंगिया। देहे कंचन जीन सुविन आराम, जड़ हर हर नाम रतन आराम, जड़ नाम रतन गोविंद पाया, हर मिले हर गुण सोखणे, गुर शब्द पाया हर नाम ते आया, वडभागी हर रंग हर बने, हर मिले सुवामी अंतरजामी, हर नव तन हर नवरंगिया, नानक वखाणे नाम जाने, हर नाम हर प्रमंगिया। कड़ियाल मुखे गुर अंक सपाया राम, मन मैंगल गुर शब्द वस आया राम, मन वसगत आया परम पद पाया, सातन कंत प्यारी अंतर प्रेम लगा हर सेती, कर सोहै हर प्रभ नारी, हर रंग राती सहजे माती, हर प्रभ हर हर पाया, नानक जन हर दास कहत है, वडभागी हर हर त्याया। देहे कोड़ी जी जित हर पाया राम, मिल सतगुरु जी मंगल गाया राम, हर गाए मंगल राम नामा, हर सेव सेवक सेवकी, प्रभ जाए पावे रंग महली, हर रंग माने रंग की, गुण राम गाए मन सुभाए, हर गुरमति मन त्याया, जन नानक हर कृपा तारी, देह कोड़ी चढ़ हर पाया। राग बड़ा हंस महला पंजवा, शंत कर चौथा।

मर जाना है। मरण मुनसा सूर्या हक है, जो होए मरण परवानो, सूर्य से ही आज्ञा आखी है, दरगह पावे साची मानो, दरगह मान पावे पत स्यो जावे, आगे दुख न लागे, कर एक ते आवे ता फल पावे, जित सेवे पहु भागे, ऊंचा नहीं कहना मन में रहना, आपे जाने जानो, मरण मुनसा सूर्या हक है, जो होए मरे परवानो, नानक किसनो बाबा रोई है, बाजी है ओ संसारो, कीता वेख साहब अपना, कुदरत करे बिचारो, कुदरत बिचारे तारण तारे, जिन किया सो जाने, आपे वेख आपे बूझे, आपे हुक्म पछाणे, जिन किश किया सोई जाने, ता का रूपया पारो, नानक किसनो बाबा रोई है, बाजी है एहो संसारो, वडहंस महला पहला दखनी, सच सरंदा सच्चा जानिए, सचड़ा पर्वत गारो, जिन आपी ने आप साजिया, सचड़ा लाखिया पारो, दोए पुड़ जोड़ विछोड़ियान, गुरबिन कोरिया दारो, सूरज चंद सिरजियान, अहनिस चलत विचारो, सचड़ा साहेब सच तू, सचड़ा देह प्यारो रहाओ, तुध सिरजनी मेदनी, तुध सिरजी मेदनी, दुख सुख देव नहारो, नारी पुरख सिरजिया, बिख माया मोह प्यारो, खानी बाणी तेरिया, देह जिया आधारो, कुदरत तख्त रचाया, सच नवेण नहारो, आवागमन सिरजिया, तू थिर करना हारो, जमन मरना आए गया, बदक जियो बिकारो, पूंडड़ै नाम विसारिया, बूढ़ड़ै क्या तिस्चारो, गुण छोड़ बिखलदया, अवगुण कावण जारो, सदड़े आए तिना जानिया, हुक्म सचे करतारो, नारी पुरख विछुनिया, विछड़िया मेलन हारो, रूप ना जाने सोहनिया, हुक्म बदी सरकारो, बालक बिरत ना जाननी, तोन हेत प्यारो, नौदर ठाके हुक्म सचै, हंस गया गैनारे, सा तन छुट्टी मुठी झूठ विदनिया, मृत कड़ा अंगनड़े बारे, सुरत मुई मरमाइए, महल रुनी दरबारे, रवो कंत महलिहो, सच्चे के गुण सारे, जल मल जाली ना वालिया, कपड़ पटिया बारे, वाजे वजे सच्ची बाणिया, पंच मोए मन मारे, जानी विछुनड़े मेरा मरण भया, त्रिग जीवन संसारे, जीवत मरे सो जानी है, फिर सचड़ा हित प्यारे, तुसी रोवो रोवन आई हो, झूठ मुठी संसारे, हाँ मुठड़ी तंदे तावनिया, फिर छोड़ियाड़ी विदनकारे, कर कर कंत महेलिया, रूड़े हित प्यारे, मैं फिर सच सलाहना, हौरे सियाड़िए नाम पतारे, गुर मिलिया वेस पलटिया, सा तन सच सिंगारो, आवो मिलो सहेलियो, सिमरो सिरजन हारो, बैयर नाम सुहागणी, सच सवारन हारो, गावो गीत ना बिरहड़ा, नानक ब्रह्म विचारो, वडहंस महला पहला, जिन जग सिरज समाया, सो साहेब कुदरत जानो वा, सचड़ा दूर ना पाली है, कटकट शब्द पछाणो वा, सच शब्द पछाणो, दूर ना जानो, जिन एह रचना राची, नाम ते आए ता सुख पाए, बिन नामे बिड़काची, जिन थापी बिद जाने सोई, क्या को कहे वखाणो, जिन जग थाप वताया जालो, सो साहिब परवानो, बाबा आया है उठ चलना, अद पंद है संसारो वा, सिर सिर सचड़े लिखिया, दुख सुख प्रभ विचारो वा, दुख सुख दिया जेहा किया, सो निबह जी नाले, जेहे कर्म कराए करता, दूजी कार ना पाले, आप निरालम तंदे बांदी, कर हुक्म छड़ावन हारो, आज कल कर दिया काल ब्याप, दूजे पाए विकारो, जम मार्ग पंथ ना सुजई, उजड़े अंध गवारो वा, ना जल लेप तो लाइया, ना भोजन प्रकारो वा,
ਭੋਜਨ ਭਾਉ ਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕਾਪੜ ਸਿੰਗਾਰੋ ਗਲ ਸੰਗਲ ਸਿਰ ਮਾਰੇ ਉਬੋ ਨਾ ਦਿਸੈ ਘਰ ਬਾਰੋ ਇਬਕੇ ਰਾਹੇ ਜਮਨ ਨਾਹੀ ਪਛਤਾਣੇ ਸਿਰ ਪਾਰੋ ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਕੋ ਬੇਲੀ।

रोवे कंत संभाल सदा गुण सार ना फिर मरे ना जाए गुरमुख जाता शब्द पछाता साचा प्रेम समाए जिने अपना पिर नहीं जाता कर्म विधाता कूड़ मुठी कूड़ियारे सुनियो कंत महेलियो पिर सेवो शब्द विचारे सब जग आप्यो पायो।

अपने गुर कहो तन मन दीजै ता मन भीजै तृष्णा दुख निवारे मैं फिर सच पछाणिया होर भूली अवगण यारे सचड़ा आप जगत्यो पाया गुर बिन कोर अंधारो आप मिलाए आप मिलाए आपे दे प्यारो आपे दे प्यार।

नानक नाम रताय करंगी शब्द सवारण हारा सोरठ महला तीजा हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारे जिचर घट अंतर है सासा एक पालो खिन विसरै तू स्वामी जानो बरस पचासा हम मूड मुगद सदा से भाई गुर कै शब्द परगासा हर जियो तुम्हें आपे देहो बुझाई हर जियो तुद विटों वारिया सद ही तेरे नाम विटों बल जाई रहाओ हम शब्द मोए शब्द मार जी वाले भाई शब्दे ही मुक्त पाई शब्दे मन तन निर्मल होवा हर वसिया मन आई शब्द गुरदाता जित मन राता हर स्यो रहया समाई शब्द ना जाने से अन्ने बोले से किते आए संसारा हर रस ना पाया बिरथा जन्म गवाया जम्मै वारो वारा बिष्टा के कीड़े बिष्टा माहे समाने मनमुख मुक्त गुबारा आपे कर वेखै मार्ग लाए भाई तिस बिन अवर ना कोई जो तुर लिखिया सो कोई न मिटै भाई करता करे सो होई नानक नाम वसिया मने अंतर भाई अवर ना दूजा कोई सोरठ महला तीजा गुरमुख भगत करे प्रभ पावै अंदर नाम वखाणे भगतां की सार करे आप राखै जो तेरे मन पाणे तू गुणदाता शब्द पछाता गुण कै गुणी समाणे मन मेरे हर जियो सदा समाल अंत काल तेरा बेली होवै सदा निभै तेरे नाल रहाओ दुष्ट चौकड़ी सदा कूड़ कमावै ना बूझै विचारे निंदा दुष्टि ते किन फल पाया हर नाक्स नखै बिदारे प्रहलाद जन सद हर गुण गावै हर जियो ले उबारे आप सकौ बहु भला कर जाणै मनमुख मत ना काई साधु जन की निंदा व्यापे जासन जन्म गवाई राम नाम कदे चेतै नाही अंत गए पछताई सफल जन्म भगता का कीता गुर सेवा आप लाए सबदे राते सहजे माते अंदन हर गुण गाए नानक दास कह बेनंती हों लागा तिन कह पाए सोरठ महला तीजा सो सिख सखा बंद पह पाई जे गुर के पाणी विच आवै अपने पाने जो चले पाई विछड़ चोटां खावै बिन सतगुर सो कदे ना पावै पाई फिर पछोतावै हर के दास सुहेले पाई जन्म जन्म के किल बिख दो काटे आपे मेल मिलाई रहाओ एहो कुटुंब सब जी के

हर नाम देवहो आधारे रहाओ। मनसा मार दुबदा सै सुमानी पाया नाम अपारा। हर रस चाख मन निर्मल हुआ क्रिविख कटनु हारा। शब्द मरो फिर जीवो सद ही ता फिर मरना होई। अमृत नाम सदा मन मीठा शब्दे पावै कोई। दात है दात रखी हथ अपने जिस पावै तिस देई। नानक नाम रते सुख पाया दरगह जा पैसे ही। सोरठ महला तीजा सतगुर सेवे ता सहज तुन उपजे गत मत तद ही पाए। हर का नाम सच्चा मन वसिया नामे नाम समाए। बिन सतगुर सब जग बौराना मन मुख अंदा शब्द ना जाने झूठे परम भुलाना रहाओ। त्रै गुण माया परम भुलाया हौ मैं बंधन कमाए। जमन मरन शरी उपर उबो गर्भ जौन दुख पाए। त्रै गुण वरतै सगल संसारा हौ मैं विच पत खोई। गुरमुख होवै चौथा पद चीनै राम नाम।

संत संग जाका मन शीतल ओह जाने सगली ठंडी। हाँ मैं रोग जाका मन व्यापत ओह जन्म मरे बिललाती। ज्ञान अंजन जाकी नेत्री पढ़िया ता कौ सर्व परगासा। अज्ञान अंधेरा सूजस नाही बहुड़ बहुड़ परमाता। सुन बेनंती स्वामी अपने नानक।

कोट पराध मिटे जन सेवा हर कीर्तन रस गाई है। इहां सुखिया गै मुख उजल जन का संग वड भागी पाई है। रसना एक अनेक गुण पूर्ण जन की केतक उपमा कही है। अगमा गोचर सद अविनाशी शरण संतन की लही है। निर्गुण नीच अनाथ अपराधी।

जरा मरा ताप सब नाठा गुण गोविंद नित गावो। सुनी अरदास स्वामी मेरा सर्व कला बन आई, प्रगट पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई। सोरठ महला पंजवां घर दूजा चौपदे एको अंकार, सतगुर प्रसाद एक पिता एक सके हम बारक। तू मेरा गुरहाई सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी, हर दर्शन देहो दिखाई। सुन मीता तूरी को बल जाई, एह मन तेरा पाई रहाओ। पाव मिलोवा मल मल तोवा, एह मन तै कु देसा। सुन मीता हो तेरी सरनाई आया, प्रभ मिलो देहो उपदेसा। मान ना की जय शरण परी जय, करै सो पला मनाई। सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पी जय, इउं दर्शन हर जियो पाई है। भयो अनुग्रह प्रसाद संतन कै, हर नामा है मीठा। जन नानक कौ गुर किरपा धारी, सबा कुल निरंजन डीठा। सोरठ महला पंजवा कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी, सर्व जिया का दाता रे। प्रतपाले नित सार संभाले, एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे। हर आराधना जाना रे, हर हर गुर गुर करता रे। हर जियो नाम परयो रामदास रहाओ। दीन दयाल कृपाल सुख सागर, सर्व घटा पर पूरी रे। पेखत सुन तो सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। हर बेअंत हो मित कर वरनाओ, क्या जाना हो कैसो रे। करो बेनती सतगुरे अपने, मैं मूर्ख देहो उपदेसो रे। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट परा दी तरिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भासना भरिया रे। सोरठ महला पंजवां जिन्ना बात को बहुत अंदेसरो, ते मिटे सब गया। सह सैन यार सुख मन नारी, ऊंद कमल बिगसया। देखो अचरज भया, जे ठाकर कहो सुनते अगाद बोध। सोरदय गुरदया रहाओ, जोए दूत मोहे बहुत संतावत। ते भयानक भया, करै बेनती राग ठाकर ते, हम तेरी शरणया। जह पंडार

एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर नाम वा भगत भंडार गुरु नानक कौ सौपे फिर लेखा मूल नान लिया। सोरठ महला पंजवा चरण कमल स्यों जा का मन लीना से जन तृप्त अगाई गुणिया मोल जिस हृदय ना वसया ते नर तृष्ण।

जेह जन ओट गही प्रभ तेरी से सुखिये प्रभ सरने, जेह नर बिसरिया पुरख विधाता ते दुखिया मैं गरने। जेह गुरमान प्रभु लिव लाई ते महा आनंद रस करया, जेह प्रभु बिसार गुरते बेमुखाई ते नरक कोर मैं परया। जित को लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा, नानक सह पकड़ी संतन की हृदय पय मगन चरनारा। सोरठ महला।

हर जन को ही सुहावे पेख निकट कर सेवा सतगुरु हर कीर्तन ही तृप्तावै रहाओ अमलन स्यो अमली लपटायो पूमन पूम प्यारी खीर संग बार कह लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या मैं विद्यंसी रचिया नैन देख सुख पावै जैसे रसना साध लुभानी त्यों हर जन हर गुण गावै जैसी पूख तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभ मिलिया अंतर जामी सोरठ महला पंजवां हम मैले तुम यूजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख तुम चतर सियाने तू सर्व कला का ज्ञाता माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकर दे सारहाओ तुम सब साजे साज निवाजे जियो पिंड दे प्राणा निर्गुणी आरे गुण नहीं कोई तुम दान देहो मेरवाना।

गुरपुरै दिया उपदेशा तुम ही संग पराता रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह अवमाना ता मैं सुख नहीं पाई है। हो रेन तू सगल की मेरे मन तो अंध मंगल सुख पाई है। काल ना पाने अंतर्विद जाने ताकि कर मन सेवा। कर पूजा होम एहो मनुआ अकाल मूर्त गुरुदेवा। गोविंद मुद्र दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा। नाम वर्तन नाम वालेवा नाम नानक प्राण आधारा। सोरठ महला पंजवा मृत कौ पायो तन सासा। बिशरत आन मिलाया पशु प्रेत मुग्ध पय स्रोते। हर नामा मुख गाया पूरे गुर की देख बढ़ाई। ता की कीमत कहन न जाई रहाओ। दुख सो काटायो डेरा अंध मंगल बिश्रामा। मन बाइथ

नाम वस्याय अपने सदगुर के मन पहाने। उठत बैठत हर गुण गावे, दुख दर्द भ्रम पागा। कहो नानक ताके पूर करमा, जाका गुर चरणी मन लागा। सोरठ महला पंजवा, रतन शाड कौडी संग लागे। जाते कछु ना पाई है, पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा त्याई है। सिमरो हर हर नाम परानी, बिनसै काची देह अज्ञानी। रहाओ मृग तृष्णा यार सुप्र मनोरथ, ताकि कछ ना वडाई। राम भजन बिन कामना आवस, संग न काहू जाई। हाँ हाँ करत बिहाय अवरदा, जी को कामना कीना। तावत तावत नह त्रिपतासिया, राम नाम नहीं चीना। साध बेकार बिखै रस मातो, असंख खते कर फेरे। नानक की प्रपाहे बिनंती, काटो अवगुण मेरे। सोरठ महला पंजवा, गुण गावो पूर्ण अबनासी। काम क्रोध बिखजारे, महाबिखम यगन को सागर। साधु संग उदारे, पूरे गुर मेट्यो परमान देरा। भज प्रेम भगत प्रभ नेरा। रहाओ हर हर नाम निदान रस पिया, मंतन रहे अगाई। जत कत पूर रहे परमेश्वर, कत आवे कत जाई।

जप तप संयम ज्ञान तत् बेता जिस मन वसै गोपाला नाम रतन जिन गुरमुख पाया ताकि पूर्ण काला काल कलेस मिटे दुख सगले काटी जमकी फासा कहो नानक प्रभ कृपा धारी मंतन पय बिगासा। सोरठ महला पंजवा करण करावण हार प्रभ दाता पार ब्रह्म प्रभ स्वामी सगले जी किए दयाला सो प्रभ अंतर जामी। मेरा गुरु हुआ आप सहाई सुख सहज आनंद मंगल रस अचरज भई बढ़ाई रहाओ गुर की शरण पए पैनासे साची दरगे माने गुण गावते आराध नाम हर आए अपने थाने। जय जयकार करे सब उस्तत संगत साद प्यारी सद बलिहार जाओ प्रभ अपने जिन पूर्ण पै सवारी। गोसट ज्ञान नाम सुनि उदरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभ अपना आनंद सेती कर आया। सोरठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पहला थे दुख बिन से सुख पाया दयाल होवा पार ब्रह्म स्वामी पूरा सदगुरु त्याया प्रभ जियो तू मेरो साहेब दाता कर कृपा प्रभ दीन दयाला गुण गावो रंग राता रहाओ। सतगुर नाम निदान दृढ़ाया चिंता सगल बिनासी।

जी जंत प्रभ सगले उदारे दर्शन देखण हारे गुरपुरे की अचरज वडियाई नानक सदबलिहारे। सोरठ महला पंजवा संचन करो नाम तन निर्मल थाती अगम अपार बिलश बिनोद आनंद सुख माणो। खाए जीवो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो सच बोयथ। चढ़ लंगो बिक संसार रहाओ पय कृपाल पूर्ण अबनासी आपै कीनी सार। पेख पेख नानक बिकसानो नानक नाही सुमार। सोरठ महला पंजवा गुरपुरै अपनी कल तारी सब घट उपजी दया आपे मेल वडाई किन्नी कुशल खेम सब भया। सतगुर पूरा मेरे नाल पार ब्रह्म जब सदा निहाल रहाओ। अंतर बार थान थनंतर जतगत पेखो सोई नानक गुर पायो वड भागी तिस जे वडियावर ना कोई। सोरठ महला पंजवा सुख मंगल कल्याण सहज तुन प्रभ के चरण निहारिया। राखन हारै राख्यो बारक सतगुर ताप उतारिया उबरे सतगुर की शरण आई जाकी सेवना बिरथी जाई रहाओ। घर मैं सुख बाहर फुन सुखा प्रभ अपने पहे दयाला नानक बिघन ना लागे को मेरा प्रभ होवा कृपाला। सोरठ महला पंजवा साधु संग भया मन उद्दम नाम रतन जस गाई मिट गई चिंता सिमरिया नंता सागर तरिया पाई। हृदय हर के चरण वसाई सुख पाया सहज तन उपजी रोगा कान मिटाई रहाओ। क्या गुण तेरे आख बखाना कीमत कहन न जाई नानक भगत पय अबनासी अपना प्रभया सहाई। सोरठ महला पंजवा गए कलेस रोग सब नासे प्रभ अपने कृपा तारी आठ पहरे आरा दो स्वामी पूर्ण काल हमारी। हर जियो तू सुख संपत रास राख लहो भाई मेरे कहो प्रभ आगे अरदास रहाओ।

जिन जिन साज संग पाया सो प्रभ अवतराया, कर कृपा नाम रस दिया कुशल खेम सब थिया। होए प्रभु सहाई सब उठ लागी पाई, सास सास प्रभ त्याई है हर मंगल नानक गाई है। सोरठ महला पंजवा सुख सहज आनंदा, प्रभ मिलियो मन पावंदा पूरे गुर कृपा तारी, तांगत पई हमारी हर की प्रेम भगत मन लीना। नित बाजे अनहत बीना रहाओ हर चरण की ओट सतानी, सब चूकी कान लुकानी जग जीवन दाता पाया। हर रसक रसक गुण गाया प्रभ काटिया जम का फासा, मन पूर्ण होई आसा जै पेखा तै सोई। हर प्रभ बिन अवर ना कोई, कर कृपा प्रभ राखे सब जन्म जन्म दुख लाथे। निरपव नाम ते आया अटल सुख नानक पाया, सोरठ महला पंजवा ठांड पाई करतारे, ताप छोड़ गया परवारे। गुरपूरा है राखी सरण सचे की ताकी, परमेसर आप हुआ रखवाला। सांत सहज सुखिन मैं उपजे मन हो।

जैसा बाल को पाए सुभाई लख अपराध कमावे कर उपदेश चिड़के बहु भांति बहुड़ पिता गल लावे पिछले अवगुण बख्श लए प्रभ आगे मार्ग पावे हर अंतर जामी सब जाने ता किस पै आख सुनाई है कहने कथन ना पीजे गोविंद हर भावे पैज रखाई है अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है होए दयाल किरपाल प्रभ ठाकुरो आपे सुने बेनंती पूरा सतगुर मेल मिलावे सब चूके मन की चिंती हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख वसंती सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभय आनंदा दुख कलेश सब नाठे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कार्य सगले संठे जग जीवन नाम तुम्हारा गुरपुरे दियो उपदेसा जब पौजल पार उतारा रहा हो तू

क्या गुण तेरे आख वखाणी, कीमत कहण ना जाई, पेख पेख जीवै प्रभ अपना, अचरज तुम्हें वडाई, तार अनुग्रह आप प्रभ स्वामी, पत मत कीनी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बांचो संता तूरी, सोरठ महला पंजवां, गुरपुरा नमस्कारे, प्रभ सबे काज सवारे, हरे अपनी कृपा तारी, प्रपूर्ण पै सवारी, अपने दास को पयो सहाई, सगल मनोरथ कीने करते, ऊनी बात ना काई रहाओ, करते पुरख ताल देवाया, पिछे लग चली माया, तोट ना कतहू आवै, मेरे पूरे सदगुर पावै, सिमर सिमर दयाला, सब जी भय कृपाला, जय जयकार गोसाई, जिन पूरी बणत बनाई, तू पारो स्वामी मोरा, एहो पुन पदार्थ तेरा, जन

प्रभ अपने वर दीने सगल जीव असकीने जन नानक नाम ते आया ता सगले दुख मिटाया। सोरठ महला पंजवा ताप गवाया गुरपुरे वाजे अनहद तूरे सर्ब कल्याण प्रभ कीने कर कृपा आप दीने। बेदन सतगुरे आप गवाई सिख संत सब सरसे होए हर हर नाम ते आई रहाओ। ज्यो मंगे सो लेवे प्रभ अपने संता देवे हर गोविंद प्रभ राखिया जन नानक साज सुपाखिया। सोरठ महला पंजवा सोई कराए जोत पावे मुहे सियाणप कछु ना आवै हम बारक तौ शरण आई प्रभ आपे पैज रखाई मेरा मात पिता हर राया। कर कृपा प्रतपालन लागा करी तेरा कराया राओ। जी जंत तेरे तारे प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे जेकरा वैसो करना नानक दास तेरी सरना। सोरठ महला पंजवा हर नाम हृदय परोया सब काज हमारा होया। प्रभ चरणी मन लागा पूर्ण जाके भागा मिल साध संग हर त्याया। आठ पहरिया राध्यो हर हर मन चिंदिया फल पाया रहाओ। परा पुरबला अंकर जागया राम नाम मन लागया मन तन हर दर्श समावै। नानक दास सच्चे गुण गावै सोरठ महला पंजवा गुरमिल प्रभु चितारिया कारज सब सवारिया मंदा को नाया लाए सब जय जयकार सुनाए। संतो साची शरण स्वामी जी जंत सब हाथ सहकै सुप्रभ अंतर जामी रहाओ। करतब सब सवारे प्रभ अपना बिरद समारे पतत पावन प्रभ नामा जन नानक सतगुरबाना। सोरठ महला पंजवा पार ब्रह्म साज सवारिया एहो लहोड़ा गुरु उबारिया आनंद करो पित माता परमेश्वर जी का दाता। शुभ चितवन दास

दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक साच बखाना, सोरठ महला पंजवां, ऐथै उथै रखवाला, प्रभ सतगुर दीन दयाला, दास अपने आप राखे, घट घट शब्द सुभाखे, गुर के चरण ऊपर बल जाई, दिन सरहण सा सा सुमाली, पूर्ण सबनी थाई रहाओ, आप सहाई होवा, सच्चे दा सच्चा टोवा, तेरी भगत वड्याई, पाई नानक प्रभ सरणाई, सोरठ महला पंजवां, सतगुर पूरे पाणा, ता जपया नाम रमाणा, गोविंद कृपा तारी, प्रभ राखी पैज हमारी, हर के चरण सदा सुखदाई, जो इच्छा सोई फल पावे, बिरथी आस ना जाई रहाओ, कृपा करे जिस प्राण पदाता, सोई संत गुण गावे, प्रेम भगत ता का मन लीना, पार ब्रह्मन पावे, आठ पहर हर का जस रमणा, बखैठ गौरी लाथी, संग मिलाए लिया मेरा करतै, संत साध पए साथी, कर कहली ने सरबस दीने, आपे आप मिलाया, कहो नानक सर्व थोक पूर्ण, पूरा सतगुर पाया, सोरठ महला पंजवां, गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगले नशारी, इस आगे को ना टिके बेकारी, गुरपूरे एह गल सारी, हर हर नाम संतन की ओटा, जो सिमरै तिसकी गत होवै, उदरै सगले कोटा रहाओ, संत संग जस गाया, एह पूर्ण हर तन पाया, कहो नानक आप मिटाया, सब पार ब्रह्म नदरी आया, सोरठ महला पंजवां, गुरपूरै पूरी कीनी, बख्श अपनी कर दीनी, नित्यानंद सुख पाया, थाव सगले सुखी वसाया, हर की भगत फल दाती, गुरपूरै कृपा कर दीनी, विरलै किन्हीं जाती रहाओ, गुरबाणी गावो पाई, गुरबाणी गावै पाई, ओ सफल सदा सुखदाई, नानक नाम ते आया, पूर्व लिखिया पाया, सोरठ महला पंजवां, गुरपूरा आराधे, कार्ज सगले सादे, सगल मनोरथ पूरे, बाजे अनहद तूरे, संतो राम जपत सुख पाया, संत अस्थान बसे सुख सहजे, सगले दुख मिटाया रहाओ, गुरपूरे की बाणी, पार ब्रह्मन पाणी, नानक दास बखाणी, निर्मला कथ कहानी, सोरठ महला पंजवां, भूखे खावत ला, भूखे खावत लाज ना आवै, त्यों हर जन हर गुण गावै, अपने काज को क्यों अलकाई है, जे सिमरन दर गै मुखी उज्जल, सदा सदा सुख पाई है रहाओ, ज्यो कामी काम लुभावै, त्यों हर दास हर जस पावै, ज्यो माता बाल लपटावै, त्यों ज्ञानी नाम कमावै, गुरपूरे ते पावै, जन नानक नाम ते आवै, सोरठ महला पंजवां, सुख सांद घर आया, निंद कै मुखशाया, पूरे गुर पहराया, बिनसे दुख सवाया, संतो साचे की वड्याई, जिन अचरज सो बनाई रहाओ, बोले साहेब कै पाण, दास बाणी ब्रह्म वखाण, नानक प्रभ सुखदाई, जिन पूरी बणत बनाई, सोरठ महला पंजवां, प्रभ अपना हृदय ते आए, कर सही सलामत आए, संतोख भया संसारे, गुरपूरै लै तारे, संताओ प्रभ मेरा सदा दयाला, अपने भगत की गणत न गणई, राखै बाल गोपाला रहाओ, हर नाम हृदय और तारे, तन सबे थोक सवारे, गुरपूरै तुस दिया, फिर नानक दुख ना थिया, सोरठ महला पंजवां,
ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਹਾਉ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ, ਜਿਸਨੋ ਬਖਸ਼ ਲਹਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੈ ਰਹਾਉ। ਤੂੰ ਭਾਰੋ ਸਵਾਮੀ ਮੇਰਾ, ਸੰਤਾਂ ਪਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨ ਆਈ, ਮੁਖ ਨਿੰਦਕ ਕੈ ਸ਼ਾਈ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਆਗੈ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਡੋਲਤ ਕਤਹੂੰ ਨਾਹੀ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਹਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਆ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਇਆਲਾ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ, ਅਚਰਜ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਨਾਲ ਨਰਾਇਣ ਮੇਰਾ, ਜਮਦੂਤ ਨਾ ਆਵੈ ਨੇਰੈ। ਕੰਠ ਲਾਏ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਚ ਸਾਖੇ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰ ਵਿਡਾਰੇ ਸਗਲੇ, ਦਾਸ ਕਉ ਸਮਤ ਦਿੱਤੀ ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰਭ ਸਗਲੇ ਥਾਨ ਵਸਾਏ, ਸੁਖ ਸਾਂਝ ਫਿਰ ਆਏ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪਹਿਰਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨ ਆਏ, ਜਨ ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਮਿਟਾਏ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਆਨੰਦਾ, ਦੁਖ ਗਿਆ ਹਰ ਗਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੋ ਭਾਈ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮੋ ਆਰਾਧੋ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਨਾਈ ਰਹਾਉ। ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ, ਸੋਈ ਪੂਰਨ ਭਾਈ, ਨਾਨਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਨਾਮ ਰਹਾ ਲਿਵਲਾਈ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਰਿ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਜਨ ਆਪਣੇ ਕੀ ਰੱਖੈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਤ ਜਗ ਪੀਤਰ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਸ ਚੱਖ।

जो जन भजन करे प्रभ तेरा तसै अंदेसा नाही, सतगुर चरण लगे पौ मिटिया, हर गुण गाए मन माही, सुख सहज आनंद कनेरे, सतगुर दिया दिलासा, जिन घर आए सोभा सेती, पूर्ण होई आसा, पूरा गुर पूरी मत जांकी, पूर्ण प्रभ के कामा, गुरचरणी लग तरयो पव सागर, जप नानक हर हर नामा, सोरठ महला पंजवा, पयो किरपाल दीन दुख पंजन, आपे सब ठाती, खिन मैं राख लियो जन अपना, गुरपूरै बेड़ी काटी, मेरे मन गुरु गोविंद सद त्याई है, सगल कलेस मिटै इस अंते, मन चिंदिया फल पाई है रहाओ, जेते जी जंत जाके सब कीने, प्रभु उच्चा अगम अपारा, साध संग नानक नाम ते आया, मुख उज्जल पए दरबारा, सोरठ महला पंजवा, सिमरो अपना साई, दिन सरैन सत्याई, हाथ दे जिन राखे, हर नाम महाराज चाखे, अपने गुरु उपर कुर्बान, भय किरपाल पूर्ण प्रभ दाते, जी होए मेहरबान, रहाओ नानक जन सरनाई, जिन पूर्ण पैज रखाई, सगले दुख मिटाई, सुख पुंचाओ मेरे पाई, सोरठ महला पंजवा, सुनो बिनंती ठाकुर मेरे, जी जंत तेरे तारे, राख पैज

आओ सुनी पुकार सम्राट स्वामी बंधन काट सवारे पहर सिर पाओ सेवक जन मेले नानक प्रगट पहारे सोरठ महला पंजवा जी जंत सब वस कर दीने सेवक सब दरबारे अंगीकार कियो प्रभ अपने पवनित पारे उतारे

आओ बैठ आदर सब थाई ऊ न कतहू बाता भगत सिर पाओ दियो जन अपने प्रताप नानक प्रभ जाता सोरठ महला नावा एको अंकार सतगुर प्रसाद हरे मन राम स्यों कर प्रीत सर्वन गोविंद गुण सुनाओ वरगाओ रसना गीत रहाओ कर साध संगत सिमर माधो होहे पतत पुनीत काल ब्याल ज्यो पर्यो डोले मुख पसारे मीत आज काल फुन तो हे ग्रस है समझ राखो चीत कह नानक राम भज लै जाते अवसर बीत सोरठ महला नावा मन की मन ही माहे रही ना हर भजे ना तीर्थ सेवे चोटी काल गही रहाओ दारा मीत पूत रथ संपत तन पूर्ण सब मही अवर सगल मिथ्या ए जानो भजन राम को सही फिरत फिरत बहुते जुगहार्यो मानस देह लही नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं सोरठ महला नावा।

मुक्त पंथ जान्यो तै नाहन तन जोरन को ताया, अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप बंधाया। ना हर भजियो ना गुरजन सेवियो, नहीं उपजियो कछ ज्ञाना, कट ही माहे निरंजन तेरे तै खोजत उद्याना। बहुत जन्म परमत तै हारियो, अस्त्र मत नहीं पाई, मानस देह पाए पद हर भज, नानक बात बताई। सोरठ महला नावा, मन रे प्रभ की शरण बिचारो, जय सिमरत गण काशी उदरी, ताको जस उर तारो रहाओ। अटल भयो त्रुजा कै सिमरन, अर निरपै पद पाया, दुख हरता ए बिद को स्वामी, तै काहे बिसराया। जब ही शरण गही कृपा निद, गज ग्रह ते छूटा, महिमा नाम कहां लो बरनाओ, राम कहत बंधन ते टूटा। अजामल पापी जग जाने, निमख माहे निस्तारा, नानक कहत चेत चिंता मन, तैं पी उतरें पारा।

करई। कौन नाम गुरजा कै सिमरै पव सागर कौ तरई। कल मैं एक नाम कृपा निध जाहे जपै गत पावै। और धर्म ताकै समनाहन एह बिद बेद बतावै। दुख सुख रहत सदा निरलेपी जा को कहत गोसाई। सो तुम ही मैं बसै निरंतर नानक दर्पण न्याई। सोरठ महला नावा माई मैं कह बिद लखो गोसाई। महामोह अज्ञान तिमर मोह मन रहो उरजाई रहाओ। सगल जन्म परम ही परम खोयो। न असर मत पाई बिख्या सकत रहो।

बिख माया चित मोहया पाई चतराई पत खोए चित में ठाकर सच वसै पाई जे गुर ज्ञान समोए रूड़ो रूड़ो आखिए पाई रूड़ो लाल चलूल जे मन हर स्यों बैरागिय पाई दर कर साच अपूल पातालिया कास तू पाई कर कर तू गुण ज्ञान गुर मिलिया सुख पाया पाई जूका मनो गुमान जल मल काया मांजिए पाई पी मैला तन होए ज्ञान महारस नाइय पाई मन तन निर्मल होए देवी देवा पूजिए पाई क्या मांगो क्या देहे पाहन नीर पखालिए पाई जल मैं बुढ़ै ते गुर बिन अलख न लखिए पाई जग बूढ़े पत खोए मेरे ठाकर हाथ वड्याईया पाई जय पावे तें दे बैयर बोले मिठली पाई साच कह पिर पाए ब्रह बेदी सच वसी पाई अदक रही हर नाए सब को आखे अपना पाई गुरते बुझे सुजान जो भी दे से उबरे पाई शब्द सच्चा निशान ईंधन अदक सकेलिए पाई पाव करन चक पाए खिन पल नाम हृदय वसै पाई नानक मिलन सुभाए सोरठ महला तीजा कर पहला ते तुकी एको अंकार सतगुर प्रसाद भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो तुर तू रखदा आया प्रहलाद जन तुद राख लय हर जियो हरनाक समार पजाया गुरमुखां नूं प्रतीत है हर जियो मनमुख परम भुलाया हर जी एह तेरी वडियाई भगतां की पैज रख तू स्वामी भगत तेरी सरनाई रहाओ भगतां नूं जम जोहे ना साकै काल ना नेड़ै जाई केवल राम नाम मन वसिया नामे ही मुक्त पाई अरिद्ध सिद्ध सब भगतां चरणी लागी गुर कै सहज सुभाई मन मुखां नूं प्रतीत ना आवई अंतर लोभ सुवाओ गुरमुख हिरदै शब्द ना भेदियो हर नाम ना लागा पाओ कूड़ कपट पाज लह जासी मनमुख फीका या लाओ भगतां विच आप वरतदा प्रभ जी भगती हूं तू जाता माया मोह सब लोक है तेरी तू एको पुरख विधाता हों मैं मार मन सामने समाणी गुर कै शब्द पछाता अचिंत कम करे प्रभ तिनके जिन हर का नाम प्यारा गुर प्रसाद सदा मन वसिया सब काज सवार नहारा ओना की रीस करे सो विगुच्चै जिन हर प्रभ है रखवारा बिन सतगुर सेवे

अंतर तृष्णा भुख है मूर्ख भुखिया मोए गवार, सतगुर सेवया सुख पाया सत्या शब्द विचार। अंदरों तृष्णा भुख गई सच्चा नाए प्यार, नानक नाम रते सहज रजे जिन्ना हर रखिया अवतार। महला तीजा मन मुख हर नाम ना सेवया दुख लगा बहुता आए, अंतरा ज्ञान अंधेर है सुध ना काई पाए। मन अठ सहज ना बीजियो भुखा के अगे खाए, नाम निदान विसारिया दूजे लगा जाए। नानक गुरमुख मिले वडियाईया जे आपे मेल मिलाए पौड़ी। हर रसना हर जस गावे खरी सुहावनी, जो मंत्र मुख हर बोले साहर पावनी। जो गुरमुख चखे

ते नर बुरियारी हर जियो तिनका दर्शन ना करो पापिष्ट हत्यारी। ओहे घर घर फिरे कसुद मन जो धरखट नारी वडभागी संगत मिले गुरमुख सवारी। हर मेलो सतगुर दया कर गुर कौ बलिहारी। श्लोक महला तीजा गुर सेवा ते सुखी उपजै फिर दुख न लगै आए जमन मरना मिट गया काल का किश ना बसाए। हर सेती मन रव रहया सचे रहा समाए नानक हों बलिहारी तिन कहो जो चलन सतगुर पाए। महला तीजा बिन शब्द शुद्ध ना हो वई जे अनेक करें सिंगार फिर की सार न जानई दूजै पाए प्यार। साक सुध साक उलखणी नानक नारी विच कुनार पौड़ी। हर हर अपनी दया कर हर बोली बैणी हर नाम ते आई हर उचरा हर लाहा लैणी। जो जपदे हर हर दिन सरात तिन हौ कुरबैणी जिन्ना सतगुर मेरा प्यारा आराध्या तिन जन देखा नैणी। हौ वारिया अपने गुरु कहो जिन मेरा हर सज्जन मेलिया सैणी। श्लोक महला चौथा हर दासन स्यो प्रीत है हर दासन को मित हर दासन कै वस है ज्यो जंती कै वस जंत। हर के दास हर त्याय दे कर प्रीतम स्यो ने हो कृपा करके सुनो प्रभु सब जग में वरसै में हो। जो हरदासन की उसत है साहर की वड्याई हर अपनी वड्याई भाम दी जनका जयकार कराई। सो हर जन नाम ते आएंदा हर हर जन एक समान जन नानक हर का दास है हर पैज रखो भगवान। महला चौथा नानक पीतलाई तन साचै तिसमें रहन न जाई सतगुर मिलै ता पूरा पाई है हर रस रसन रसाई पौड़ी। रैन दिनस प्रभात तू है ही गावना जी जंत सरबत नाओ तेरा त्यावना। तू दाता दातार तेरा दिता खावना भगत जन कै संग पाप गवावना। जन नानक सत बलिहार है बल बल जावना। श्लोक महला चौथा अंतर अज्ञान भई मत मध्यम सदगुर की प्रतीत नाही अंदर कपट सब कपटो कर जाना। कपटे खपे खपाही सदगुर का पाणा चेतना आवे अपने सवाए फिराही। कृपा करे जे अपनी ता नानक सब समाही। महला चौथा मनमुख माया मोहे व्यापे दूजे पाए मनुआ थिर नाहे आंदन जलत रह दिन राती हमै खपै खपाहे। अंतर लोभ महा गोबारा तिनकै निकट ना कोई जाहे। ओए आप दुखी सुख कबू ना पावै जन मरै मर जाहे। नानक बख्श लै प्रभ साचा जे गुर चरणी चित लाहे पौड़ी। संत भगत प्रवान जो प्रपाया सही विचखण जंत जिन्नी हर त्याया। अमृत नाम निदान भोजन खाया संजना की तूर मस्तक लाया नानक पाए पुनीत हर तीर्थ नाया। श्लोक महला चौथा गुरमुख अंतर सांत है मन तन नाम समाए नामो चितवै नाम पढ़े नाम रह लिवलाए। नाम पदार्थ पाया चिंता गई बिलाए सदगुर मिलया नाम उपजै तिश्ना पुख सब जाए। नानक नामे रतिया नामो पल्लै पाए। महला चौथा सदगुर पुरख जे मारिया ब्रह्म प्रम्या कर छोड़ गया ओस पिछे वजै फकड़ी मोह कालाया गै पया। ओस अरल बरल मोह निकलै नित झगू सुटदा मुआ क्या होवे किस ही दै कीतै। जा तुर किरत उसदा एहो जिहा पया जिथे हो जाए तिथे हो झूठा। कूड़ बोले किसे ना पावे वेखो भाई वड्या।

वेद पुराण सब है मत सुन के करी कर्म की आशा, काल ग्रस्त सब लोग सियाने उठ पंडित पै चले निराशा, मन रे सरयो ना एक काजा भजियो ना रघुपत राजा, रहाओ बन खंड जाए जोग तपकीनो कंद मूल चुन खाया, नादी बेदी सबदी मोनी जम के पटाय लिखाया, भगत नार दी हृदय न आई काश कूश तंदीना, राग राग नी डिब होए बैठा उन हर पै क्या लीना, परयो काल सबै जग उपर माहे लिखे परम ज्ञानी, कहो कबीर जन पहे खालसे प्रेम भगत जय जानी, कर दूजा

बाजीगर डंक बजाई सब खलक तमाशे आई, बाजीगर स्वांग सकेला अपने रंग रवै अकेला। कथनी कह परम ना जाई सब कथ कथ रही लुकाई, जा कहो गुरमुख आ बुझाई ता कह हृदय रहा समाई। गुर किंचित कृपा कीनी सब तन मन दे हर लीनी, कह कबीर रंग राता मिलियो जग जीवन दाता। जाके निगम दूध के ठाटा समुंद बिलोवन कौ माटा, ताकि हो बिलोवन हारी क्यों मेटै गोशास तुहारी। चेरी तू राम ना कर सपतारा, जग जीवन प्राण आधारा रहाओ। तेरे गलह तौक पग बेरी तू घर घर रमैया फेरी, तू अजो ना चेत चेरी। तू जम्बपरी है हेरी प्रभ करन करावन हारी, क्या चेरी हाथ बिचारी सोई सोई जागी जितलाई ततलागी। चेरी तै सुमत कहां ते पाई, जाते भ्रम की लीक मिटाई। सो रस कबीर जानिया मेरो गुरप्रसाद मन मानिया, जह बाज ना जिया जाई जो मिले ता कालिया गाई। सद जीवन भलो कहां ही मुए बिन जीवन नाही। अब क्या कथिया ज्ञान बिचारा, निज निरखत गत व्यवहारा रहाओ। कस कुंकुम चंदन गारिया बिन नैनो जगत निहारिया, पूत पिता एक जाया बिन ठाहर नगर बसाया। जाचक जनदाता पाया सो दिया न जाई खाया, छोड़िया जाए न मुका और न पहचाना चूका। जो जीवन मरना जाने सो पंच सैल सुख माने, कबीर है सो तन पाया हर पेट ते आप मिटाया। क्या पढ़िया क्या गुनिया क्या वेद पुराना सुनिया, पढ़े सुने क्या होई जो सह जन्म लियो सोई। हर का नाम ना जप सगवारा, क्या सोचे बारंबारा रहाओ। अंधेरे दीपक चाहिए एक बस्ता गोचर लहिए, बस्ता गोचर पाई कट दीप करे आसमाई। कह कभी

हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बिलोव सपानी, काया मांजस कौन गुना, जौ कट पीतर है मलना रहाओ, लौकी अड़सर तीर्थ नाई, कौरा पंतउ ना जाई, कह कबीर बिचारी, पवसागर तार मुरारी सोरठ। एको अंकार सदगुर प्रसाद, बहु प्रपंच कर पर धन लियावै, सुदारा बयान लुटावै, मन मेरे पूले कपट ना कीजै, अंत नबेरा तेरे जी पहली जह रहाओ, छिन छिन तन छीजै, जरा जनावै, तब तेरी ओक कोई पानी ना पावै, कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हृदय राम की ना जपै सवेरा, संत हो मन पवने सुख बनया, कि जोग प्राप्त गनया रहाओ, गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी, मूंद लिए दरवाजे, बाजी आले अनहद बाजे, कुंभ कमल जल भरिया, जल मेटिया उबा करिया, कहो कबीर जन जानिया, जो जानिया तो मन मानिया, राग सोरठ भूखे भगत ना कीजै, जय माला अपनी लीजै, हाँ मांगो संतन रेना, मैं नाही किसी का देना, माधो कैसी बने तुम संगे, आप ना देहो ता ले वो मंगे रहाओ, दोए शेर मांगो चूना, पाओ की ओ संग लूना, अध शेर मांगो दाले, मोको दोनों वक्त जिवाले, खाट मांगो चौपाई, सरहाना अवर तुलाई, ऊपर कौ मांगो खींदा, तेरी भगत करे जन थींदा, मैं नाही कीता लबो, एक नाव तेरा मैं फबो, कह कबीर मन मानिया, मन मानिया तो हर जानिया, राग सोरठ बाणी भगत नाम दे जी की, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जब देखा तब गावा, तौ जन तीरज पावा, नाद समाए लोरे सतगुर पेटले देवा रहाओ, जह चिल मिलकार दिसंता, तै अनहद शब्द बजंता, ज्योति ज्योत समानी, मैं गुर प्रसादी जानी, रतन कमल कोठरी, चमकार बीजल तही, नेरै नाही दूर, निजात मैं रया भरपूर, जय अनहत सूर उजियारा, तह दीपक जलै शंशारा, गुर प्रसादी जानिया, जन नामा सहे समानिया, कर चौथा सोरठ, पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा, का पहचान शिवाई हो, तो पै दुगनी मजूरी दहाओ, मोको बेडी देहो बताई हो, रिबाई बेडी देन न जाई, देख बेडी रे उसमाई, हमारे बेडी प्राण आधारा रहाओ, बेडी प्रीत मंजूरी मांगे, जौ को शान शिवावे हो, लोग को टंब सबोते तोरे, तो अपन बेडी आवे हो, ऐसो बेडी बर्न ना सको, सब यंत्र सब ठाई हो, गूंगे महा अमृत रस चाखिया, पूछे कह न जाई हो, बेडी के गुण सुन री बाई, जल्द बांध तू था प्यो हो, नामे के स्वामी सी बहोरी, लंकप भीखण आप्यो हो, सोरठ करती जा, अड़मड़िया मंदल बाजै, बिन सावन कन हर गाजै।

पूरे गुर की साची बाणी, सुख मने अंतर सह समाणी, एक आचार्य जन देखो पाई, दुबदा मार हर मन वसाई, नाम अमोलक ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, सब मैं वसै प्रवे को सोए, गुरमति घट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिले मन मानिया, तनासरी महला तीजा, हर नाम तन निर्मल अत्या पारा, गुर कै शब्द भरे भंडारा, नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोहे जले अभमान, गुरमुख हर रस चाखै कोए, तिसदा आनंद होवे दिन राती, पूरे भाग प्राप्त होए रहाओ, शब्द दीपक वरतै तिहो लोए, जो चाखै सो निर्मल होए, निर्मल नाम हौ मैं मल तोए, साची भगत सदा सुख होए, जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग, तिसदा हरख नाही कदे सोग, आप मुगत अवरा मुक्त करावै, हर नाम जपै हर ते सुख पावै, तिन सतगुरु सब मुई बिललाए, अंदंदा जय सांत ना पाए, सतगुर मिले सब तृष्ण बुझाए, नानक नाम सां सुख पाए, तनासरी महला तीजा, सदा तने अंतर नाम संभाले, जी जंत जिनै प्रतपाले, मुक्त पदार्थ तिन को पाए, हर कै नाम रते लिवलाए, गुर सेवा ते हर नाम तन पावै, अंतर प्रगास हर नाम ते आवै रहाओ, एहो हर रंगूड़ा तन पिर होए, सांत सिंगार रावे प्रभ सोए, हम मैं विच प्रभ कोए ना पाए, मुलों पुला जन्म गवाए, गुर ते सांत सहज सुख बाणी, सेवा साची नाम समाणी, शब्द मिलै प्रीतम सदा ते आए, सच नाम वड्याई पाए, आपे करता जो जुग सोए, नदर करे मेलावा होए, गुरबाणी ते हर मन वसाए, नानक साजर ते प्रभ्या मिलाए, तनासरी महला तीजा तीजा, जग मैला मैलो हो जाए, आवै जाए दूजे लोभाए, दूजे पाए सब परज विगोई, मनमुख चोटा खाए, अपनी पद खोई, गुर सेवा ते जन निर्मल होए, अंतर नाम वसै पति उत्तम होए रहाओ, गुरमुख उबरे हर सरनाई, राम नाम राते भगत दरड़ाई, भगत करे जन वड्याई पाए, साच रते सुख सहि समाए, साचे का गाहक विरला को जान, गुर कै शब्द आप पछाण, साची रास साचा वापार, सो तन पुरख जिस नाम प्यार, तिन प्रभ साचा एक सच लाए, उत्तम बाणी शब्द सुनाए, प्रभ साचे की साची कार, नानक नाम सवरन हार, तनासरी महला तीजा, जो हर सेवै तिन बल जाओ, तिन हृदय साच सच्चा मुख नाओ, साचो सा संभाल्यो दुख जाए, साचै शब्द वसै मन आए, गुरबाणी सुन मैल गवाए, सहजे हर नाम मन वसाए रहाओ, कूड़ कुसत तृष्णा यगन बुझाए, अंतर सांत सहे सुख पाए, गुर कै पाणे चलै ताय आप जाए, साच महल पाए हर गुण गाए, ना शब्द बूझै ना जाने बाणी, मन मुख अंदे दुख विहानी, सतगुर पेटे ता सुख पाए, हमें विचों ठाक रहाए, किसनो कहिया दाता एक सोए, कृपा करे शब्द मिलावा होए, मिल प्रीतम साचे गुण गावा, नानक साचे साचा पावा, तनासरी महला तीजा, मन मरे तात मर जाए, बिन मन मुए कैसे हर पाए, एहो मन मरे दारू जाने कोए, मन शब्द मरे बूझे जन सोए, जिसना बक्से हर दे वड्याई, गुर प्रसाद वसै मन आई रहाओ, गुरमुख करनी कार कमावै, ता इस मन की सोजी पावै, मन मैं मत मैंगल मिकदारा,
ਗੁਰ ਅੰਕਸ ਮਾਰ ਜੀਵਾ ਲਣਹਾਰਾ। ਮਨ ਅਸਾਧ ਸਾਧੈ ਜਨ ਕੋਈ, ਅਚਰ ਚਰੈ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ। ਗੁਰਮੁਖੇ ਹੋ ਮਨ ਲਿਆ ਸਵਾਰ, ਹਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਤਜੈ ਵਿਕਾਰ। ਜੋ ਤੁਰ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਛੜੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ। ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਆਪੇ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਛਾਣੈ। ਤਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਾਚਾ ਤਨ ਸੰਚੈ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ, ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਅੰਧ ਗਵਾਰ। ਵਿਖਿਆ ਕਹਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏ, ਨਾ ਸਾਥ ਜਾਏ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸਾਚਾ ਧਨ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਏ, ਕਾਚਾ ਧਨ ਫੁਨਿਆਵੈ ਜਾਏ ਰਹਾਉ। ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਸਮਰੈ ਗਵਾਰ, ਭਵਜਲ ਡੂਬੇ ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਟੇ ਪੂਰੈ ਭਾਗ, ਸਾਚਰ ਤੇ ਅਹਿਨਸ ਬੈ ਰਾਗ। ਚਹੁ ਜੁਗ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ, ਪੂਰੈ ਭਾਗ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੀ। ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਤਰਸੈ ਸਭ ਲੋਏ, ਪੂਰੈ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸਭ ਕੇ ਸਾਚਾ ਸਾਚਾ ਹੈ ਸੋਏ, ਉਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣੈ ਕੋਏ। ਸੱਚ ਸਾਚਾ ਸੱਚ ਆਪ ਦਿਰੜਾਏ, ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਸੱਚ ਲਾਏ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਨਾਵੈ ਕੀ ਕੀਮਤ ਮਿਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਸੇ ਜਨ ਧਨ ਜਿਨ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਵਲਾਏ। ਗੁਰਮਤ ਸਾਚੀ ਸਾਚਾ ਵਿਚਾਰ, ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਹਰ ਨਾਮ ਅਚਰਜ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸੁਣਾਏ, ਕਲੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਏ ਰਹਾਉ। ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੂਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਹਉ ਮੈਂ ਵੀ ਸਭ ਕਾਰ ਕਮਾਹੇ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਉ ਮੈਂ ਜਾਏ, ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਲੈ ਮਿਲਾਏ। ਵਿਖਿਆ ਕਾ ਤਨ ਬਹੁਤ ਅਭਿਮਾਨ, ਹੰਕਾਰ ਡੂਬੈ ਨਾ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਆਪ ਛੋੜ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਾ ਲਾਹੀ ਸਹਿ ਸੋਈ। ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰਤਾ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਬਿੰਦੂ ਜਾਇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿਸ ਸੱਚ ਲਾਏ ਸੋਈ ਲਾਗੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖ ਆਗੈ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਰ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਮ ਭੀਖ ਕਪੇ ਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਹੋ ਦਿਆਲ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕਉ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਉ, ਸਾਚੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟਾਉ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭਨਾ ਕਾ ਕੋਈ, ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਰਹਾਓ। ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਪਏ ਕਿਰਪਨ ਕਉ, ਅਬ ਕਿਛ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ। ਹੋ ਦਿਆਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ, ਆਪੀ ਐਸੀ ਬਸ ਕਰੀਜੈ। ਭਣਤ ਨਾਨਕ ਪਰਮ ਪਟ ਖੂਲੇ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਣਿਆ। ਸਾਚੀ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਹੈ ਪੀਤਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੋ ਹਰ ਸੇਵੈ ਸੰਤ ਭਗਤ, ਤਿਨ ਕੇ ਸਭ ਪਾਪ ਨਿਵਾਰੀ। ਹਾਮੀ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਵਾਮੀ, ਰੱਖ ਸੰਗਤ ਤੁਮ ਜੋ ਪਿਆਰੀ। ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੋ ਬਨਵਾਰੀ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਪਾਥਰ ਨੀਰ ਡੁਬਤ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਖਣ ਹਮ ਤਾਰੀ ਰਹਾਓ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਲਾਗੇ ਵਿਖ ਮੋਰਚਾ। ਲਗ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਸਵਾਰੀ, ਜੋ ਕੰਚਰ ਬੈ ਸੰਤਰ ਤਾਇਓ, ਮਲ ਘਾਟੀ ਕਰਤੇ ਉਤਾਰੀ। ਹਰ ਹਰ ਜਪਨ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਹਰਿ ਉਰ ਤਾਰੀ। ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਔਖਦ ਜਗ ਪੂਰਾ, ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰੀ। ਹਰ ਹਰ ਅਗਮ ਅਗਾਦ ਬੋਧ, ਅਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰੀ। ਜਨ ਕਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਪੈ ਸਵਾਰੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਜਪਿਓ, ਤਿਨਕਾ ਦੁਖ ਭਰਮ ਪਉ ਭਾਗੀ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕਰਾਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਤਰ ਜਾਗੀ। ਹਰ ਕਹਿ ਨਾਮ ਰਤਾ ਬੈਰਾਗੀ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਮਨ ਪਾਈ। ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਰਹਾਓ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਜਾਤ ਹਰ ਸਵਾਮੀ, ਤੁਮ ਠਾਕਰ ਹਮ ਸਾਂਗੀ। ਜੈਸੀ ਮਤ ਦੇਵੋ ਹਰ ਸਵਾਮੀ,
हम तैसे बुलक बुलागी क्या हम किरम नानक कीरे। तुम वट पुरख वडागी तुमरी गत मित कह ना सकै प्रभ। हम क्यों कर मिलया पागी हर प्रभ स्वामी कृपा तारो। हम हर हर सेवा लागी नानक दासन दास करो प्रभ। हम हर कथा कथागी तनासरी महला चौथा। हर का संत सतगुर सतपुरखा जो बोले हर हर बानी। जो जो कह सुने सो मुक्ता हम तिस कह सतगुरबानी। हर के संत सुनो जस कानी हर हर कथा सुनो एक निमुख पाल। सब किलविख पाप लह जानी रहाओ। ऐसा संत साध जिन पाया ते वड पुरख वडानी। तिनकी तूर मंगै प्रभ स्वामी हम हर लोच लुचानी। हर हर सफलियो बिरख प्रभ स्वामी जिन जपियो से तृप्तानी। हर हर अमृत पी तृप्ता से सब लाथी पूख पुखानी। जिनके वडे भाग वड उच्चे तिन हर जपियो जपानी। तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी जन नानक दा दसानी। तनासरी महला चौथा। हम अंधले अंध बिखै बिखराते क्यों चाल है गुर चाली। सतगुर दया करे सुखदाता हम लावै आपन पाली। गुर सखमी चलो गुर चाली जो गुर कह सोई पल मानो। हर हर कथा निराली रहाओ हर के संत सुनो जन पाई। गुर सेवो बेग बेगाली सतगुर सेव खर्च हर बांधाओ मत जानो वाज के काली। हर के संत जपो हर जपना हर संत चले हर नाली। जिन हर जपया से हर होए हर मिलिया केल के लाली। हर हर जपन जप लोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली। जन नानक संगत साध हर मेलो हम साध जना पगराली। तनासरी महला चौथा। हर हर बूंद पय हर स्वामी हम चातरक बिलल बिललाती। हर हर कृपा करो प्रभ अपनी मुख देवो हर निमखाती। हर बिन रह ना सको एक राती जो बिन अमल अमली मर जाई है। त्यों हर बिन हम मर जाती रहाओ। तुम हर सरवर अत अगाह हम लह न सके अंत माती। तू पर पर अपरंपर स्वामी मित जानो अपन गाती। हर के संत जना हर जपयो गुर रंग चलू लै राती। हर हर भगत बनियत सोभा हर जपयो उत्तम पाती। आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावै पाती। नानक जन तुमरी शरण आई हर राखो लाज पगाती। तनासरी महला चौथा। कलयुग का धर्म कहो तुम भाई किव छूटै हम छुटका की। हर हर जप बेड़ी हर तुलहा हर जपयो तरै तराकी। हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना। हम मांगी भगते काकी रहाओ। हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपयो हर बचना की। लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जमकी बाकी। हर के संत जपयो मन हर हर लग संगत साध जना की। दिन यार सूर तृष्णा अग्न बुझानी शिव चरयो चंद चंदा की। तुम वड पुरख वड अगम्या गोचर तुम आपे आप आपा की। जन नानक कहो प्रभ कृपा की जय कर दसन दाद दसा की। तनासरी महला चौथा। कर पंजवा दोपद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। उर धार विचार मुरार रमो रम मन मोहन नाम जपीने।
अदृष्टा गोचर परंपर स्वामी गुरपुर प्रगट कर दीने राम पारस चंदन हम काष्ट लोष्ट हर संग हरी सतसंग पहे हर कंचन चंदन कीने रहाओ नाम शे खट बोले मुख आगर मेरा हर प्रभ इवना पतीने जन नानक हर हृदय सत्यावो इव हर प्रभ मेरा पीने तनाश्री महला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर एव हर हर नाम ते आई हर दर गै पावै फिर जन्म ना आवै हर हर हर ज्योत समाई जप मन नाम हरी होहे सर्व सुखी हर जस ऊच सबना ते ऊपर हर हर हर सेव छडाई रहाओ हर कृपा निध कीनी गुर भगत हर दीनी तब हर स्यो प्रीत बने आई बहु चिंत विसारी हर नाम ओर तारी नानक हर पय है सिखाई तनाश्री महला चौथा हर पढ़ हर लेख हर जप हर गाओ हर भोजन पार उतारी मन बचन हृदय ते आए हर होए संतुष्ट एव पण हर नाम मोरारी मन जपिए हर जगदीश मिल संगत साधु मीत सदा आनंद होवै दिन राती हर कीर्त कर बनवारी रहाओ हर हर करी दृष्ट तब भयो मन उद्यम हर हर नाम जपियो गत ही पई हमारी जन नानक की पत राख मेरे स्वामी हर आए पर्यो है शरण तुम्हारी तनाश्री महला चौथा चौरासी सिद्ध बोत तीस कोट मुन जानो सब चाहे हर जियो तेरो नाओ गुर प्रसाद को विरला पावै जिन कौल लाट लिखिया तुर पाओ जप मन रामै नाम हर जस उत्तम काम जो गावै सुनै तेरा जस स्वामी हम तनकै सद बलिहारै जाओ रहाओ शरणांगत प्रतपालक हर स्वामी जो तुम देहो सोई हौ पाओ दीन दयाल कृपा कर दीजै नानक हर सिमरन का है चाओ तनासरी महला चौथा सेवक सिख पूजन सब आवै सब गावै हर हरि उत्तम बानी गाव्या सुनिया तनका हर थाए पावै जिन सतगुर की आग्या सत सत करमानी बोलो पाई हर कीर्त हर पवजल तीर्थ हर दर तिन की उत्तम बात है संतो हर कथा जिन जनो जानी रहाओ आपे गुर चेला है आपे आपे हर प्रभ चोज विडानी जन नानक आप मिलाए सोई हर मिलसी अवर सब त्याग ओहा हर पानी तनासरी महला चौथा इच्छा पूरक सर्व सुखदाता हर जा कै वस है काम तेना सो ऐसा हर त्याई है मेरे जीअड़े ता सर्व सुख पाव है मेरे मना जप मानो सतनाम सदा सतनाम हालत पलत मुखी उज्जल होई है नित त्याई है हर पुरख निरंजना रहाओ जय हर सिमरन पया तहे उपाद गत कीनी वडपागी हर जपना जन नानक कौ गुर एह मत दीनी जप हर पवजल तरना तनासरी महला चौथा

साहा सब तुझी माहे समाहे सबना की तू आस है मेरे प्यारे सब तुझे ते आवे मेरे साहा ज्यों पावे त्यों रख तू मेरे प्यारे सच नानक के पातशाह तनासरी महला पंजवां कर पहला चौपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद पवखंडन दुख पंजन स्वामी भगत वच्छल निरंकारे कोट प्राद मिटे खिन पीतर जां गुरमुख नाम सुमारे मेरा मन लागा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभ कृपा वस कीने पंच दूतारे रहाओ तेरा थान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सोहै दरबारे सर्ब जिया के दाते स्वामी कर कृपा लिहो उबारे तेरा वर्ण ना जापै रूप ना लखिया तेरी कुदरत कौन बिचारे जल थल महियल रव्या सर्ब ठाई अगम रूप गिरधारे कीर्त करै सगल जन तेरी तू अबनासी पुरख मुरारे जो भावै त्यो राखो स्वामी जन नानक शरण दुआरे तनासरी महला पंजवां बिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल सो हेत बढ़ायो कमल हेत बिन सो है पवरा उन मार्ग निकस ना पायो अब मन एक स्यो मोह कीना मरे न जावे सदही संगे सतगुर सबदी चीना रहाओ काम हेत कुंचर लै फांक्यो ओ परवस भयो बिचारा नाद हेत सिर डार्यो कुरंका उसी हेत बेदारा देख कुटांब लोभ मोहयो प्राणी माया कौ लपटाना अत रचियो कर लीनो अपना उड़ छोड़ सरा पर जाना बिन गोबिंद अवर संग नेहा ओ जानो सदा दुहेला कहो नानक गुर एह बजायो प्रीत प्रभु सदकेला तनासरी महला पंजवां कर कृपा दियो मोहे नामा बंधन ते छुटकाए मन ते बिसरियो सगलो तंदा गुर की चरणी लाए साध संग

गुर की टहल गुरु की सेवा गुर की आज्ञा पानी कहो नानको जिन जमते काढे तिस गुर कै कुर्बानी। तनासरी महला पंजवा जिसका तन मानो तन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी। तिन ही सुनया दुख सुख मेरा तौ बिद नेकी खटानी जी की कह ही पहमानी। अवर जतन कर रहे बहु तेरे तिन तल नहीं कीमत जानी। रहाओ अमृत नाम।

लपट रहे माया रंग माते, लोचन कछु ना सूजी, बिखिया मह किन्हीं तृप्त ना पाई। ज्यो पावक इंद्र नहीं त्रपै, बिन हर कहां अगाई रहाओ। दिन दिन करत भोजन बहु बिंजन, ताकि मिटे ना भूखा। उद्यम करै सुवान की न्याई, चारे कुंटा कोखा। कामवंत कामी बहु नारी, परग्रे जोहन चूकै। दिन प्रत करै करै पछतापै, सोग लो मैं सूकै। हर हर नाम अपारिया मोला, अमृत एक निधाना। सुख सहज आनंद संतन कै, नानक गुर ते जाना। तनासरी महला पंजवां, लवै न लागन कहो है कछुवै। जा को फिर एहो तावै, जा को गुर दीनो एहो अमृत, तिस ही को बन आवै। जा को आयो एक रसा, खान पान आन नहीं खुदया। ता कै चितना बसा रहाओ, मौल्यो मंतन होयो हरिया। एक बूंद जिन पाई, बरन न साको उस तां की, कीमत कहन न जाई। काल ना मिलियो, सेव ना मिलियो, मिलियो आए चिंता। जा को दया करी मेरा ठाकर, तिन गुरै कमानो मंता। दीन दयाल सदा कृपाला, सर्ब जिया प्रतपाला। ओत पोत नानक संग रविया, जो माता बाल गोपाला। तनासरी महला पंजवां, बार जाओ गुरे अपने ऊपर, जिन हर हर नाम दृढ़ाया। महा उद्यान अंधकार में, जिन सीधा मार्ग

चंदन लेप होत देह कौ, सुख गर्दप भस्म संगीत, अमृत संग नाहे रुच आवत, बिखैठ गौरी प्रीत। उत्तम संत भले संजोगी, इस जोग में पवित पुनीत। जात अकारथ जन्म पदार्थ, काज बाद रह जीत। जन्म जन्म के किलविख दुख भागे, गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत। साध संग इन दुखते निकसियो, नानक एक प्रीत। तनासरी महला पंजवा, पानी पखा पीसो संत आगे। गुण गोविंद जस गाई, सास सास मन नाम समारे, विश्राम निद पाई।

प्रभ की ओट गही तो छूटो साध प्रसाद हर हर हर गाए बिखे ब्याद तब हूटो रहाओ। न सुनिए न मुखते बकिए न मोहे ओ डीठी ऐसी ठगौरी पाए पुलावे मन सब कह लागे मीठी। माए बाप पूत हित प्राता उन कर कर मेल्यो दुआ किस ही वाद काट किस ही पै सगले लर लर मुआ। हम बलिहारी सतगुरु अपने जिन्हें हो चलत दिखाया गुजी पाहे जले संसारा भगत ना व्यापै माया। संत प्रसाद मां सुख पाया सगले बंधन काटे हर हर नाम नानक तन पाया। अपने घर लै आया खाटे तनासरी महला पंजवा तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रतपालो हम बारक तुमरे तारे। जिहवा एक कवन गुण कहिए बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन्ही लहिए रहाओ। कोट प्राध हमारे खंडो अनक विधि समझावो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखावो। तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके बोले। तनासरी महला।

निर्तन कौ तन अंदले कौ टेक, मात दूध जैसे बाले, सागर में बोहित पायो हर नानक, करी कृपा कृपाले। तनासरी महला पंजवा, पै कृपाल दयाल गोविंदा, अमृत हृदय सिंचाई, नवने दरिद सिधार, लाग रही जन पाई। संतन का आनंद सगली जाई, गृह बार ठाकर भगतन का, रव रहा सर्व ठाई रहाओ। ता को कोई न पहुंच नहारा, जा कै अंग गुसाई, जम की त्रास मिटै जिस सिमरत, नानक नाम ते आई। तनासरी महला पंजवा, दर्भवंत दर्ब देह गर्भ है, पूमवंत अभिमानी, राजा जन सगल राज हमरा, त्यों हरजन टेक स्वामी। जे को अपनी उड़ सुमार है, जैसा बित तैसा हुए वर्त, अपना बल नहीं हार रहाओ। आन त्याग पै के असर, सरन सरन कर आए, संतानुग्रह।

आत्म जिणै सगल वस तां कै जांका सतगुर पूरा। ठाकुर गाइया आत्म रंग सरणी पावन नाम त्यावन सह समावन संग रहाओ। जन के चरण वसै मेरे ही अरै संग पुनीता देही जन की तूर दे हो कृपा निध नानक कै सुख एही। तनाश्री महला पंजवा जतन करै मान खुडहै कावै ओह अंतर जामी जानै पाप करे कर मुकर पावै पेख करै निर्बन जानत दूर तुमै प्रभ नेर उत ताकै उत ते उत पेखै आवै लोभी फेर रहाओ। जब लग तुटै नाही मन परमा तब लग मुक्त ना कोई कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई। तनाश्री महला पंजवा नाम गुर दी होय अपने जाके मस्त करमा नाम दृढ़ावै नाम जपावै ताका जुग मैं तरमा। जन कौ नाम वडाई सोब नामो गत नामो पत जन की मानै जो जो हो ग्रहाओ। नाम तानो जिस जन कै पालै सेई पूरा सहा नाम ब्योहारा नानक आधारा नाम प्राप्त लाहा। तनाश्री महला पंजवा नेत्र पुनीत पए दर्श पेखे माथे परोर वाल रस रस गुण गावो ठाकुर के मोरै हृदय बसो गोपाल। तुम तौ रखनहार दयाल सुंदर सुगड़ बेअंत पिता प्रभ हो प्रभु कृपाल रहाओ। महा आनंद मंगल रूप तुमरे बचन ने ऊपर साल हृदय चरण शब्द सतगुर को नानक बांध्यो पाल। तनाश्री महला पंजवा अपनी उकत खिलावै भोजन अपनी उकत खिलावै सर्व सुख भोग रस देवै मन ही नाल समावै। हमरे पिता गोपाल दयाल जो राखै महतारी बारक कहो तैसे ही प्रपाल रहाओ। मीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिलै नानक संत सेवा। तनाश्री महला।

मंत्र राम नाम हितकारे सुख सहजानंद मंगल सहित पवनित पार उतारे रहाओ। तन सो थान तन ओए पवना जा मैं संत बसारे जन नानकी सरदा पूरो ठाकर भगत तेरे नमस्कारे। तनासरी महला पंजवा छडाए लियो महाबली ते अपने चरण परात। एक नाम दियो मन मंता बिनसना कतहू जात सतगुर पूरे कीनी दात। हर हर नाम दियो कीर्तन कहो पही हमारी गात। रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने भगतन की राखी पात। नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात। तनासरी महला पंजवा पर हर ना लोभ झूठ निंद इव ही करत गुदारी। मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी ए टेक मन सादारी। सागत किया वरदा जाय बिरथारी जैसे कागद के पार मूसा टूक गवावत। काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी। बूढ़ त्यंद नानक प्रभ काढ़त साजना संगारी। तनासरी महला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना शीतल तन मन छाती। रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म रह जाती। रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कै चरण कमल निध थाती। रहाओ जिसका सा तिन ही रख लिया पूर्ण प्रभ की पाती। मेल लियो आपे सुखदाता नानक हर राखी पाती। तनासरी महला पंजवा दूत दुश्मन सब तुझते निवरै प्रगट प्रताप तुम्हारा जो जो तेरे भगत दुखाए। ओह तत्काल तुम्हारा निरखो तुमरी ओर हर नीत मुरार सहाय हो दास कहो कर गए उधरो मीत। रहाओ सुनी बेनती ठाकुर मेरा खसमा ना कर आप नानक अंध भय दुख पागे सदा सदा हर जाप। तनासरी महला पंजवा चतर दिशा कीनो बल अपना श्री उपर कर तारियो कृपा कटाख अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो। हर जन राखे गुरु गोविंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे।

स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मदयंत प्रभ जापण नानक रंग लगा परमेश्वर बाहुड़ जन्म ना छापण तनासरी महला पंजवा मांगो राम ते सब थोक मानख कहो जाचत शरम पाई है प्रभ कै सिमरन मोख रहाओ कोखे मुनजन सिमरत पुराना बेद पुकारै कोख कृपा सिंध सेव सच पाई है दोवै सोहेले लोक आन आचार व्यवहार है जेते बिन हर सिमरन फोक नानक जन्म मरण पह काटे मिल साधु बिन से सोक तनासरी महला पंजवा तृष्णा बुझ

जन्म पाए कछ पलो न कीनो, ताते अधिक डराओ, मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच तरो, गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजो, पस ज्यो उदर भरो, कहो नानक प्रभ बिरद पछानो, तब हाँ पतत तरो। तनासरी महला पहला, कर दूजा अष्टपदियां एक ओंकार, सतगुर प्रसाद गुरसागर रतनी भरपूरे, अमृत संत चुगै नहीं दूरे, हर चुग चुगै प्रभावै, सरवर में हंस प्राण पत पावै, क्या पग बपड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबै मैल ना जाए, रहाओ रख रख धर्म रख रख चरण धरे विचारी, दुबदा छोड़ पै निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाखे, आवन जान रहे गुर राखे, सरवर हंसा छोट ना जाए, प्रेम भगत कर सह समाए, सरवर मैं हंस हंस मैं सागर, अकथ कथा गुरबचनी आदर, सुन मंडलिक जोगी बैसे, नारना पुरख कहो को कैसे, तिर पवन जोत रहे लिव लाई, सुर नर नाथ सच्चे सरनाई, आनंद मूला नाथ आधारी, गुरमुख भगत सहज बिचारी, भगत वछल पै काटन हारे, हमे मार मिले भगतारे, अनक जतन कर काल संताए, मरण लिखाए मंडल मैं आए, जन्म पदा

जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद कहो जे मनपति आए। साचे निर्मल मैल न लागै, गुर कै शब्द भरम पौ भागै। सूरत मूर्त आदि अनूप, नानक जाचै साच स्वरूप। तनासरी महला पहला, सहज मिलै मिलिया प्रवान। नात स्मरण न आवण जान, ठाकुर मैं दा दास मैं सोए। जै देखा तै अवर न कोए, गुरमुख भगत सहज कर पाईऐ। बिन गुर भेटे मरियाई जाइऐ रहाओ। सो गुर करो जे साज दृढ़ावै, अकथ कथावै शब्द मिलावै। हर के लोग अवर नहीं कारा, साचो ठाकर साच प्यारा। तन मैं मनुआ मन मैं साचा, सो साचा मिल साचे राचा। सेवक प्रभ कै लागै पाए, सतगुर पूरा मिलै मिलाए। आप दिखावै आपे देखै, हठ ना पतीजै ना बहु पेखै। घट पांडे जिन अमृत पाया, प्रेम भगत ब्राह्मण पति आया। पड़ पड़ भूलै चोटा खाहे, बहुत सियाण पे आवै जाहे। नाम जपै पौ भोजन खाए, गुरमुख सेवक रहे समाए। पूज सिला तीर्थ बनवासा, परमत डोलत पय उदासा। मन मैलै सूचा क्यों होए, साच मिलै पावै पत सोए।

हमरा मन तनु राम को नामा राम सिमरो राम सिमर पाई राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधकाई रहाओ। बनता सुत देह ग्रह संपत सुखदाई इनमें कछ नाहे तेरो काले अवधयाई अजा माल गज गन का पतत कर्म कीने तेउ उत्तर पार परे राम नाम लीने। सूकर कूकर जोन प्रमे तउ लाज ना आई राम नाम छाड़ अमृत काहे बिख खाई तज परम कर्म बिदन खेद राम नाम लेही गुरप्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही। तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद गहरी करके नीम खुदाई उपर मंड पछाए मारकंडे ते को अधकाई जिन तरन तर मुंड बलाए।

दुर्योधन से पाई, बारह जो जन शत्र चल था, देही गिरज न खाई, सर्व सो इनकी लंका होती, रावण से अदकाई, कहां पयो दर बांधे हाथी, खिन में पई पराई, दुर्वासा सो करत ठगौरी, जादवे फल पाए, कृपा करी जने अपने ऊपर, नाम देव हर गुण गाए, दस बैर अग्न मोहे बस कीनी, पंचों का मिट नावो, सत्तर दोए भरे अमृतसर, बेको मार कढ़ावो, पाछे बहुर ना आमन पावो, अमृत बाणी करते उचराओ, आत्म को समझावो रहाओ, बजर कुठार मोहे है शीना, कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक, भगतन ते डर पावो, यह संसार ते तभी छूटो, जो माया ने लिपटावो, माया नाम गर्भ जोन का, तेहता दर्शन पावो, इत कर भगत करे जो जानो, तिन पौ सगल चुकाई है, कहत नाम देओ बाहर क्या भरमा, ए संजम हर पाई है, मारवाड़ जैसे नीर बालहा, बेल बालहा करहला, ज्यो कुरंक निसनाद बालहा, त्यों मेरे मन रामैया, तेरा नाम रूडो रूप रूडो, आतरंग रूडो मेरो रामैया रहाओ, ज्यो तरणी को इंद्र बालहा, कुसुम बास जैसे पवरला, ज्यो कोकल को अंब बालहा, त्यों मेरे मन रामैया, चकवी कौ जैसे सूर बालहा, मान सरोवर हंसला, ज्यो तरणी कौ कंत बालहा, त्यों मेरे मन रामैया, बारक कौ जैसे खीर बालहा, चात्रक मुख जैसे जल तरा, मछली कौ जैसे नीर बालहा, त्यों मेरे मन रामैया, साधक सिद्ध सगल मुन चाहे, बिरले काहू डिठला, सगल पवन तेरो नाम बालहा, त्यों नामे मन बीठला, पहल पुरिये पुंडरक वना, ताचे हंसा सगले जना, कृष्णा ते जानाऊ हर हर नाचंती नाचना, पहल पुरसा बिरा, अथोन पुरसा दमरा, असगा अस उसगा, हर का बागरा, नाचे पिंदी मैं सागरा रहा।

पिंदी उबकले संसारा भ्रम भ्रम आए तुम चे द्वारा तू कुनरे मैंजी नामा हो जी आला ते निवारणा जमकारणा पतत पावन माधो बिरद तेरा तन ते वह मुन जनो जिन त्यायो हर प्रभ मेरा।

अब पति यार क्या की जाए, बचनी तोर मोर मन मान है, जन को पूर्ण दी जाए। हाँ बल बल जाओ रमैया कारने, कारण कवन्या बोल रहा हो। बहुत जन्म बिछरे थे मादाओ, एहो जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवा, चिर पयो दर्शन देखे। चित सिमरन करो नैन अवलोकनो, श्रवण बानी सुजस पूर रखो, मन सुमद कर करो चरण हृदय धरो, रसन अमृत राम नाम पाखो। मेरी प्रीत गोविंद स्यो जिन घटै, मैं तो मोल महंगी लई जी सटै रहाओ। साध संगत बिना पाव नहीं उपजै, पाव बिन भगत नहीं होए तेरी, कह रविदासक बेनती हर स्यो, पैज राखो राजा राम मेरी। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे रहाओ। नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा, नाम तेरा केसरो ले छटकारे, नाम तेरा अंबला नाम तेरो चंदनो, कस जपे नाम ले तुझे कौचारे।

नाम तेरो तागा नाम फूल माला, पार अठारह सगल जूठारे, तेरो किया तुझे क्या यार पाओ, नाम तेरा तू ही चवर टोलारे। दस अठा अठ सठे चारे खानी, यह वर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे। तनासरी बाणी भगता की, त्रिलोचन एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नारायण निंद सकाए भूली गवारी, दो कृष्त सुकृत थारो कर मरी रहाओ। संकरा मस्तक बस्ता सुरसरी इसनान रे, कोल जन मदे मिलियो सारंग पान रे। कर्म कर कलंक मफीट सरी, विश्व का दीपक स्वामी, ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरड़ ताचे बाधवा। कर्म कर अरण पिंगलारी, अनक पातक हरता त्रिपवन नाथरी। तीर्थ तीर्थ भ्रमता लह ना पारदी, कर्म कर कपाल मफीट सरी। अमृत ससी तेन लक्ष्मी, कल्प तार शिखर सुनागर नदी चे नाथं। कर्म कर खार मफीट सरी, दादी ले लंका गाड़, ओपाड़ी ले रावण बाण। साल बिसाले आन तोखी ले हरी, कर्म कर कशौटी मफीट सरी। पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी कर गेहन, ताचे मोहे जापी आले राम चे रामं। बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन, धूप दीप कृत साज आरती, वारने जाओ कमलापति मंगला।

रामा भगत रामानंद जानै, पूर्ण परमानंद बखानै। मदन मूर्त पै तार गोबिंद, सैन पणै पज परमानंद पीपा। कायो देवा कायो देवलो, कायो जंगम जाति। कायो धूप दीप नहीं बेदा, कायो पूजो पाती। काया बहु खंड खोजते, नवनिध पाई। ना कश आए बो ना कश जाए बो, राम की दुहाई रहाओ। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावै। पीपा प्रणवै परम तत् है, सतगुरु होए लखावै तन्ना। गोपाल तेरा यारता, जो जन तुमरी भगत करनते, तिनके काज सवारता रहाओ। दाल सीधा मांगो कियो, हमरा खुशी करे नित जियो। परिया शादन निकाया, नाज मंगो सत सीका। गौ पैस मंगो लावेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी। कर की गीहन चंगी, जन तन्ना लेवै मंगी। जय श्री महला चौथा, कर पहला चौपदे एको अंकार। सतगुर प्रसाद मेरे ही अरे, रतन नाम हर बसिया। गुरहा तरियो मेरे माथा, जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे। गुर नाम दियो रिन लाथा, मेरे मन भज राम नाम सब अर्था। गुरपुरे हर नाम दृढ़ाया, बिना मैं जीवन बिरथा रहाओ। बिन गुरमूड पए है मन मुख, ते मोह माया नित फाथा। तिन साधु चरण ना सेवे कबहू, तिन सब जन्म अकाथा। जिन साधु चरण साध पग सेवे, तिन सफल्यो जन्म सनाथा। मोको कीजै दास दास, दासन को हर दया तार जगन्नाथा। हम अंधले ज्ञान ही न ज्ञानी, क्यों चले मार्ग पंथा। हम अंधले को गुरे अंचल दीजै, जन नानक चले मिलंथा। जय श्री महला चौथा, हीरा लाला मोल कह पारी। बिन गाहक मीका काखा, रतन

हा करत बिहानी अवद ता मैं संतोख ना पाया। हस्त रथ असव पवन तेज तनी पूमन चतरंगा, संग ना चालियो इन मैं कछुवै ऊड़ सदायो नांगा। हर के संत प्रिया प्रीतम प्रभ के ता कै हर हर गाइय, नानकी हां सुख आगे मुखी उज्जल संग संतन कह पाइय। जैत सरी महला पंजवां कर तीजा दो पदे एको अंकार, सतगुर प्रसाद देहो संदेसरो कहियो प्रे कहियो, बिसम भई मैं बहुबिद सुनते कहो सुहागन सहियो रहाओ। को कहतो सब बाहर बाहर को कहतो सब महियो, वर्ण ना दिसे चिहन ना लखिए सुहागन साथ बुझहियो। सर्ब निवासी घट घट वासी लेप नहीं अल्पहियो, नानक कहत सुनो रे लोगा संत रसन को बसहियो। जैत सरी महला पंजवां।

बेसुमार बेअंत बड़दाता मने गही रहो पेख प्रभु को जो चाहो सोई सोई पावो आसा मनसा पूरो जब प्रभु को गुर प्रसाद नानक मन वसिया दुख न कबू चूरो बुझ प्रभु को जैत सरी महला पंजवा लोड़ींदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके कट कट उतस बसेरा रहाओ सुख अराधन दुख अराधन बिसरै ना काहू बेरा नाम जपत कोट सूर्य उजारा बिनसै परम अंधेरा थान थनंतर सबनी जाई जो दिसै सो तेरा संत संग पावे जो नानक तिस बहुर ना हुई है फेरा जैत सरी महला पंजवा कर चौथा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद अब मैं सुख पायो गुर आग तजी सियानप चिंत विसारी अहं छोड़ियो है त्याग रहाओ जो देखो तो सगल मोहे मोहियो तो शरण परयो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तो जम छोड़ी मोरी लाग तरयो सागर पावक को जो संत पेटे वड भाग जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरणी चित लाग जैत सरी महला पंजवा मन में सतगुर ध्यान तरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाओ काल जाल अर महा जंजाला छुटके जमै डरा

मद पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर सिमरंत संत सर्वत्र रमण नानक अगनासन जगदीश्वर पेखन सुनन सुनावन मन में दृढ़ साच पूर रहे हो सर्वत्र में नानक हर रंगराज पौड़ी हर एक निरंजन गाई है सब अंतर सोई करण कारण समरथ प्रभ जो करे सो होई खिन मैं थाप्यो थापदा तिस बिन नहीं कोई खंड ब्रह्मंड पाताल दीप रविया सब लोई जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई सलोक परचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापन सा सा स्मरंत नानक महायग्न ना बिनासन मुख तले पैर उपरे वसंदो कहुथड़ै थाए नानक सो तनी क्यों विसारियो उदरै जिस दै नाए पौड़ी रगत बिंद कर निमया अग्न उदर मजहार उर्द मुख कुचीर बिकल नरक घोर गुबार हर सिमरत तू ना जलै मन तन उर धार बिखम थानो जिन रखिया तिस तिल ना विसार प्रभ बिसरत सुख कदे नाहे जासै जन्म हार सलोक मन इच्छा दान करण सर्वत्र आसा पूर्ण खंडन कल कलेसै प्रभ सिमर नानक ने दूरन हब रंग माण जिस संग तै स्यों लाइय ने हो सो सहो बिंद न विसरो नानक जिन सुंदर रचिया दे हो पौड़ी जियो प्राण तन तन दिया दीने रस भोग गृह मंदिर रथ अस दिए रचपले संजोग सुत बनता साजन सेवक दिए प्रभ देवन जोग हर सिमर तो तन मन हरिया ले जाए विजोग साध संग हर गुण रमो बिनसे सब रोग सलोक कुटम जतन करण माया अनेक युद्ध में हर भगत भावहीन नानक प्रभ बिसरत ते प्रेत तै टुटड़िया सा प्रीत जो लाई बेअन स्यो नानक सच्ची रीत साई से तीरत आ पौड़ी जिस बिसरत तन पसम होए कहते सब प्रेत खिनग्रे मैं बिसना देवही जिनस्यो सोई हेत कर अनर्थ दर्ब संचया सो कार्य केत जैसा बीजै सो लुणै कर में हो खेत अकृत कणा हर विसरिया जोनी परमेत सलोक कोटदान इस नानंग अनक सो दिन पवित्र तै उचरंत नानक हर हर रसना सर्व पाप विमुचते ईंदन की तो मुकणा पोरी दित्ती मुपाहे मन वसंदड़ो सच सहो नानक हबो डुखड़े उलाहे पौड़ी कोट अगा सब नास होहे सिमरत हर नाओ मन चिंदे फल पाई है हर के गुण गाओ जन मरण पै कटी है।

नाद कुरंकै बेदया सनमुख उठतावै पवर लोभी कुसुम बासका मिलिया बंधावै त्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श अगावै सलोक चितवंत चरण कमलं साह सा राधन नै बिसरंत नाम अचत नानक आस पूर्ण परमेश्वर है शीतला मन मजाहे पलक न थीवै बाहरा नानक आसड़ी निवाहे सदा पेखंदो सच तनी पौड़ी आसावंती आस गोसाई पूरी है मिल गोपाल गोबिंद न कबहू झूरी है देहो दर्श मन चाओ लै जाए विसूरी है होए पवित्र शरीर चरना धूरी है पार ब्रह्म गुरदेव सदा हजूरी है सलोक रसना उचरंत नामं श्रवणं सुनंत शब्द अमृत है नानक तन सद बलिहारं जिन्ना ध्यान पार ब्रह्मण है हब कूड़ावे काम एक सुसाई बाहरे नानक से ही तन जिन्ना पिरहड़ी सच स्यों पौड़ी सद बलिहारी तिन्ना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवावै प्रभ मथा हर जस लिखै बेअंत सोहै से हथा चरण पुनीत पवित्र चालै प्रपथा संता संग उदार सगला दुख लथा सलोक भावी उदोत करण हर रमण संजोग पूर्ण गोपाल दर्श भेटं सफल नानक सो मुहूर्त कीम ना सका पाए सुख मिती हूं बाहरे नानक सा वेलड़ी परवान जित मिलंदड़ो मां पिरी पौड़ी सा वेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई सो मूर्त भला संयोग है जित मिले गुसाई आठ पैर हर त्याय कह मन इच्छ पुजाई वड्डे भाग सतसंग होए निम लागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई सलोक पतत पुनीत गोबिंद सर्व दुख निवारण सरण सूर भगवान जपंत नानक हर हर हरे छड्यो हब आप लगड़ो चरना पास नठड़ो दुख ताप नानक प्रापे खंदया पौड़ी मेल लहो दयाल टह पै द्वारिया रख ले वो दीन दयाल परमत बवहारिया भगत वछल तेरा बिरद हर पत ते उधारिया तुझ बिन नाही कोए बिना मोए सारिया कर गै लेहो दयाल सागर संसारिया सलोक संत उदरण दयालं आसरंग गोपाल कीर्तन निर्मलं संत संगेन ओट नानक परमेश्वर है चंदन चंदना सरद रुत मूल न मिटई काम शीतल थी वै नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी चरण कमल की ओट उदरे सगल जन सुन प्रताप गोविंद निरपो पय मन तोट न आवै मूल संचया नाम तन संत जना स्यो संग पाइय वड्डे पुन आठ पहर हर त्याय हर जस नित सुन सलोक दया करणं दुख हरणं उचरणं नाम कीर्तन दयाल पुरख भगवान नानक लिप्त नाम आया पाहे बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप जिन पाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी जा प्रभ पय दयाल ना व्यापै माया कोट अगा गए ना

निकट जानो प्रभु स्वामी सगले रण होए रही है साधु संगत होए प्राप्त ता प्रभु अपना लही है। सदा सदा हम शोहरे तुमरे तू प्रभ हमरो मीरा नानक बारक तुम मात पिता मुख नाम तुम्हारो खीरा। टोडी महला पंजवां कर दूजा दो

मान सुख इस मन को बर्तन ए हमारा रहाओ। नाम जात नाम मेरी पत है, नाम मेरा परिवार है, नाम सिखाई सदा मेरा संग, हर नाम मुको निस्तार है। बिखै बिलास कहियत बहुत तेरे, चलत ना कछु संगार है, इष्ट मीत नाम नानक को, हर नाम मेरा भंडार है। टोडी महला पंजवां, नीके गुण गाओ मिट ही रोग, मुखी उजल मन निर्मल होई है, तेरो रह इहां उहां लोग रहाओ। चरण पखार करो गुर सेवा, मने चरावो भोग, छोड़ आपत बाद हंकारा, मान सोई जो होग। संत टहल सोई है लागा, जिस मस्तक लिखिया लिखोग, कहो नानक एक बिन दूजा, अवर ना करन है जोग। टोडी महला पंजवां, सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर सोभा, चिंता लाहे हमारी रहाओ। अवर ना सूजे दूजी ठाहर, हार पर्यो तो द्वारी, लेखा छोड़या लेखा छूटै, हम निर्गुण लेहो उबारी। सदबख सिंधु सदा मेहरबाना, सब ना दे आधारी, नानक दास संत पाछै परयो, राख लेहो ए बारी। टोडी महला पंजवां, रसना गुण गोपाल निद गायण, सांत सहज रहस मन उपजो, सगले दुख पलायण रहाओ। जो मांगे सोई सोई पावे, सेव हर के चरण रसायण, जन्म मरण दोहू ते छूटे, पव जल जगत तरायण। खोजत खोज तत् बिचार्यो, दास गोविंद परायण, अविनाशी खेम चाहे जे नानक, सदा सिमर नारायण। टोडी महला पंजवां, निंदक गुर कृपा ते हट्यो, पार ब्रह्म पर भय दयाला, शिव कै बाण सिर काट्यो रहाओ। काल जाल जम जोहे न साकै, सच का पंथा थाट्यो, खात खर्चत किश निखुटत नाही, राम रतन तन खाट्यो। पसमा पूत हुआ खिन पीतर, अपना किया पाया, आगम निगम कह जन नानक, सब देखै लोक सबाया। टोडी महला पंजवां, किरपन तन मन किलवख परे, साध संग भजन कर स्वामी, ठाकन कौ इक हरे रहाओ। अनक छिद्र बोहित के छुटकत, थाम ना जाही करे, जिसका बोहित तिस यारा दे, खोटे संग खरे। गली सैल उठावत चाहै, ओए उहां ही है तरे, जोर सकत नानक किश नाही, प्रभ राखो शरण परे। टोडी महला पंजवां, हर के चरण कमल मन त्याओ, काढ़ कुठार पित बात हंता, औखद हर को नाओ रहाओ। तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास, ताको बिगड़ न को लागै, जाकी प्रभ आगै अरदास। संत प्रसाद वैद नारायण, करण करण प्रभ एक, बाल बुद्ध पूर्ण सुखदाता, नानक हर हर टेक। टोडी महला पंजवां, हर हर नाम सदा सद जाप, तार अनुग्रो पार ब्रह्म स्वामी, वसदी की नियाप रहाओ। जिसके से फिर तिन ही समाले, बिन से सोख संताप, हाथ दे राखे जने अपने, हर होए माई बाप। जी जंत होए मेहरवाना, दया तारी हर नाथ, नानक शरण परे दुख पंजन, जाका बड़ प्रताप। टोडी महला पंजवां, स्वामी शरण परयो दरबारे, कोट पराध खंडन के दाते, तुझ बिन कौन उधारे रहाओ। खोजत खोजत बहु प्रकारे, सर्ब अर्थ बिचारे, साध संग परम गत पाई है, माया रच बंद हारे। चरण कमल संग प्रीत मन लागी, सुरजन मिले प्यारे, नानक आनंद करे, हर जप जप सगले रोग निवारे। टोडी महला पंजवां।

बिनसे माया के साधु संगत मिटे बिसूर सुख संपत भोग इस जी के बिन हर नानक जाने कूर। टोडी महला पंजवा माई मेरे मन की प्यास एक खिन रह ना सको बिन प्रीतम दर्शन देखन को धारी मन आस। रहाओ सिमरो नाम निरंजन करते मन तन ते सब किल विखनास। पूर्ण पार ब्रह्म सुखदाते अविनाशी बिमल जा को जास। संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा भेटे गुणतास। शांत सहज सुख मन उपजियो कोट सूर नानक प्रगास। टोडी महला पंजवा हर हर पद पावन जी प्राण मान सुखदाता अंतर जामी मन को पावन। रहाओ सुंदर सुगड़ चतर सभ्यता रिद दास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी करम भूम बीजन सो खावन। बिस्मन बिस्म भय बिस्मादा यान बियो दूसर लावन। रसना सिमर सिमर जस जीवा नानक दास सदा बल जावन। टोडी महला पंजवा माई माया शाल त्रिन की अगन में की छाया गोविंद भजन बिन हड़का जाल। रहाओ छोड़ सियान बहु चितराई दोए कर जोड़ साध मग चल। सिमर स्वामी अंतर जामी मानुख देह का एहो उत्तम फल। वेद बखयान करत साधु जान भागहीन समझत नहीं खल। प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन भय माल। टोडी महला पंजवा माई चरण गुर मीठे वड़े भाग देवै परमेसर कोटफला दर्शन गुर डीठे। रहाओ गुण गावत्या चुत अविनाशी काम क्रोध बिनसे मद टीठे। अस्थिर पय साच रंग राते जन्म मरण बाहुर नहीं पीठे। बिन हर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब झूठे। नाम रतन पायो जन नानक नाम बेहून चले सब मूठे।

करीमा रहीमा अल्लाह तू गने हाजरा हजूर दर पेस तू मने दरियाओ तू देहंद तू बिस्यार तू धनी देहे लेह एक तू दिगर को नहीं तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करी नामे चे स्वामी बखसंद तू हरी हल्ले यारा खुश खबरी बल बल जाओ हाँ बल बल जाओ नेकी तेरी बिगारी आले तेरा नाओ रहाओ कुजा आमद कुजा रफती कुजा मेर वई द्वारका नगरी रास बगोई खूब तेरी पगरी मीठे तेरे बोल द्वारका नगरी काहे के मगोल चंदी हजार आलम एक लखाना हमचिनी पातशाह सामले बरना आस पात गज पात नरे नरेंद नामे के स्वामी मीर मुकंद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद राग सुही महला पहला चौप दे कर पहला पांडा तोए बैस धूप देवो तौ दूधे कौ जावो दूध करम फुन सुरत समायण होए निरास जमावो जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा रहाओ एहो मनी टी हाथ करो फोन नेत्रो नींद ना आवे रसना नाम जपो तब मथिया इन बदे अमृत पावो मन संपटो जित सत सरनावन पावन पाती तृप्त करे पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहेब रवत रह कहिंदे कहे कहे कह जावे तुम सरे अवर ना कोई भगतहीन नानक जन जंपै हौसा।

अंतर वसै ना बाहर जाए, अमृत छोट काहे बिख खाए। ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, होवो चक्र साचे केरे रहाओ। ज्ञान ध्यान सब कोई रवे, बंधन बांधया सब जग पवे। सेवा करे सो चाकर होए, जल थल महियल रव रहया सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, प्रणवत नानक तारे सोए। सुही महला पहला, कर सेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। उज्जल कहा चिलकना, कोटम कर लड़ी मस। तोतिया झूठ ना उतरै, जे सो तोवा तिस। सज्जन सेई नाल मैं, चल दिया नाल चलन। जिथे लेखा मंगी है, तिथे खड़े दिसन रहाओ। कोठे मंडप माड़िया, पासो चितवियां हां। टठियां कम ना आवनी, विचों सखणियां हां। बग्गा बग्गे कपड़े, तीर्थ मंज वसन। कुटकुट जियां खावणे, बग्गे ना कई अन्न। सिमर रुख शरीर मैं जन देख पुलन। से फल कम ना आवनी, ते गुण मैं तन हन। अंदले पार उठाया, डूगर वाट बहुत। अखी लोड़ी ना लहा, हों चढ़ लंगा कित। चाकरियां चंगियाईया, अवर सियाण पकित। नानक नाम संभाल तू, बद्दा छुट्टै जित। सुही महला पहला, जप तप का बंद बेड़ला। जित लंघै वहेला, ना सरवर ना उछलै। ऐसा पंथ सुहेला, तेरा एको नाम जीठड़ा। रत्ता मेरा चोला, साध रंग ढोला रहाओ। साजन चले प्यारिया, क्यों मेला होई। जे गुण हो वै गंठड़ी है, मेलेगा सोई। मिलिया होए ना विछड़ै, जे मिलिया होई। आवा गौण निवारिया, है साचा सोई। हम मैं मार निवारिया, सीता है चोला। गुरबचनी फल पाया, सह के अमृत बोला। नानक कह सहेलियो, सौ खरा प्यारा। हम सह केरिया दासिया, साचा खसम हमारा। सुही महला पहला, जिन कौ पांडे पाओ, तिना सवार सी। सुखी करै पसाओ, दुख विसार सी। सहसा मूले नाहे, सर परतार सी। इतना मिलिया गुर आए, जिन कौ लिखिया। अमृत हर का नाव, देवे दिखिया। चल ऐ सतगुर पाए, पवे ना पिखिया। जा को महला हजूर, दूजे नवे किस। दर दरवाणी नाहे, मूले पुछ तिस। छुट्टै ता कै बोल, साहिब नदर जिस। कल्ले आने आप, जिस नाही दूजा मतै कोए। ताहे उ सारे साज, जाने सब सोए। नाव नानक बख्शीस, नदरी कर्म होए। सूही महला पहला, पांडा हच्छा सोए। जोत स्पाव सी, पांडा आत्मलीन। तोता हच्छा ना होए सी। गुरु द्वारे होए, सोजी पाए सी। ये द्वारे तोए, हच्छा होए सी। मैले हच्छे का विचार, आप वरताए सी। मत को जाने जाए, अगे पाए सी। जेहे कर्म कमाए, तेहा होए सी। अमृत हर का नाव, आप वरताए सी। चलिया पथ सिओ जन्म सवार, वाजा वाए सी। मानस क्या विचारा, त्यो लोक सुनाए सी। नानक आपने हाल, सब कुल तार सी।

तेरा सदड़ा सुनी जय पाई जे को बह अलाए रहाओ। जैसा बीजे सो लुणे जो खट्टे सो खाए अगे पुछ ना हो वही जे सणनी सण जाए। तैसो जैसा कंडिये जैसी कार कमाए जो दम चेतना आवई सो दम बिरथा जाए। एहो तन वेची बै करी जे को ले विकाए नानक कम ना आवई जतन नाही सच्चा नाओ। सूही महला पहला कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जोग ना खिंथा जोग ना डंड जोग ना पसम चढ़ाई है जोग ना मुंदी मूंड मुंडाया जोग ना सिंगी वाई है। अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है गल्ली जोग ना होई एक दृष्ट कर संसर जाने जोगी कहिए सोई रहाओ। जोग ना बाहर मड़ी मसाणी जोग ना ताड़ी लाई है जोग ना दे संतर पवे जोग ना तीर्थ नाई है। अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है सतगुर भेट ता सहसा टूट तावत वर्ज रहाई है निजर चर सह तुन लागे कर ही परचा पाई है। अंजन माहे निरंजन रही है जो जुगत इव पाई है नानक जीवत्या मर रही है ऐसा जो कमाई है। वाजे बाजो सिंगी वाजे तौ निरपो पद पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जो जुगत तौ पाई है।

मेरे लाल जियो तेरा अंत ना जाना, तू जल थल मैयर भरपुर लीना, तू आपे सर्ब समाना रहाओ। मन तारा जी चित तोला, तेरी सेव शराब कमावा, कट ही पीतर सो सहो तोली, इन विद चित रहावा। आपे कंडा तोल तो राजी, आपे तोलन हारा, आपे देखा आपे बूझे, आपे है मनजारा। अंदला नीच जात परदेसी, खिन आवे तिल जावे, ता की संगत नानक रहिंदा, क्यों कर मूड़ा पावे। राग सुही महला चौथा, कर पहला एको अंकार, सतगुर प्रसाद मन राम नाम आराध्या, गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा मन तन पूरिया, सब चूका डर जम के। मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के, गुर तुठे मन पर बोधया, हर पिया रस गट के रहाओ। सतसंगति उत्तम सतगुर केरी, गुण गावे हर प्रभ के, हर कृपा तार मिलो सतसंगत, हम धोवे पग जन के। राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर जल पाया, सब लाथी तिस तिस के। हमरी जात पात गुर सतगुरु, हम वेचो सिर गुर के, जन नानक नाम परयो गुर चेला, गुर राखो ला जन के। सुही महला चौथा, हर हर नाम भजो पुरखोत्तम, सब बिन से दाल दलगा, पौ जन्म मरना मेट्यो गुर सबदी, हर अस्त्र सेव सुख समगा। मेरे मन भज राम नाम अत पिरगा, मैं मंतन अर्प धरियो गुर आगै, सिर वेच लियो मुल महंगा रहाओ। नरपत राजे रंग रस मान, बिन नामे पकड़ खड़े सब कलगा, धर्म राय सिर डंड लगाना, फिर पछताने हथ फलगा। हर राख राख जन किरम तुम्हारे, सरनांगत पुरख प्रत पलगा, दर्शन संत देहो सुख पावे, प्रभ लोच पूर जन तुम गा। तुम समरथ पुरख वड्डे प्रभ स्वामी, मोको कीजे दान हर निमगा। जन नानक नाम मिले सुख पावे, हम नाम विटाओ सद घुमगा। सूही महला चौथा, हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीठ रंग, गुर तुठे हर रंग चाड़िया, फिर बहु न हो भी भंग। मेरे मानो हर राम नाम कर रंग, गुर तुठे हर उपदेसिया, हर पेटिया राओ निसंग रहाओ। मुंद आनी मन मुखी, फिर आवन जाना अंग, हर प्रभ चेतना आयो, मन दूजा पाओ सहलंग। हम मैल भरे दुहचारिया, हर राखो अंगी अंग, गुर अमृत सर नव लाया, सब लाथे किल विख पंग। हर दीना दीन दयाल प्रभ, सतसंगत मेलो संग, मिल संगत हर रंग पाया, जन नानक मन तन रंग। सूही महला चौथा, हर हर करै नित कपट कमावै, हिरदा शुद्ध ना होई, आन दिन कर्म करे बहु तेरे, सुपने सुख ना होई। ज्ञानी गुरबिन भगत ना होई, कोरे रंग कदे ना चढ़े, जे लोचे सब कोई रहाओ। जप तप संयम वर्त करे पूजा।

बहुत चितराई मनुआ दे दस्तावे हम ब्यापया शब्द ना चीने फिर जूनी आवे नानक नजर करे सो बूझे सो

बाद गुरमत नगरी खोज खोज आई, हर हर नाम पदार्थ पाई, मेरा मन हर हर सांत वसाई, तिसना अग्न बुझी खन अंतर, गुर मिलिया सब भुख गवाई रहाओ, हर गुण गावा जीवा मेरी माई, सतगुर दयाल गुण नाम दृढ़ाई, हों हर पर प्यारा टूं टूंडाई, सत्संगत मिल हर रस पाई, तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई, गुरु नानक तुठा मेला हर पाई, सुही महला चौथा, हर कृपा करे मन हर रंग लाए, गुरमुख हर हर नाम समाए, हर रंग राता मन रंग माने, सदा आनंद रह दिन राती, पूरे गुर कै शब्द समाने रहाओ, हर रंग को लोचे सब कोई, गुरमुख रंग चलूला होई, मन मुख मुग्ध नर कोरा होए, जे सौ लोचे रंग ना हो वै कोय, नदर करे ता सतगुर पावे, नानक हर रस हर रंग समावे, सुही महला चौथा, जे वाह रस रही अगाए, गुरमुख पीवे सही समाए, हर रस जन चाखो जे पाई, तौकत अंत साध लो भाई रहाओ, गुरमत रस राखो उरतार, हर रस राते रंग मुरार, मन मुख हर रस चाखिया ना जाए, हो मैं करे बहुती मिलै सजाए, नदर करे ता हर रस पावे, नानक हर रस हर गुण गावे, सूही महला चौथा, कर सेवा एको अंकार, सतगुर प्रसाद, नीच जात हर जपत्या उत्तम पदवी पाए, पूछो बिदर दासी सुतै, किसन उतरिया घर जिस जाए, हर किया कथ कथा सुनो जन पाई, जित सहसा दुख भूख सब लह जाए रहाओ, रविदास चमार उस्तत करे, हर कीर्त निमख एक गाए, पतत जात उत्तम पया चार वर्ण पय पगयाए, नाम दे प्रीत लगी हर सेती, लोक शिपा कह बुलाए, खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोडे, हर नाम देव लिया मुख लाए, जितने भगत हर सेवका मुख 68 तीर्थ तिन तिलक कढाए, जन नानक तिन को वंदन परसे, जे कृपा करे हर राए, सूही महला चौथा, तिन्नी अंतर हर आराध्या, जिनको तुर लिखिया लिखत ललारा, तिनकी बखीली कोई क्या करे, जिनका अंग करे मेरा हर करतारा, हर हर त्याए मन मेरे, मन त्याए हर, जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा रहाओ, तुर भगत जना को बख्शिया, हर अमृत भगत भंडारा, मूर्ख होवे सो उनकी रीस करे, ते सहलत पलत मोहकारा, से भगत से सेवका, जिन्ना हर नाम प्यारा, तिनकी सेवा ते हर पाई है, सिर निंदक पवे इशारा, जिस घर विरती सोई जाने, जगत गुरु नानक पूछ करो बिचारा, चहो पीढ़ी आद जुगाद, बखीली किने ना पायो, हर सेवक पाए निस्तारा, सुही महला चौथा, जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई, गुर कृपा ते हर मन वसै, होरत बिद लया ना जाई, हर तन संचिय पाई, जे हलत पलत हर होए सखाई रहाओ, सत संगति संग हर तन खटी है, होरत है होरत उपाय, हर तन कितए ना पाई, हर रतन का वापारिया, हर तन तन विहाजे, कच्चे के वापारिये, वाके हर तन लया ना जाई, हर तन रतन जिवे हर माणक, हर तन नाल अमृत वे लैवत, हर भगती हर लिव लाई, हर तन अमृत वे लैवत का बीजया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही, हालत पलत हर तने की, भगता को मिली वड्याई, हर तन निरपौ सदा सदा अस्त्र है साचा, एहो हर तन अग्नि तस्करै पानी है जमदूतै, किसे का गवाया ना जाई, हर तन का उचक्का नेड़ ना आवई,
जम जा गाती डंड ना लगाई सागती पाप करके बिखिया तन संचया तिना एक विख नाल ना।

गोविंद गुण गाइए जियो, लाए सतगुरु नाल ध्यान रहाओ। सो सतगुरु सा सेवा सतगुर की सफल है, जिसते पाइए परम निधान। जो दूजे पाए सकत कामना अर्थ दुर्गंध सिरे वंदे, सो निफल सब अगियान।

उनका उत्तर जाएगा झूठ को मान, जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान, दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हूं करी वखियान, सुही महला चौथा कर सतवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद तेरे कमन कमन गुण कह कह गावा, तू साहेब गुणी निदाना, तुमरी महिमा वर्ण ना साकौ, तू ठाकर ऊच भगवाना, मैं हर हर नाम तर सोई, ज्यो भावे त्यो राख मेरे साहेब, मैं तुझ बिन अवर ना कोई रहाओ, मैं तान दी बाण तू है मेरे स्वामी, मैं तुझ आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही जिस पै करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास, विचे धरती विचे पानी, विच काष्ट अगंतरी जय, बकरी सिंह एक तै थाए राखे, मन हर जा भ्रम पौ दूर की जय, हर की वड़ियाई देखो संतो, हर निमाणिया मान देवाए, ज्यो धरती चरण तले ते उपर आवै, त्यो नानक साध जना जगत आन सब पैरी पाए, सूही महला चौथा तू करता सब किछ आपे जाने, क्या तुद पै आग सुनाई है, बुरा भला तू सबके सूझै, जिहा को करे तिहा को पाई है, मेरे साहेब तू अंतर की बिद जाने, बुरा भला तू सबके सूझै, तुद भावै तवै बुलावै रहाओ, सब मोह माया शरीर हर किया, विच देही मानुख भगत कराई, एक ना सतगुर मेल सुख देवै, एक मन मुख तंद पिटाई, सब को तेरा तू सबना का मेरे करते, तुद सबना सिर लिखिया लेख, जेही तू नदर करै तेहा को होवै, बिन नदरी नाही को पेख, तेरी वड़ियाई तू है जाने, सब तुदनो नित ते आए, जिसनो तुद पावै तिसनो तू मिलै, जन नानक सो थाए पाए, सुही महला चौथा जिनके अंतर वसिया मेरा हर हर, तिनके सब रोग गवाए, ते मुक्त पए जिन हर नाम ते आया, तिन पवित परम पद पाए, मेरे राम हर जन आरोग पए, गुर बचनी जिन्ना जपया मेरा हर हर, तिनके हम मैं रोग गए रहाओ, ब्रह्मा बिसर महादेव त्रै गुण रोगी, विच हम मैं कार कमाई, जिन किए तिसे न चेतै बपड़े, हर गुरमुख सो जी पाई, हम मैं रोग सब जगत व्यापिया, तिन कहो जन मरण दुख पारी, गुर प्रसादी को विरला छूटै, तिस जन कहो हम बलिहारी, जिन शिष्ट साजी सोई हर जाणै, ताका रूपया पारो, नानक आपे वेख हर बिकसै, गुरमुख ब्रह्म बिचारो, सुही महला चौथा कीता करना सरबर जाई, किश कीचै जे कर सकी, अपना कीता किशु ना होवै, ज्यों हर पावै त्यों रखी, मेरे हर जियो सब को तेरे वस, असा जोर नाही जे किश कर हम साकै, ज्यों पावै तिवें बख्स रहाओ, सब जियो पिंड दिया तुदे आपे, तुदे आपे कर लाया, जेहा तू हुक्म करै तेहे को कर्म कमावै, जेहा तू तुर लिख पाया, पंच तत् कर तुद सिरिट सब साजी, कोई सेवा करियो जे किश कीता होवै, एक ना सतगुर मेल तू बुझावै, एक मनमुख

हर की वड़ियाई हौ आखना साका हौ मूर्ख मुग्ध नीचाण जन नानक कौ हर बख्श लै मेरे स्वामी शरणागत पया अजान राग सूही महला पंजवा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद बाजी गर जैसे बाजी पाई नाना रूप भेख दिखलाई सांग उतार थम्यो पासारा तब एको एक अंकारा कवन रूप दृष्टियो बिनसायो कत गयो ओ काते आयो रहाओ जल ते उठे अनक तरंगा कनक भूखन कीने बहुरंगा बीज बीज देखियो बहु प्रकारा फल पाके ते एक अंकारा सहस कटा मैं एक आकाश कट फूटे ते ओही प्रगास परम लोभ मोह माया विकार परम छूटे ते एकंकार ओह अबनासी बिन सतनाही ना को आवे ना को जाही गुरपुरे हौ मैं मल तोई कहो नानक मेरी परम गत होई सुही महला पंजवां।

महाराज तेरी सरना पूर्ण दयाला तुझ बिन कमन करे प्रतपाला रहाओ जल थल महियल रहया परपूर निकट वसै नाही प्रभ दूर लोक पति आरै कछु ना पाइय साच लगै ताह मैं जाइय जिसनो लाए लय सो लागै ज्ञान रतन अंतर तिस जागै दुरमत जाए परम पद पाए गुर प्रसादी नाम ते आए दुइ कर जोड़ करो अरदास तुद भावै ताणै रास कर कृपा अपनी भक्ति लाए जन नानक प्रभसदा ते आए सुही महला पंजवा तन सोहागन जो प्रभु पछानै मानै हुक्म तजै अभमानै प्रेसे राती रलिया मानै सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी मन तन अर्प तजला जलुकानी रहाओ सखी सहेली कौ समझावै सोई कमावै जो प्रभ पावै सा सुहागण अंक समावै गर्भ घेली महल न पावै फिर पछतावै जब रहन विहावै कर्महीन मनमुख दुख पावै बिनो करीजे जाना दूर प्रभ अविनाशी रहा भरपूर जन नानक गावै देखा दूर सुही महला पंजवा गृह वस गुर की ना हो कर की नार दस दासी कर दीनी पतार सगल समग्री मैं कर की जोड़ी आस प्यासी पिर कौ लोड़ी कवन कहां गुण कंत प्यारे सुगुण स्वरूप दयाल मुरारे रहाओ सत सिंगार पौ अंजन पाया अमृत नाम तम बोल मुख खाया कंगन बस्तर गहने बने सुहावे तन सब सुख पावे जा पिर कर आवे गुण कामण कर कंत।

प्रगटया सूर जोत उजियारा सेज विशाई सरदया पारा नव रंग लाल सेज राम ने आया जन नानक पिर तन मिल सुख पाया सूही महला पंजवा उमक्यो हियो मिलन प्रभताई खोजत चरियो देखो प्रे जाई सुनत संदे सरो प्रे ग्रह सेज विशाई भ्रम भ्रम आयो तौ नजर ना पाई किन बिद हियरो धीरे निमानो मिल साजन हो तुझ कुर्बानो रहाओ एका सेज विशी तन कंता तन सूती पिर सद जागंता पियो मदरो तन मतवंता तन जागे जे पिर बोलंता पही निरासी बहुत दिन लागे देह दिसंतर मैं सगले चागे खिन रहन ना पावाओ बिन पग पागे होए कृपाल प्रभ मिलै सुभागे भयो कृपाल सतसंग मिलाया बूझी तप्त करै पिर पाया सगल सिंगार हुण मुझै सुहाया कहो नानक गुर परम चुकाया जै देखा तै पिर है भाई खोलियो कपाट ता मन ठहराई रहाओ दूजा सूही महला पंजवा क्या गुण तेरे।

लाल रंगीले प्रीतम मनमोहनो तेरे दर्शन को हम बारे रहाओ। प्रभ दाता मोह दीन पेखारी तुम सदा सदा उपकारे, सो किश नाही जे मैं ते होवै मेरे ठाकुर अगम अपारे। क्या सेवक मावो क्या कहरी जावो, बिदगित पावो दरसारे। मित नहीं पाईए अंत न लहिए, मंत्र सह चरनारे। पावो दान ढीठ होए मांगो, मुख लागे संतरे नारे। जन नानक कहो गुर कृपा तारी, प्रभात दे निस्तारे। सुही महला पंजवां करती जा, एको अंकार सतगुर प्रसाद। सेवा थोरी मंगन बहुता, महला पावे कह तो पहुता। जो प्रेमाने तिन की रीसा, कूड़े मूर्ख की हाठी सारहाओ। पेख दिखावे सच ना कमावे, कह तो महली निकट ना आवे। अतीत सदाए माया का माता, मन ही प्रीत कह मुखराता। कहो नानक प्रभ बिनो सुनी जय, कुचल कठोर कामी मुक्त की जय। दर्शन देखे की वडियाई, तुम सुखदाते पुरख सुभाई। रहाओ दूजा सूही महला पंजवा, बुरे काम को ऊठ खलोया। नाम की बेला पै पै सोया, अवसर अपना बुझे ना एना। माया मोह रंग लपटाना, रहाओ। लोभ लहर कौ बिकस फूल बैठा, साज जना का दर्शन डीठा। कबहू ना समझे अज्ञान गवारा, बहुर बहुर लपट्यो जंजारा। रहाओ बिखे नाद करन सुन पीना, हर जा सुनत आलस मन कीना। दृष्ट नाही रे पेखते अंदे, छोड़ जाहे झूठे सब धंदे। रहाओ कहो नानक प्रभ बख्श करी जय, कर कृपा मोहे साध संग दीजै। तौ किश पाईए जौ होइए रेना, जिसे बुझाए तिस नाम लैना। रहाओ सुही महला पंजवा, कर मैं ठाकुर नदर ना आवै। गल मैं पाहण लै लटकावै, भरमे पूला सख्त फिरता। नीर बिरोलै खप खप मरता, रहाओ। जिस पाहण का उठा कर कहता, ओह पाहण लै उसको डुबता। गुनहगार लून हरामी, पाहण नाव ना पार गिरामी। गुरमिल नानक ठाकर जाता, जल थल महियल पूर्ण विधाता। सुही महला पंजवां,

एहो सुपना सोवत नहीं जानै, अचेत व्यवस्था मैं लपटानै रहाओ। महा मोहे मोहयो गावारा, पेखत पेखत ऊट सिधारा, ऊते ऊच ताका दरबारा, कई जंत बिनाहे उपारा। दूसर होवा ना को होई, जप नानक प्रभ एको सोई, सूही महला पंजवा, सिमर सिमर ताका हो जीवा। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, सोहर मेरा अंतर जामी, भगत जना कै संग स्वामी रहाओ। सुन सुन अमृत नाम ते आवा, आठ पहर तेरे गुण गावा, पेख पेख लीला मन आनंदा, गुणिया पार प्रभ परमानंदा। जां कै सिमरन कछ भौ ना ब्यापै, सदा सदा नानक हर जापै। सूही महला पंजवा, गुर कै बचन हृदय ध्यान धारी, रसना जाप जपो बनवारी। सफल मूरत दर्शन बलिहारी, चरण कमल मन प्राण आधारी रहाओ। साध संग जन मरण निवारी, अमृत कथा सुन करन आधारी। काम क्रोध लोभ तजारी, दृढ़ नाम दान इस नान सुचारी। कहो नानक कहो तत् बिचारी, राम नाम जप पार उतारी। सूही महला पंजवा, लोभ मोहे मगन अपराधी, करनहार की सेवना सादी। पतत पावन प्रभ नाम तुम्हारे, राख लियो मोहे निर्गुणियारे रहाओ। तू दाता प्रभ अंतर जामी, काची बेमानुख्या अभिमानी। स्वाद बाद ईरख मद माया, इन संग लाग रतन जन्म गवाया। दुख भंजन जग जीवन हर राया, सगल त्याग नानक सरनाया। सुही महला पंजवा, पेखत चाखत कहियत अंधा, सुनियत सुनिए नाही। निकट वस्त कौ जाने दूरे, पापी पाप कमाही। सो किश कर जित छुटै परानी, हर हर नाम जप अमृत बानी रहाओ। घोर महल सदा रंग राता, संग तुम्हारा कछु न जाता। रखै पोचार माटी का भांडा, अत कुचील मिलै जम डांडा। काम क्रोध लोभ मोहे बादा, महागर्त मैं निगरत जाता। नानक की अरदास सुनी जै, डूबत पाहन प्रभ मेरे लीजै। सूही महला पंजवा, जीवत मरै बुझै प्रभ सोए, तिस जन कर्म प्राप्त होए। सुन साजन इउं दुत्तर तरियै, मिल साधु हर नाम उचरियै रहाओ। एक बिना दूजा नहीं जानै, घट घट अंतर पार ब्रह्म पिछानै। जो किछ करै सोई भल मानै, आदि अंत की कीमत जानै। कहो नानक तिस जन बलिहारी, जा कै हृदय वसै मुरारी। सूही महला पंजवा, गुर परमेसर।

जिस कृपा करे बसे तिस नेरा, जन की भूख तेरा नाम आहार, तू दाता प्रभ देवनहार। राम रमत संतन सुख माना, नानक देवन हार सो जाना। सुही महला पंजवा, बहती जात कदे दृष्णा तारत, मिथ्या मोह बंधे नित पारच। माधवे पज दिन नित रैणी, जन्म पदार्थ जीत हर सरणी रहाओ। करत बेकार दो कर चहारत, राम रतन रेतल नहीं तारत। परन पोखण संग औद बिहानी, जय जगदीश की गत नहीं जानी। सरण समरथ अगोचर स्वामी, उदर नानक प्रभ अंतर जामी। सूही महला पंजवा, साध संग तरै पै सागर। हर हर नाम सिमर रतनागर, सिमर सिमर जीवा नारायण। दुख रोग सोग सब से गुर पूरे, मिल पाप तजायण रहाओ। जीवन पदवी हर का नाओ, मन तन निर्मल साच सुवाओ। आठ पहर पार ब्रह्म ते आई है, पूर्व लिखत होए ता पाई है। शरण पए जप दीन दयाला, नानक जाचै संतर वाला। सुही महला पंजवा, घर का काज ना जानी रूड़ा, झूठे तंदे रचियो मूड़ा। जे

दर्शन कह लोचे सब कोई पूरे भाग प्राप्त होई रहाओ। श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई, महामोहनी दूता लाई प्रेम विशोहा करत गसाई। निर्दय जंतु तिस दया ना पाई, अनक जन्म बीतियन परमाई करवास ना देवे दुत्तर माई। दिन रहन अपना किया पाई, किस दोष ना दीजै कृत पवाई। सुन साजन संत जन पाई, चरण सरन नानक गत पाई। राग सुही महला पंजवां, कर चौथा एको ओंकार। सतगुर प्रसाद भली सुहावी छापरी, जा मैं गुण गाए कित ही कामना तौल हार। जित हर बिसराए रहाओ, अनद गरीबी साध संग जित प्रभ चित आए। जल जाओ एह बड़पना माया लपटाए, पीसन पीस ओड कामरी सुख मन संतोखाए। ऐसो राजना कितै काज जितने त्रिपताए। नगन फिरत रंग एक कै ओहो सोभा पाए, पाठ पटंबर बिरथिया जेह रच लोबाए। सब किश तुमरै हाथ प्रभ आप करे कराए, सास सास सिमरत रहा नानक दान पाए। सूही महला पंजवां, हर का संत प्राण तन तिसका पनिहारा। भाई मीत सुत सगल ते जीहू ते प्यारा। रहाओ केसा का कर बीजना, संत चौर टोलावो शीस निहारो चरण तल तूर मुख लावो। मिष्ट बचन बेनती करो दीन की न्याई, तज मान सरणी परो हर गुण निध पाई। अवलोकन पुनः पुनः करो जन का दरसार, अमृत बचन मन में सिंचाओ बंदाओ बार बार। चितवो मन आसा करो जन का संग मांगो, नानक तो प्रभ दया कर दास चरणी लागो। सुही महला पंजवां, जिन मोहे ब्रह्मांड खंड ताहू मैं पाओ। राख लेहो एहो बिखई जियो, देहो अपना नाओ रहाओ। जाते नाही को सुखी ता कै पाछे जाओ, छोड़ जाहे जो सगल कहो फिर लपटाओ। करहो कृपा करना पते तेरे हर गुण गाओ, नानक की प्रभ बेनती साध संग समाओ। राग सुही महला पंजवां, कर पंजवां पड़ताल एक ओंकार। सतगुर प्रसाद प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना, जप मन गोबिंद एक है अवर नहीं को लेखै। संत लाग मने छाड़ दुबदा की कुरिया रहाओ। निर्गुण हरिया सरगुण तरिया, अनक कोठरिया पिन पिन पिन पिन करिया। विच मन कोट वरिया निज मंदिर प्रिया, तहा आनंद करिया नै मरिया नै जरिया। कीर्तन जुरिया बहुविध फिरिया पर कौ हिरिया। बिखना किरिया अब साधु संग परिया, हर द्वारे खरिया दर्शन करिया। नानक गुर मिरिया बहुर ना फिरिया। सुही महला पंजवां, रास मंडल कीनो आखारा, सगलो साज रखियो पासारा रहाओ। बहुविध रूप रंग आपारा, पेखै खुशी भोग नहीं हारा। सब रस लैत बस्त निरारा, बरन चिहन नाही मुख नाम सारा। कहन न जाई खेल तुहारा, नानक रेण संत चरनारा। सुही महला पंजवां, तौ मैं आया सरनी आया, भरोसै आया कृपा आया। ज्यो पावै त्यों राखो स्वामी, मार्ग गुरे पठाया रहाओ। महादुत्तर माया जैसे पवन चुलाया, सुन सुन ही डराया करो त्रमराया। ग्रह अंध कु पाया पावक सगराया, गही ओढ़ साधाया नानक हरत आया। अब मैं पूरा पाया, राग सुही महला पंजवां, कर छेवां एक ओंकार। सतगुर प्रसाद सतगुर पास बेनंतियां, मिले नाम आधारा। तुठा सच्चा पात साहो ताप गया संसारा। भगता की टेक तू संता की ओट तू, सच्चा सिरजनहारा रहाओ।
ਸੱਚ ਤੇਰੀ ਸਾਮਗਰੀ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰਾ, ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ੀਨਿਆਂ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪਾਸਾਰਾ। ਤੇਰਾ ਰੂਪਿਆ ਗਮ ਹੈ ਅਨੂਪ ਤੇਰਾ ਦਰਸਾਰਾ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਰਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾ ਪਾਇਆ ਅਗਮਿਆ ਪਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਣਾ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰਾ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਸਤਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮਨਾਏ, ਜਿਸਨੋ ਹੋਏ ਦਇਆਲਾ ਸਾਈ ਭਗਤ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵੈ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ।

तू दयाल कृपाल कृपा निद मनसा पूर्ण हारा भगत तेरे सब प्राण पत प्रीतम तू भगतन का प्यारा तू अथाह अपार अति ऊंचा कोई अवर ना तेरी पत ए अरदास हमारी स्वामी विसर नाही सुखदाते दिन रहन सास सास गुण गावा जे स्वामी तुद पावा नाम तेरा सुख नानक मांगे साहिब तुठै पावा सूही महला पंजवा विसरै नाही जे तू कबहू सो थान तेरा केहा आठ पहर जे तुद ते आई निर्मल होवै देहा मेरे राम हां सो थान पालन आया खोजत खोजत पाया साध संग तिन सरनाई पाया रहाओ वेद पढ़े पढ़ ब्रह्म हारे एक तिल नहीं कीमत पाई साधक सिद्ध फिरै बिललाते ते पी मोहे माई दस अवतार राजे होए वरते महादेव अवधूता तिन पी अंत न पायो तेरा लाए थके बिपूता सहज सुख आनंद नाम रस हर संति मंगल गाया सफल दर्शन भेट्यो गुरु नानक ता मन तन हर हर त्याया सुही महला पंजवा कर्म धर्म पाखंड जो दिसै तिन जम जागाती लूटै निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमख सिमरत जित छूटै संतहो सागर पार उतरिया जे को बचन कमावै संतन का सो गुर प्रसादी तरिया रहाओ कोट तीर्थ मजन इस नाना इस कल में मैल भरी जै साध संग जो हर गुण गावै सो निर्मल कर ली जै वेद कतेब सिमरत सब सास्त इन पढ़िया मुक्त ना होई एक अखर जो गुरमुख जापै तिसकी निर्मल सोई खत्री ब्राह्मण सूद बैस उपदेश चौ वर्ण कौ सांझा गुरमुख नाम जपै उदरै सो कल मैं कड़कट नानक माजा सूही महला पंजवा जो किश करै सोई प्रमानै ओए राम नाम रंग राते तिनकी शोभा सबनी थाई जिन प्रभ के चरण पराते मेरे राम हर संतां जीवट ना कोई भगतां बने आई प्रभ अपने स्यों जल थल मैयल सोई रहाओ कोट अपराधी संत संग उदरे जमता कै निर्ण ना आवै जन्म जन्म का विछड़िया होवै तन हर स्यों आन मिलावै

आठ पहर प्रभ अपना त्याई है, गुर प्रसाद पौ तरी है, आप त्याग होई है सब रेणा, जीवत्या इं मरी है, सफल जन्म तिसका जग पीतर, साध संग नाव जाप।

तिन मुख नाम न उपजे, दूजे व्यापे चोर जियो। मूल न बुझे अपना, से पशुआ से टोर जियो। नित नित खुशियां मन करे, नित नित मंगे सुख जियो। करता चित न आवई, फिर लगे दुख जियो। सुख दुख दाता मन वसै, ते तन कैसी भुख जियो। बाकी वाला तलबीए, सिर मारे जंदार जियो। लेखा मंगे देवना, पुछे कर बिचार जियो। सच्चे की लिव उबरै, बख्शे बख्शनहार जियो। अन को की जय मित्रा, खाक रलै मर जाए जियो। बहु रंग देख पुलाया, पुल पुल आवै जाए जियो। नजर प्रभु ते छुट्टी है, नजरी मेल मिलाए जियो। गाफल ज्ञान में होनिया, गुरबिन ज्ञान ना पाल जियो। खिंचो तान में गुची है, बुरा भला दोए नाल जियो। बिन शब्द पैरते आ, सब जो ही जमकाल जियो। जिन कर कारण तारे आ, सब सहदे आधार जियो। सो क्यों मनो विसारी है, सदा सदा दातार जियो। नानक नाम ना विसरै, निदारा आधार जियो। सुही महला पहला, काफी कर दसवां एक ओंकार। सतगुर प्रसाद मानस जन्म दुलंब, गुरमुख पाया मन तन होए चुलंब। जे सतगुर पाया चलै जन्म सवार, वखर सच लै पथ पाए दरबार। सतगुर शब्द पै रहाओ, मन तन सच सलाहे। साचे मन पाया, लाल रत्ता मन मानिया, गुरपूरा पाया। हाँ जीवा गुण सारे अंतर, तू वसै मन माए, सहजे रस रसै। मूर्ख मन समझाए, आखो के तड़ा, गुरमुख हर गुण गाए। रंग रंगे तड़ा, नित नित हृदय संभाल। प्रीत में अपना जे चलै गुण नाल, नाही दुख संतापना। मन मुख परम पुलाना, ना तिस रंग है। मरसी होए विडाणा, मन तन भंग है। गुर की कार कमाए, लाहा कर आणिया। गुरबाणी निर्बाण शब्द पछाणिया। एक नानक की अरदास, जे तुद पावसी मैं दीजै नाम निवास। हर गुण गावसी, सुही महला पहला। ज्यों आरन लोहा पाए, पन कढ़ाइयै त्यों साक्त जोनी पाए। पवै पवाइयै बिन बूझे सब दुख, दुख कमावना। हाँ मैं आवै जाए, परम पुलावना। रहाओ तू गुरमुख रखनहार, हर नाम ते आई है। मेले तुझे रजाए, शब्द कमाई है। तू कर वेखै आप, देह सो पाई है। तू देखै थापो थाप, दर भी नाई है। देही होवग खाक, पमन उडाई है। एहो किथै कर औताक, महल ना पाई है। देहो दीवी अंधकोर, कब मुहाई है। गर्भ मुसै कर चोर, किस रू आई है। गुरमुख चोर ना लाग, हर नाम जगाई है। शब्द निवारी आग, जोत दी पाई है। लाल रतन हर नाम, गुरसुरत बुझाई है। सदा रह निकाम, जे गुरमत पाई है। आराध्य है हर नाम, मन वसाई है। नानक मेल मिलाए, जे तुद पाई है। सूही महला पहला, मनो ना नाम विसार। अहन सत्याई है, जो राखे कृपा तार, तिवै सुख पाई है। मैं अंदले हर नाम, लखटी टोहनी। रहो साहिब की टेक, ना मोह मोहनी। रहाओ जै देखो तै नाल, गुर देखालिया। अंतर बाहर पाल, शब्द निहालिया। सेवी सतगुर पाए, नाम निरंजना। तुद पावे तिवै रजाए, परम पौ पंजना। जन्मत ही दुख लागे, मरना आए कै। जन्म मरण परवान, हर गुण गाए कै। हौ नाही तू होवे, तुद ही साजिया। आपे थापो थाप, शब्द निवाजिया।
देही भस्म रुलाए ना जापी कह गया आपे रया समाए सो विस्माद पया। तू नाही प्रभ दूर जाने सब तू है गुरमुख वेखा दूर अंतर पी तू है। मैं दीजै नाम निवास अंतर सांत होए गुण गावै नानक दास सतगुर मत दे। राग सुही महला तीजा कर पहला अष्टपदियां एको ओंकार सतगुर प्रसाद। नामै ही ते सब किश होवा बिन सतगुर नाम ना जापै। गुर का शब्द महारस मीठा बिन चाखे साध ना जापै। कौडी बदलै जन्म गवाया चीनस नाही आपै। गुरमुख होवै ता एको जाणै हो मैं दुख ना संतापै। बलिहारी गुरे अपने विटाओ जिन साचे सिउ लिवलाई शब्द चीन आत्म पर गासिया सहजे रिया समाई। रहाओ गुरमुख गावै गुरमुख बूजै गुरमुख शब्द बीचारे जियो पिंड सब गुरते उपजै गुरमुख कारज सवारे। मनमुख अंधा अंध कमावै बेखटे संसारे माया मोह सदा दुख पाए बिन गुर हथ प्यारे। सोई सेवक जे सतगुर सेवे चालै सतगुर पाए साचा शब्द सिबत है साची साचा मन वसाए। सच्ची बाणी गुरमुख आखै हो मैं विचों जाए आपे दाता कर्म है साचा साचा शब्द सुनाए। गुरमुख काले गुरमुख खट्टे गुरमुख नाम जपाए सदा अलिप्त साचा रंग राता गुर कै सहि सुभाए। मनमुख सद ही कूड़ो बोलै बिख बीजै बिख खाए जमकाल बादा तृष्णा दादा बिन गुर कमन छड़ाए। सच्चा तीर्थ जित सत सर नावण गुरमुख आप बुझाए अठ सठ तीर्थ गुर शब्द दिखाए तितना तै मल जाए। सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल नामल लगे ना लाए सच्ची सिफत सच्ची साला पूरे गुर ते पाए। तन मन सब किश हर तिस केरा द्रुवत कहन ना जाए हुक्म होवै ता निर्मल होवै। हम मैं विचों जाए गुर की साखी सहजे चाखी तृष्णा यगन बुझाए। गुर कै शब्द राता सहजे माता सहजे रया समाए। हर का नाम सत कर जाने गुर कै पाए प्यारे सच्ची वडियाई गुर ते पाई सच्चे नाए प्यारे। एको सच्चा समय वरतै विरला को विचारे आपे में लय ता बक्से सच्ची भगत सवारे। सबो सच सच सच वरतै गुरमुख कोई जाने जमन मरना हुक्मो वरतै गुरमुख आप पछाणे। नाम ते आए ता सतगुर पाए जो इच्छा सो फल पाए। नानक तिसदा सब किश होवै जे विचों आप गवाए। सूही महला तीजा काया कामन अत सवाले ओ पिर वसै जिस नाले पिर सच्चे तेसदा सुहागण गुर का शब्द संभाले। हर की भगत

काया अंदर सब किश वसै खंड मंडल पाताला, काया अंदर जग जीवन दाता वसै सबना करे प्रतपाला, काया का मन सदा सुहेली गुरमुख नाम समाला, काया अंदर आपे वसै अलख ना लखया जाई, मन मुख मुग्ध बूझै नाही बाहर पालन जाई, सतगुर सेवे सदा सुख पाए सतगुर अलख दिता लिखाई, काया अंदर रतन पदार्थ भगत परे भंडारा, इस काया अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बाजारा, इस काया अंदर नाम नवनिध पाई है गुर कै शब्द विचारा, काया अंदर तोल तुल आवै आपे तोलनहारा, एहो मन रतन जवाहर माणक तिसका मोल अफारा, मोल कित ही नाम पाई है नाही नाम पाई है गुर बिचारा, गुरमुख होवै सो काया खोजै होर सब परम पुलाई, जिसनो दे सोई जन पावै होर क्या को करे चतराई, काया अंदर पाओ पाओ वसै गुर प्रसादी पाई, काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा सब ओपत जित संसारा, सच्चा अपना खेल रचाया आवागौन पसारा, पूरे सतगुरे आप दिखाया सच नाम निस्तारा, सा काया जो सतगुर सेवै सच्चा आप सवारी, विण नावै दर ढोई नाही ता जम करे खुवारी, नानक सच वडियाई पाए जिसनो हर कृपा धारी, राग सुही महला तीजा कर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

ओए अमृत भरे भरपूर है ओना तिल ना तुमाए गुणकारी गुण संगर अवरा उपदेशन सेवड़ भागी जे।

भौजल तरीय जे थी वह कर्म लिखिया सा गुर से विजय अमृत पीजा जिसला वह सहित्यानो नानक शरण पया हरिद्वार हों बलबल सद कुर्बानो सुन बावरे मत जाने प्रभ मैं पाया सुन बावरे थियो रेण जिनी प्रभ त्याया जिन प्रभ त्याया तिन सुख पाया वडभागी दर्शन पाई है थियो न माना सद कुर्बाना सगलाया मिटाई है ओह तन भाग सुदा जिन प्रभ लद्दा हम तिस पाया विचाया नानक दीन सरन सुख सागर राख लाज अपनाया सूही महला पंजवां हर चरण कमल की टेक सतगुर दित्ती तुसके बलराम जियो हर अमृत भरे भंडार सब किश है कर तिसके बलराम जियो बाबल मेरा वड समर्था करण कारण प्रभारा जिस मृत दुख कोई ना लागे पौजल पार उतारा आद जुगाद भगतन का राखा उस्तत कर कर जीवा नानक नाम महारस मीठा अंदन मंतन पीवा हरे आपे लय मिलाए क्यों विछोड़ा थी वही बलराम जियो जिसनो तेरी टेक सो सदा सजी वही बलराम जियो तेरी टेक तुझे ते पाई साचे सृजनहारा जिसते खाली कोई नाही ऐसा प्रभु हमारा संत जना मिल मंगल गाया दिन रैन आस तुम्हारी सफल दर्श भेटिया गुरपुरा नानक सद बलिहारी संभलिया सच थान मान महत सच पाया बलराम जी ओ सतगुर मिलिया दयाल गुण अबनासी गाया बलराम जी ओ गुण गोविंद गाओ नित नित प्राण प्रीतम स्वामिया शुभ दिवस आए गह कंठ लाए मिले अंतर जमिया सत संतोख वजह वाजे अनहदा चुनकारे सुन पै बिनासे सगल नानक प्रपुरख करण हारे उपजे

ठाकुर पाणी सा गुणवंती तिन्ही सब रंग माणा, नानक की तर तू है ठाकुर तू नानक का माणा। हम वारी वन्या कोली वन्या तू पर्वत मेरा ओला राम। हम बल जाई लख लख लख बरिया जिन परंपर दा खोला राम। मिटे अंधारे तजे बेकारे ठाकर से मन माना, प्रभ जी पानी पई निकाणी सफल जन्म परवाना। पई अमोली पारा तोली मुक्त जुगत दर खोला, कहो नानक कहो निरपा होई सोप्रभ मेरा ओला। सोही महला पंजवा साजन पुरख सतगुर मेरा पूरा, तिस बिन अवर न जाना राम। मात पिता भाई सुत बंधप जी प्राण मन पई सोप्रभ मेरा ओला। सोही महला पंजवा साजन पुरख सतगुर मेरा पूरा, तिस बिन अवर न जाना राम। मात पिता भाई सुत बंधप जी प्राण मन भाणा राम। जियो पिंड सब तिसका दिया सर्व गुणा परपूरे, अंतर जामी सोप्रभ मेरा सर्वरया परपूरे। ताकि सरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा, सदा सदा प्रभ कौ बलिहार है नानक सतगुर बाणा। ऐसा गुर वड भागी पाईए जित मिले है प्रभ जापै राम। जन्म जन्म के किल विखे उतरे हर संत धूड़ी नित नापै राम। हर धूड़ी नाई है प्रभु ते आई है, बाहुड़ जोड़ ना आई है। गुरचरणी लागे परम पौ भागे मन चंदिया फल पाई है। हर गुण नित गाए नाम ते आए फिर सोग नाही संतापै, नानक सो प्रभ जी का दाता पूरा जिस परतापै। हर हरे हर गुण निधे हर संतन कै वसियाए राम, संत चरण गुर सेवा लागे तिन्नी परम पद पाए राम। परम पद पाया मिटाया हर पूर्ण कृपा तारी, सफल जन्म होवा पौ भागा हर भेटिया एक मुरारी। जिसका साथ तिन्ही मिल लिया ज्योति ज्योत समाया, नानक नाम निरंजन जपिया मेरा सतगुर सुख पाया। गाओ मंगलो नित हर जनो पुनी इच सबाई राम, रंग रते अपने स्वामी सेती मरे नया वै जाई राम। अबनासी पाया नाम ते आया सगल मनोरथ पाए, सांत सहज आनंद कनेरे गुरचरणी मन लाए। पूर रहया कटकट अबनासी थान थनंतर साई, कहो नानक कार्य सगले पूरे गुरचरणी मन लाई। सूही महला पंजवा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी, नेत्र देखै दर्श तेरा राम। लाख जेहवा देहो मेरे प्यारे मुख हरिया राधे मेरा राम। हरिया राधे जम पंथ साधे दुख ना व्यापै कोई, जल थन मैयल पूर्ण स्वामी।

भला संयोग मूर्त पल साचा अब चल निवर खाई जन नानक प्रभय दयाला सर्व कला बने आई आनंदा वजह नित वाजे पार ब्रह्म मन उठा राम गुरमुखे सच करनी सारी बिरसे परम्पै झूठा राम अनहद बाणी गुरमुख वखाणी जस सुन सुन मंतन हरिया सर्व सुखा तिस ही बन आए जो प्रभ अपना करया घर मैं नवनिध परे भंडारा राम नाम रंग लागा नानक जन प्रभ कदे न विसरै पूर्ण जाके पागा।

नानक कंत ना जाननी से क्यों अग जलाहे भावे जीवो कै मरो दूरों ही पज जाहे पौड़ी। तुद दुख सुख नालो पाया लेख करते लिखिया नावै जेवड़ होर दात नाही तिस रूप ना रिखिया। नाम अखुट निधान है गुरमुख मन वसिया कर कृपा नाम देवसी फिर लेख ना लिखिया। सेवक पाए से जन मिले जिन हर जप जपया श्लोक महला दूजा। जिन्नी चलन जानिया से क्यों करे विथार चलन सार न जाननी का इसवर नहार महला दूजा। रात कारण तन संची पल के चलन होए नानक नाल न चले फिर पछतावा होए महला दूजा। बद्दा चट्टी जो परे ना गुण ना उपकार सेती खुशी सवारी है नानक कारज सार महला दूजा। मन अठ तरफ ना जिपई जे बहुता काले तरफ जने सत पाओ दे जन नानक शब्द विचारे पौड़ी। करते कारण जिन किया सो जाने सोई आपे सृष्टि उपाइया न आपे फनगोई। जुग चारे सब पव थकी किन कीमत होई। सतगुर एक विखालिया मन तन सुख होई नानक गुरमुख सदा सलाही है करता करे सो होई। सलूक महला दूजा जिन्ना पाओ तिन नाहे पाओ मुच पाओ ने पव्या नानक हो पटंतरा तिदी बन गया महला दूजा। तुर दे कौ तुरदा मिले उड़ते कौ उड़ता जीवते कौ जीवता मिले मुए कौ मुआ। नानक सोसा लाही है जिन कारण किया पौड़ी। सच त्यायन से सच्चे गुर शब्द विचारी हम मैं मार मन निर्मला हर नाम और तारी। कोठे मंडो माणिया लग पए गवारी जिन किए तिसे ना जाननी मनमुख गोबारी। जिस बुझाए सो बुझ सी सच्चा क्या जंत विचारी। श्लोक महला तीजा कामन तो सिंगार कर जै पहला कंत मनाए मत से जै कंत न आवई एवै बिरथा जाए। कामन पिर मन मानिया तो बनिया सिंगार किया तो प्रवान है जा सौ तरे प्यार। पाओ सिंगार तंबोल रस भोजन पाओ करे तन मन सौपे कंत कहो तो नानक भोग करे। महला तीजा काजल फूल तंबोल रस ले तन किया सिंगार से जय कंत ना आयो ए वै पया विकार। महला तीजा तन पिर एह ना आखियान बहन इकट्ठे होए एक जोत दोए मूर्ति तन पिर कही है सोए। पौड़ी पै बिन भगत ना हो वही नाम न लगे प्यार सतगुर मिलया पऊ पजै पै पाए रंग सवार। तन मन रत्ता रंग सिया हों मैं तृष्णा मार मन तन निर्मल अत सोहना पेटिया कृष्ण मुरार। पाओ पाओ सब तिसदा सो सच वरतै संसार। सलोक महला पहला वाहो खसम तू वाहो जिन रच रचना हम किए सागर लहर समुंद सर वेल वर्ष वराहो। आप खड़ोवै आप कर आप पीना या पाहो गुरमुख सेवा थाए पवै उन मन तत् कमाहो। मसक तलहो मजूरिया मंग मंग खसम दराहो नानक पुर दर वे प्रवाह तव दरूणा नाहे को सच्चा वे प्रवाहो। महला पहला उज्जल मोती सोहने रत्ना नाल जुड़न तिन जन वैरी नानका जे बुढ़े थिए मरन। पौड़ी हर साला ही सदा सदा तन मन सब शरीर गुर शब्दी सच पाया सच्चा गहर गंभीर। मन तन हिरदै रव रहया हर हीरा हीर
जन्म मरण का दुख गया फिर पवै ना फीर, नानक नाम सलाहे तू हर गुणी गहीर। श्लोक महला पहला, नानक हो तन जाल जिन जलिया नाम विसारिया पौंदी जाए पराल, पिछे हथ ना अंबड़ै तित निवंदै ताल। महला पहला, नानक मन के काम फिटिया गणत ना आवही, किती लहा साम जा बख्से ता धक्का नहीं पौड़ी। सच्चा अमृत लायोन कर सच फुरमान, सदा निःचल रव रहया सो पुरख सुजान। गुर प्रसादी सेवी सच शब्द निशान, पूरा थाट बनाया रंग गुरमत मान। आगमा गोचर लख है गुरमुख हर जान। श्लोक महला पहला, नानक बदरा मालका।

कहो कबीर मैं सो गुर पाया, जाका नाओ बबे को। राग सूही बाणी श्री रविदास जीओ की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सहकी सार सुहागन जान है, ताजा मान सुखरलिया मन है, तन मन दे न अंतर रख है, अवरा देखना सुने अपख है, सो कत जा

क्या तू सोया जाग आना, तैं जीवन जग सच कर जाना रहाओ। जिन जियो दिया सो रिजक अंबर आवै, सब कट पीतर हाट चलावै। कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम समार सवेरा। जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, सांझ परी दह दिस अंधियारा। कह रवदास निदान दिवाने, चेतस नाही दुनिया फन खाने। सूही उचे मंदर साल रसोई, एक करी फुन रहन ना होई। एहो तन ऐसा जैसे कास की टाटी, जल गयो घास रल गयो माटी। रहाओ भाई बंद कुटंब सहेरा, ओए पी लागे काड़ सवेरा। घर की नार उरै तन लागी, ओ तो पूत पूत कर भागी। कह रवदास।

एको ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद। राग बिलावल महला पहला चौपदे कर पहला तू सुल्तान कहा हो मिया तेरी कमन वडाई जो तू दे सो कहा स्वामी मैं मूर्ख कहन न जाई तेरे गुण गावा देह बुझाई जैसे सच मैं रहो रजाई रहाओ जो किश होवा सब किश तुझते तेरी सब असनाई तेरा अंत न जाना मेरे साहेब मैं अंधले क्या चतराई क्या हूं कथी कथे कथ देखा मैं अकथ ना कथ ना जाई जो तुद पावे सोई आखा तिल तेरी वड्याई एते कुकरह बेगाना पौका स्तंताई भगतहीण नाक जे होएगा ता खसमै नाओ ना जाई। बिलावल महला पहला मन मंदर तन वेस कलंदर कठी तीर्थ नावा एक शब्द मेरा प्राण बस्त है बाहुड़ जन्म ना आवा

जी जंत सब सरण तुम्हारी, सर्व चिंत तुद पासे, जो तुद भावै सोई चंगा। एक नानक की अरदासे, बिलावल महला पहला। आपे शब्द आपे निशान, आपे सुरता आपे जान, आपे कर कर वेखै तान, तू दाता नाम प्रमाण। ऐसा नाम

एक ओंकार सतगुर प्रसाद बोलो भैया राम नाम पतत पावनो हर संत भगतारनो हर भरपुरे रहा जल थले राम नाम नित गाइये हर दुख बिसारनो रहाओ हर किया है सफल जन्म हमारा हर जपया हर दुख बिसार नहारा गुर भेटिया है मुक्त दाता हर की हमारी सफल जाता मिल संगति गुण गावनो मन राम नाम करया सा पाओ दूजा बिनस बिनासा विच आसा होए निरासी सो जन्म लिया हर पासी कोई राम नाम गुण गावनो जन नानक तिस पग लावनो राग बिलावल महला पंजवा चौपदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद नदरी आवै तिस्यो मोह क्यों मिलिया प्रभ नासी तोहे कर कृपा मोय मार्ग पावो सात संगत कै अंचल लावो क्यों तरियै बिखिया संसार सतगुर बोहित पावै पार रहाओ पवन चुलारे माया।

हो मैं पचे दीप को देख पतंगा, सगल सिंगार करे नहीं पावै, जा होए कृपाल ता गुरु मिलावै। हाँ फिरो उदासी मैं करतन दसाया, निर्मोल हीरा मिले ना उपाया। हर का मंदिर तिसमें लाल, गुर खोलिया पड़दा देख पही निहाल। जिन चाखिया तिस आया साध, जो गुंगा मन में मिसमाद। आनंद रूप सब नदरी आया, जन नानक हर गुण अक्स माया। बिलावल महला पंजवा, सर्व कल्याण किए गुरुदेव, सेव के अपनी लायो सेव। बिगन ना लागे जप अलाख्या पेव, तरत पुनीत पई गुण गाए, दुरत गया हर नाम ते आए रहाओ। सबनी थाई रव्या आप, आद जुगाद जाकावड़ प्रताप। गुर प्रसादना होए संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे। निर्विघ्न होए सब थाई बूठे, सब सुख पाए सदगुर तूठे। पार ब्रह्म प्रभ रखवाले, जिथे किथे दिसे नाले। नानक दास खसम प्रतपाले, बिलावल महला पंजवा। सुख निदान प्रीतम प्रभ मेरे, अगणत गुण ठाकर प्रभ तेरे। मोहे अनाथ तुमरी सरनाई, कर कृपा हर चरण ते आई। दया करो बसो मन आए, मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए रहाओ। प्रभ चित आवे ता कैसी भीड़, हर सेवक नाही जम पीड़। सर्व दुख हर सिमरत नसे, जा कै संग सदा प्रभ बसे। प्रभ का नाम मंतन आधार, बिसरत नाम हो तन शार। प्रभ चित आए पूर्ण सब काज, हर बिसरत सब का मोहताज। चरण कमल संग लागी प्रीत, बिसर गई सब दुर्मत रीत। मंतन अंतर हर हर मंत, नानक भगतन कै कर सदा आनंद। राग बिलावल महला पंजवा, कर दूजा यानड़िए कै कर गावना। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे। मैं मन तेरी टेक अवर स्याणपा बिरथिया प्यारे, राखण कौ तुम एक रहाओ। सतगुर पूरा जे मिले प्यारे, सो जन होत निहाला। गुर की सेवा सो करे प्यारे, जिसनो होए दयाला। सफल मूर्त गुरदेव स्वामी, सर्व कला परपूरे। नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, सदा सदा हजूरे। सुन सुन जीवा सोए तिना की, जिन अपना प्रभ जाता। हर नाम आराधे नाम वखाणे, हर नाम में ही मन राता। सेवक जन की सेवा मांगे, पूरे कर्म कमावा। नानक की बेनंती स्वामी, तेरे जन देखण पावा। वडभागी से काढ़िए प्यारे, संत संगत जिन्ना वासो। अमृत नाम आराधिए निर्मल, मने होवे परगासो। जन्म मरण दुख काटिए प्यारे, चूके जमकी काणे। तना प्राप्त दर्शन नानक, जो प्रभ अपने पाणे। ऊंच अपार

अनेरे पशु प्रेत मुगत कवतारे पान पारो तारै नानक दास तेरी सरनाई सदा सदा बलिहार है। बिलावल महला पंजवां बिखै वन फीका त्यागरी सखिए नाम महारस पियो बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली सुखी ना होवत जियो। मान महात्मा सकत ही काई सादा दासी थियो नानक से दर शोभावंते जो प्रभ अपने कियो। हर चंदौरी चित प्रम सखिए मृग तृष्णा द्रुम छाया चंचल संगना चालती सखिए अंत तज जावत माया। रस भोगण अत रूप रस माते इन संग सुख नाम पाया तन तन हर सा जन सखिए नानक जिन्नी नाम ते आया। जाय बसो वट पागणी सखिए संता संग समाई है तह दुख ना भूख ना रोग व्यापै चरण कमल लिवलाई है। तह जन्म ना मरण ना आवन जाना निश्चर सरणी पाई है प्रेम बिछो ना मोह व्यापै नानक हर एक त्याई है। दृष्ट तार मन बेदया प्यारे रतड़े सह सुभाए से सुहावी संग मिल प्रीतम अंध मंगल गुण गाए। सखी सहेली राम रंग राती मन तन इच पुजाए नानक अचरज अचरज स्यो मिलिया कहना कछु ना जाए। राग बिलावल महला पंजवां कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक रूप सगलो पा सारा आपे बणजे आप ब्योहारा ऐसो ज्ञान बिरलोई पाए जत जत जाइए तत दृष्टाए रहाओ अनक रंग निर्गुण एक रंगा आपे जल पा आप ही तिरंगा आप ही मंदिर आपे सेवा आप ही पुजारी आप ही देवा आपे जोग आप ही जुगता नानक प्रभ सद ही मुक्ता। बिलावल महला पंजवा आपो पावन आप सुधरना आप करावन दोष ना लेना आपन बचनो आप

आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही घट घट आप लिपना, आपे अवगत आप संगरचना, कहो नानक प्रभ के सब जचना। बिलावल महला पंजवा, पूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे हृदय गुरचरण प्यारे। रहाओ काम क्रोध लोभ मोहे मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुख सुख करत जन्म फुरमुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया, अग्न सागर बूढ़ संसारा, नानक बहा पकर सतगुर निस्तारा। बिलावल महला पंजवा, तन मन तन अर्पो सब अपना, कमल सुमत जित हर हर जपना, कर आसा आयो प्रभ मांगन, तो पेखत सोभा मेरा अंगन। रहाओ अनक जुगत कर बहुत विचारो, साध संग इस मन उधारो, मत बुद्ध सुरत नाही चितराई, ता मिलिया जा ले मिलाई, नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सफल सो आया। बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ ना माया, साध संग सब दुख मिटाया, रव रहया प्रभ सब मैं आपे, हर जप रसना दुख ना व्यापे। रहाओ तिखा भूख बहुत तप्त व्यापिया, शीतल पय हर हर जस जापिया, कोट जतन संतोख ना पाया, मंत्र बताना हर गुण गाया, देहो भगत प्रभ अंतर जामी, नानक की बेनंती स्वामी। बिलावल महला पंजवा, गुरपुरा वडपागी पाई है, मिल साधु हर नाम ते आई है, पार ब्रह्म प्रभ तेरी सरना, किलवे काटे पज गुर के चरना। रहाओ अवर कर्म सब लोकाचार, मिल साधु संग होए उधार, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, जपिए नाम जित पार उतारे, जन नानक को प्रभ कृपा करिए, साधु तूर मिले निस्तरिए। बिलावल महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय मैं चीना, सगल मनोरथ पूर्ण आसीना, संत जना का मुख उज्जल कीना, कर कृपा अपना नाम दीना। रहाओ अंध कूपते कर गै लीना, जय जय कार जगत प्रगटीना, नीचा ते ऊंच ऊन पूरीना, अमृत नाम महारस लीना, मन तन निर्मल पाप जल खीना, कहो नानक प्रभ भए परसीना। बिलावल महला पंजवा, सगल मनोरथ पाई है मीता, चरण कमल स्यों लाइया चीता, हौ बलिहारी जो प्रभु ते आवत, जलन बुझै हर हर गुण गावत। रहाओ सफल जन्म होवत वडभागी, सा संग्राम लिव लागी, मत पत धन सुख सहज आनंदा, एक निमख ना विसरो परमानंदा, हर दर्शन की मन प्यास कनेरी, पंत नानक शरण प्रभ तेरी। बिलावल महला पंजवा, मोहे निर्गुण सब गुणे बेहूना, दया तारे अपना कर लीना, मेरा मन तन हर गोपाल सुहाया, कर कृपा प्रभ घर में आया। रहाओ भगत वछल पै कट नहारे, संसार सागर अब उतरे पारे, पतत पावन प्रभ बिरद वेद लेखिया, पार ब्रह्म सो नैनो पेखिया, सासंग प्रगटे नारायण, नानक दास सब दुख पलायण। बिलावल महला पंजवा, कवन जाने प्रभ तुमरी सेवा, प्रभ अविनाशी लाख्या पेवा, गुण बेअंत प्रभ गैर गंभीरे, ऊंच महल स्वामी प्रभ मेरे, तू अपरंपर ठाकुर मेरे। रहाओ एक बिन नाही को दूजा, तुम ही जानो अपनी पूजा, आपो कछु न होवत पाई, जिस प्रभ देवै सो नाम पाई, कहो नानक जो जन प्रभ पाया, गुण निदान प्रभ तिन्ही पाया। बिलावल महला पंजवा, मात गर्मे हाथ दे राखिया, हर छोड़ बिख्या फल चाखिया, भज गो बिंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए संगारे मूड़े, तब तन बिन सजाए बेहाल। रहाओ तन मन तन अपना कर थापिया, करन हर एक निमख ना जापिया, महा मोह अंध कूप परिया, पार ब्रह्म आया पटल बिसरिया,
ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਪ੍ਰਭ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਆ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧ ਭਾਈ, ਨਾਨਕ ਹੋਵਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਹਾਈ। ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਘਣੇ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਅਨਕ ਗੁਣਾ ਜਾਂ ਕੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਗਣੇ ਰਹਾਓ। ਸਗਲ ਸਰੰਜਾਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ, ਭਏ ਮਨੋਰਥ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪੇ। ਅਰਥ ਧਰਮ ਕਾਮ ਮੋਹ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਪੂਰੀ ਪਈ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਵਿਧਾਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ, ਕਰ ਆਇਆ ਪੂਰੇ ਗੁਰਿਆਣਿਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ।

देव सुहनी साध के बीजन टोलावाओ रहाओ। अमृत गुण संत बोलते सुन मने पीलावाओ। ओवा रस में सांत तृप्त होए बिख्या जलन बुझावाओ। जब भगत करे संत मंडली तिन मिल हर गावाओ। करो नमस्कार भगत जान तूर मुख लावाओ। उठत बैठत जपो नाम एहो कर्म कमावाओ। नानक की प्रभ बेनती हर शरण समावाओ। बिलावल महला पंजवा एहो सागर सोई तरै। जो हर गुण गाए साध संगत कै संग वसै। वडभागी पाए सुन सुन जीवै दास तुम बाणी जन आखी। प्रगट पई सब लो मैं सेव की राखी रहाओ। अग्न सागर ते काढ़िया प्रभ जलन बुझाई। अमृत नाम जल संचिया गुर पै सहाई। जन्म मरण दुख काटिया सुख का थान पाया। काटी सिलक प्रभ मोह की अपने प्रभ पाया। मत कोई जानो अवर कश सब प्रभ के हाथ। सर्व सुख नानक पाए संग।

राम राज रामदास पुर कीने गुरुदेव रहाओ सदा सदा हर त्याई है किश बिघन ना लागै नानक नाम सलाही है पै दुश्मन भागै। बिलावल महला पंजवां मन तन प्रभ आराधिया मिल साध समागै उचरत गुण गोपाल जस दूर ते जम भागै। राम नाम जो जन जपै आंदन सज जागै तंत मंत न जो है तित ताख न लागै रहाओ। काम क्रोध मद मान मोह बिनसे अनरागै आनंद मगन रस राम रंग नानक सरनागै। बिलावल महला पंजवां जी जूत वस प्रभु कै जो कह सो करना पय प्रसन्न गोपाल राय पौ किछ नहीं करना।

हाथ और आओ जीवन का दाता एक है बिया नहीं होर। नानक की बेनतिया मैं तेरा जोर। बिलावल महला पंजवा। मीत हमारे साजना राखे गोविंद, निंदक मृतक होए गए तुम हो निचिंद। रहाओ सगल मनोरथ प्रभ किए पेटे गुरुदेव, जय जयकार जगत में सफल जा की सेव। ऊच अपार गणत हर सब जी जिस हाथ, नानक प्रभ शरणागति जत कत मेरे साथ। बिलावल महला पंजवा। गुरपुरा आरा दया होए कृपाल, मार्ग संत बताया टूटे जमजाल। दुख भूख संसा मिटया गावत प्रभ नाम, सहज सुख आनंद रस पूर्ण सब काम। रहाओ जलन बुझी शीतल पए राखे प्रभ आप, नानक प्रभ शरणागति जा कावड़ प्रताप। बिलावल महला पंजवा। तरत सुहावी सफल थान पूर्ण पए काम, पौ नाठा प्रभ मिट गया रव्या नित राम। साज जना कै संग बस्त सुख सहज विश्राम, साई कड़ी सुलखणी सिमरत हर नाम। रहाओ प्रगट भय संसार मैं फिरते पहनाम, नानक ते शरणागति कड़कड़ सब जान। बिलावल महला पंजवा। रोग मिटाया आप प्रभ उपजा सुख सात, वट प्रताप अचरज रूप हर की नी।

सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल रख मन माही, ताकि शरण पर्यो नानक दास, जाते उपर को नाही। बिलावल महला पंजवा, सदा सदा जपिए प्रभ नाम, जरा मरा कहीं दुख न व्यापै, आगै दरगै पूर्ण काम। रहाओ आप त्याग परिय नित सरणी, गुर ते पाइय हो निदान, जन्म मरण की कटिया फांसी, साची दरगै का निशान। जो तुम करहो

तन तन कलातो सब देख अब महन्ना, बिन नावै किछ संग ना जाना रहाओ, कीचै रस भोग खुशियां मन केरी, तन लोका तन पसमै टेरी, खाकू खाक रलै सब फैल, बिन शब्द नहीं उतरै मैल, गीत राग कंताल से कूरे, त्रिगुण उपजे बिन से दूरे, दूजी दुर्मत दर्द ना जाए, छूटै गुरमुख दारू गुण गाए, तोती उजल तिलक गल वाला, अंतर क्रोध पड़े नाटशाला, नाम विसार माया मद पिया, बिन गुर भगत नाही सुख थिया, सूकर स्वान गर्दप मंजारा, पशु मलेश नीचंडाला, गुर ते मोह फेरे तन जोन पवाईऐ, बंधन बांध्या आई जाइऐ, गुर सेवा ते लह पदार्थ, हृदय नाम सदा कृतार्थ, साची दरगह पूछना होए, माने हुक्म सीजै दरस होए, सतगुर मिलै तां तिसको जाणै, रहर जाई हुक्म पछाणै, हुक्म पछाण सच्चै दरवास, काल बिकाल शब्द पै नास, रह अतीत जाणै सब तिसका, तन मन अर्पै है ओ जिसका, ना ओ आवै ना ओ जाए, नानक साचे साच समाए, बिलावल महला तीजा, अष्टपदी कर दसवां एक ओंकार, सतगुर प्रसाद जग कौआ, मुख चुंच ज्ञान, अंतर लोभ झूठे मान, बिन नामै पाज रह निदान, सतगुर सेव नाम वसै मन चीत, गुर भेटे हर नाम चितावै, बिन नामै होर झूठ प्रीत रहाओ, गुर कहे आसा कार कमावो, शब्द चीन सहज कर आवो, साचै नाय वडाई पावो, आप न बूझै लोक बुझावै, मन का अंधा अंध कमावै, दर कर महल ठौर कैसे पावै, हर जियो सेवियै अंतर जामी, घट घट अंतर जिसकी जोत समानी, तिस नाल क्या चलै पहनामी, साचा नाम साचा शब्द जानै, आपै आप मिलै चुकै अभिमानै, गुरमुख नाम सदा सदा वखानै, सतगुर सेवै दूजी दुरमत जाई, औगुण काट पापा मत खाई, कंचन काया ज्योति जो समाई, सतगुर मिलै वड्डी वड्याई, दो काटे हृदय नाम वसाई, नाम रते सदा सुख पाई, गुरमत मान्या करनी सार, गुरमत मान्या मोख द्वार, नानक गुरमत मान्या परवार है साधार। बिलावल महला चौथा, अष्टपदियां घर ग्यारवां एक ओंकार, सतगुर प्रसाद आपै आप खाए हो मेटै, आन दिन हर रस गीत गवैया, गुरमुख परचै कंचन काया, निरपो ज्योति ज्योत मिलैया, मैं हर हर नाम आधार रमैया, खिन पल रह न सको बिन नावै, गुरमुख हर हर पाठ पढ़ैया रहाओ, एक गिरो दस द्वार हैं जाके, अहन सो तस्कर पंच चोर लगैया, धर्म अर्थ सब हिर ले जावै, मनमुख अंदले खबर ना पैया, कंचन कोट बहुमानक भरिया, जागे ज्ञान तत् लिव लैया, तस्कर हेरू आए लुकाने, गुर कै शब्द पकड़ बंद पैया, हर हर नाम पोत बोए था, खेवट शब्द गुरपार लंगैया, जमजा गाती नेण ना आवै, ना को तस्कर चोर लगैया, हर गुण गावै सदा दिन राती, मैं हर जस कहते अंत न लहिया, गुरमुख मनुआ इकत घर आवै, मिलो गोपाल निशान बजैया, नैनी देख दर्श मंत्र बतै, श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया, सुन सुन आत्म देव है पीने, रस रस राम गोपाल रवैया, त्रै गुण माया मोहे वे आपे, तुरिया गुण है गुरमुख लैया, एक दृष्ट सब सम कर जान है, नदरी आवै सब ब्रह्म पसरैया, राम नाम है जोत सबाई,
ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਅਲਖ ਲਖਈਆ, ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਏ ਹੈ, ਭਗਤ ਪਾਏ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਈਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੀਤਲ ਜਲ ਧਿਆਵੋ, ਹਰ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਸੁਗੰਧ ਗੰਦਈਆ। ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਹਿਰਡ ਪਲਾਸ ਸੰਗ ਹਰ ਬੁਹੀਆ। ਜਪ ਜਗਨਨਾਥ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਈਆ, ਸਰਨ ਪਰੇ ਸੇ ਜਨ ਉਬਰੇ, ਜਿਉ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਉਧਾਰ ਸਮਈਆ। ਰਹਾਓ ਪਾਰ ਅਠਾਰੈ ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਉਤਮ, ਚੰਦਨ ਨਿਕਟ ਸਭ ਚੰਦਨ ਹੋਈਆ। ਸਾਕਤ ਕੂੜੇ ਊਬ ਸੁੱਕ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਅਵਮਾਨ ਵਿਛੜ ਦੂਰ ਗਈਆ। ਹਰ ਗਤਮਿਤ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ, ਸਭਿਦ ਹਰ ਹਰ ਆਪ ਬਨਈਆ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਕੰਚਨ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮਿਟੈ ਨਾ ਮਿਟਈਆ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ, ਸਾਗਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਖੁਲਈਆ। ਗੁਰਚਰਨੀ ਇਕ ਸਰਦਾ ਉਪਜੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਪਹੀਆ। ਪਰਮ ਬੈਰਾਗ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹਰ ਧਿਆਏ, ਮੈਂ ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿਤੇ ਪਾਵਨੀ ਕਹੀਆ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਖਿਨ ਖਿਨ ਪਲ ਕਹੀਏ, ਹਰ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਵੈ ਪਰੈ ਪਰਈਆ। ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰੈ, ਧਰਮ ਕਰੋ ਖਟ ਕਰਮ ਦਰੜਈਆ। ਮਨਮੁਖ ਪਾਖੰਡ ਭਰਮ ਵਿਗੂਤੇ, ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਨਾਵ ਪਾਰ ਬੁਡਈਆ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮੇ ਗਤ ਪਾਵੋ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤਰ ਨਾਮ ਦਰੜਈਆ। ਹਉਮੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚੈ ਪਰਮ ਪਦ ਪਈਆ। ਇਹੋ ਜਗ ਵਰਨ ਰੂਪ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਜਿਤਲਾ ਵੈਸੇ ਕਰਮ ਕਮਈਆ। ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਜਾਏ ਵਾਜੈ, ਜਿਤ ਭਾਵੈ ਤਿਤ ਰਾਹੇ ਚਲਈਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਅਗਮਿਆ ਗੋਚਰ ਧਿਆਇਆ, ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਪੁਰਖਈਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਵਸਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾਮ ਸਮਈਆ। ਜਨ ਕੀ ਟੇਕ ਹਰ ਨਾਮ ਟਕਈਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਤਰ ਲਾਗਾ ਜਾਵਾ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਦਰ ਲਹੀਆ। ਰਹਾਉ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਕਰਮ ਕੀ ਧਰਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੱਥ ਮੱਥ ਤਤ ਕਢਈਆ। ਲਾਲ ਜੇ ਵੇਹਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਭਾਂਡੈ ਭਾਉ ਪਵੈ ਤਿਤਈਆ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦਾਸ ਹੋਏ ਰਹੀਐ, ਜੋ ਜਨ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਿਜ ਪਈਆ। ਮਨ ਬੁੱਧ ਅਰਪ ਧਰੋ ਗੁਰੇ ਆਗੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮੈਂ ਕਥ ਕਥਈਆ। ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਵੇ ਆਪੇ, ਇਹੋ ਮਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲਤ ਦਿਖਈਆ। ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਪਾਇਆ, ਅਗਨ ਬੁਝੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਈਆ। ਇਹੋ ਮਨ ਨਾਚੈ ਸਤਿਗੁਰੇ ਆਗੈ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਤੁਨ ਤੂਰ ਵਜਈਆ। ਹਰ ਹਰ ਉਸਤ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਰਖ ਰਖ ਚਰਨ ਹਰ ਤਾਲ ਪੂਰਈਆ। ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ ਰਤਾ ਮਨ ਗਾਵੈ, ਰਸ ਰਸਾਲ ਰਸ ਸ਼ਬਦ ਰਵਈਆ। ਨਿਜ ਕਰ ਧਾਰ ਚੋ ਐਤ ਨਿਰਮਲ, ਜਿਨ ਪੀਆ ਤਿਨਹੀ ਸੁਖ ਲਈਆ। ਮਨ ਅਠ ਕਰਮ ਕਰੈ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਜਿਉ ਬਾਲਕ ਬਾਲੂ ਕਰ ਉਸਰਈਆ। ਆਵੈ ਲਹਿਰ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਕੀ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਟੈ ਪਈਆ। ਹਰ ਸਰ ਸਾਗਰ ਹਰ ਹੈ ਆਪੇ, ਇਹੋ ਜਗ ਹੈ ਸਭ ਖੇਲ ਖਿਲਈਆ। ਜਿਉ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜਲ ਜਲੈ ਸਮਾਵੈ, ਨਾਨਕੇ ਆਪੇ ਆਪ ਰਮਈਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚੈ ਮਨ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਤਨ ਪਸਮ ਦਰੜਈਆ। ਅਮਰ ਪਿੰਡ ਭਏ ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋ ਮਿਟ ਗਈਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਧਸੂਦਨ ਮਾਧੋ। ਮੈਂ ਖਿਨ ਖਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਪਖਈਆ। ਰਹਾਓ ਤਜੈ ਗ੍ਰਸਤ ਭਇਆ ਬਨਵਾਸੀ, ਇਕ ਖਿਨ ਮਨੁਆ ਟਿਕੈ ਨਾ ਟਕਈਆ। ਧਾਵਤ ਤਾਏ ਤਦੇ ਕਰ ਆਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਸਾਧੂ ਸਰਨ ਪਵਈਆ। ਤੀਆਂ ਪੂਤ ਛੋੜ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਆਸਾ ਆਸ ਮਨ ਬਹੁਤ ਕਰਈਆ। ਆਸਾ ਆਸ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਬੂਜੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਾਸ ਸੁਖ ਲਹੀਆ। ਉਪਜੀ ਤਰਕ ਦਿਗੰਬਰ ਹੋਵਾ, ਮਨ ਦੈ ਦਿਸ ਚਲ ਚਲ ਗਮਨ ਕਰਈਆ।
पर भवन करै बुझै नहीं तृष्णा मिल संग साध दया कर लहिया आसन सिद्ध सिखै बहु तेरे मन मांगै रिद सिद्ध चेटक चेटकैया तृप्त संतोख मन शांत न आवै मिल साधु तृप्त हर नाम सिद्ध पैया अंडज जेरज सेतज उत्पुज सब वर्ण रूप जी जंतो पैया साधु शरण भरै सो उबरै खत्री ब्राह्मण सूद वैसो चंडाल चंडैया नामा जय देव कंबीर त्रिलोचन औ जात रविदास चमयार चमैया जो जो मिले साधु जन संगत धन धन्ना जट सहन मिलया हरदैया संत जना की हर पैज रखाई भगत वछल अंगीकार करैया नानक शरण परे जग जीवन हर हर कृपा तार रखैया बिलावल महला चौथा अंतर प्यास उठी प्रभ केरी सुन गुरबचन मन तीर लगैया मन की बिरथा मन ही जाने अवर के जाने को पीर परैया राम गुर मोहन मोहे मन लैया हों आकल बिकल पई गुर देखे हों लोट पोट होए पैया रहाओ हों निरखत फिराओ सब दे दिसंतर मैं प्रभ देखन को बहुत मन चैया मन तन काट दे गुरे आगे जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाई कोई आन संदेशा दे प्रभ केरा हृदय अंतर मन तन मीठ लगैया मस्त काट दो चरणा तल जो हर प्रभ मेले मेल मिलैया चल चल सखी हम प्रभ प्रबोधै गुण कामण कर हर प्रभ लैया भगत वछल उवा को नाम कहियत है शरण प्रभु तिस पाछै पैया खिमा सिंगार करे प्रभ खुशियां मन दीपक गुर ज्ञान बलैया रस रस भोग करे प्रभ मेरा हम तिस आगे जियो कट कट पैया हर हर हार कंठ है बनया मन मोती चूर बड़ गहन गहनैया हर हर सरदा सेज विशाई प्रभ छोड़ ना सके बहुत मन पैया कह प्रभ अवर अवर किश की जय सब बाद सिंगार फोकट फोकटैया कियो सिंगार मिलन कह ताई प्रभ लियो सुहागन थूक मुख पैया हम चेरी तू अगम गुसाई क्या हम करै तेरे वस पैया दयाधीन करो रख ले वो नानक हर गुर शरण समैया बिलावल महला चौथा मैं मंतन प्रेम अगम ठाकर का खिन खिन सरदा मन बहुत उठैया गुर देखे सरदा मन पूरी जो चातरक प्रयो प्रयो बूंद मुख पैया मिल मिल सखी हर कथा सुनैया सतगुर दया करे प्रभ मेले मैं तिस आगे सिर कट कट पैया रहाओ रोम रोम मंतन एक बेदन मैं प्रभ देखे बिन नींद ना पैया वैदिक नाटक देख भुलाने मैं हृदय मंतन प्रेम पीर लगैया हों खिन पल रह ना सको बिन प्रीतम जो बिन अमले अमली मर गैया जिनको प्यास होए प्रभ केरी तिने अवरना पावै बिन हर को दुइया कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावै हों तिस विटो बल बल घूम गैया अनेक जन्म के विछड़े जन मेले जा सत सत सतगुर शरण पवैया सेज एक एको प्रभ ठाकर महल ना पावै मनमुख परमैया गुर गुर कर तो शरण जे आवै प्रभ आए मिलै

पिता ताहे क्या नाम सदैया, पूर्व जन्म भगत कर आए। गुर हर हर हर हर भगत जमैया, भगत भगत करते हर पाया। जा हर हर हर हर नाम समैया, प्रभ आन आन मेहंदी पीसाई। आपे कोल कोल अंग लैया, जिनको ठाकर कृपा तारी। बहां पकड़ नानक कढ़ लैया। राग बिलावल महला पंजवा, अष्टपदी घर बारवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, उपमा जात ना कही मेरे प्रभ की। उपमा जात ना कही, तज आन शरण गही रहाओ। प्रभ चरण कमल आधार, हौ जाऊं सद बलिहार। मन प्रीत लागी ताहे, तज आन कतै ना जाहे। हर नाम रसना कहन, मल पाप कल मल दहन। चढ़ नाव संत उधार, पैतरे सागर पार। मन डोर प्रेम प्रीत, ए संत निर्मल रीत। तज गए पाप बेकार, हर मिले प्रभ निरंकार। प्रभ पेखिए बिस्माद, चख अनंद पूर्ण साध। नह डोलिए इतियूत, प्रभ बसे हर हर चीत। ते नाहे नरक निवास, नित सिमर प्रभ गुणतास। ते जमना पेखै नैन, सुन मोहे अनहत बैन। हर शरण सूर गोपाल, प्रभ

एक में एक अंकार निराला, हमारा जोनी जात ना जाला, आगमा गोचर रूप ना रेखिया, खोइत खोइत कटकट देखिया, जो देख देखावे तिसको बल जाई, गुर प्रसाद परम पद पाई, क्या जब जापो बिन जगदीस है, गुर के शब्द महल कर दी सै रहाओ।

तृतीया ब्रह्मा विष्ण महेशा देवी देवो पाए वेशा ज्योति जाति गणत ना आवै जिन साजी सो कीमत पावै कीमत पाए रहा भरपूर किस नेड़े किस आखा दूर चौथे उपाए चारे बेदा खाणी चारे बाणी भेदा अष्ट दशा खड़ती ने उपाए सो बुझे जस्या बुझाए तीन समावै चौथे वासा प्रणवत नानक हम ताके दासा पंचमी पंचभूत बेताला आपा गोचर पुरख निराला एक ब्रह्म भूखे मोह प्यासे एक रस चाख शब्द तृप्तासे एक रंगराते एक मरतूर एक दर कर साचै देख दूर झूठे कौ नाही पत नाओ कबो न सूचा काला काओ पिंजर पंखी बंदिया कोए शेरी भरमै मुक्त न होए तव छूटै जा खसम छड़ाए गुरमत मेले भगत रड़ाए खष्टी खट दर्शन प्रभ साजे अनहद शब्द निराला वाजे जे प्रभ पावै ता महल बुलावै शब्दे भेदे तौ पत पावै कर कर वेस खपै जल जावै साचे साचे साज समावै सप्तमी सत संतोख शरीर सात समुंद भरे निर्मल नीर मज्जन सील सचरदै विचार गुर कै शब्द पावै सब पार मन साचा मुख साचो पाए सचनी साणै ठाक ना पाए अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साधै सच नेह केवल कर्म आराधै पौन पानी अग्नि बिसराओ तही निरंजन साचो नाओ तिसमै मनुआ रहया लिवलाए प्रणवत नानक काल ना खाए नाओ नौमी नवे नाथ नव खंडा घट घट नाथ महा बलवंडा आई पूता एहो जग सारा प्रभ आदेश याद रखवारा आज जुगादी है पी होग ओह परंपर करना जोग दसवीं नामदान इशनान अंदन मज्जन सच्चा गुण ज्ञान सच मैल न लागै भ्रम पौ पागै बिलम न टूट सका चै तागै ज्यों तागा जग एवै जानो अस्त्र चा अस्त्र जी साज रंग माणो एकादशी करदै वसावै हिंसा ममता मोह चुकावै फल पावै ब्रत आत्म चीनै पाखंड राज तत् नहीं बीनै निर्मल निराहार नेह केवल सूचे साचे ना लागै मल जै देखो तहे को एका होर जियो पाए वेको वेका फलो हर किए फल जाए रस कस खाए साध गवाए कूड़ै लालच लपटै लपटाए छूटै गुरमुख साच कमाए द्वादश मुंद्रा मन अवदूता अहनस जागै कवै ना सूता जागत जाग रह लिवलाए गुर परचै तस्खाल ना खाए अतीत भय मारे बैराई प्रणवत नानक तैं लिवलाई द्वादशी दया दान कर जाणै बाहर जातो भीतर आणै बरती बरत रह नेकाम अजपा जाप जपै मुख नाम तीन पवन मैं एको जाणै सब सुत संजम साच पछाणै तेर सतरवर समुंद किनारै अमृत मूल शिखर लिवतारै डर डर मरै ना बूढ़ै कोए निडर बूढ़ मरै पत खोए डर मैं घर घर मैं डर जाणै तख्त निवास सच मन पाणै चौदस चौथे थावै लै पावै राजस तामस सतकाल समावै ससियर कै कर सूर समावै जो जूत की कीमत पावै चौदस पवन पताल समाए खंड ब्रह्मंड रहा लिवलाए अमावस्या चंद गुप्त गैनार बुझो ज्ञानी शब्द विचार ससियर गगन जोत त्यो लोई कर कर वेखै करता सोई गुरते दिसै सो तिस ही माहे मनमुख पूले आवै जाए घर दर थाप थिरथान सुहावै आप पछाणै जां सद

जहे आसा तहे बिनस बिनासा, फूटे खप्पर दुबदा मनसा, ममता जाल ते रहे उदासा, प्रणवत नानक हमता के दासा। बिलावल महला तीजा, वार सत कर दसवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आदित वार आद पुरख है सोई, आपे वरत वरना कोई, ओत पोत जग रया परोई, आपे करता करे सो होई, नाम रते सदा सुख होई, गुरमुख विरला बूझै कोई। हृदय जपनी जपो गुणतासा, हर अगम्या गोचर परम्पर स्वामी, जन पग लग त्याव होए दासन दासा रहाओ। सोमवार सच रहा समाए, तिसकी कीमत कही ना जाए, आख आख रहे सब लिवलाए, जिस देवै तिस पल्लै पाए, अगमा गोचर लखिया ना जाए, गुर कै सबधर रहा समाए। मंगल माया मोह उपाया, आपे सिर सिर तंदै लाया, आप बुझाए सोई बूझै, गुर कै शब्द दर कर सूझै। प्रेम भगत करे लिवलाए, हम मैं ममता शब्द जलाए, बुद्ध वारे आपे बुद्ध सार, गुरमुख करनी शब्द विचार। नाम रते मन निर्मल होए, हर गुण गावे हम मैं मल खोए, दर सच्चै सद शोभा पाए, नाम रते गुर शब्द सुहाए, लाहा नाम पाए गुरुद्वार, आपे देवै देवनहार, जो देवै तिसको बल जाइय, गुर प्रसादी आप गवाइय। नानक नाम रखो और तार, देवन हारे कौ जयकार, वीरवार वीर परम पुलाए, प्रेत पूत सब दूजे लाए। आप उपाय कर वेखै वेका, सबना करते तेरी टेका, जी जंत तेरी शरणाई, सो मिले जिस लहै मिलाई। शुक्रवार प्रभ रहा समाई, आप यो पाए सब कीमत पाई, गुरमुख होवै सो करै विचार, सच संयम करनी है कार, वर्त नेम नेता प्रत पूजा, बिन बूझे सब पाओ है दूजा। शनिश्चरवार सौन शास्त्र विचार, हम मैं मेरा परमै संसार, मनमुख अंधा दूजे पाए, जमदर बाधा चोटा खाए। गुरप्रसादी सदा सुख पाए, सच करनी साच लिवलाए, सतगुर सेवै सेवट पागी, हम मैं मार सच लिवलागी। तेरा रंगराते सह सुभाए, तू सुखदाता लह मिलाए, एक स्ते दूजा नहीं कोए, गुरमुख बूझै सो जी होए। पंद्रह थित्ती तैं सत वार, महारुति आवै वार वार, दिन सरैण तवै संसार, आवा गौण किया करतार, निहचल साच रहया कल तार, नानक गुरमुख बूझै को शब्द विचार। बिलावल महला तीजा, आद पुरख आपे सिरठ साजे, जी जंत माया मोहे पाजे, दूजे पाए परपंच लागे, आवै जाए मराया भागे। सतगुर पेटे ऐ सो जी पाए, परपंच चूकै सच समाए, जां कै मस्तक लिखिया लेख, तां कै मन वसिया प्रभ एक रहाओ। सृष्टि उपाए आपे सब वेखै, कोई न मिटै तेरै लिखै, सिद्ध साधक जे को कह कहाए, परमे पूला आवै जाए। सतगुर सेवै सोजन बूझै, हम मैं मारे तांदर सूझै, एक स्ते सब दूजा हुआ, एको वरतै अवर न भिया, दूजे ते जे एको जाणै, गुर कै शब्द हर दर निसाणै। सतगुर भेटे तां एको पाए, विचों दूजा ठाक रहाए, जिसदा साहिब डाडा होए, तिसनो मार ना साकै कोए। साहिब की सेवक रहे सरनाई, आपे बख्शे दे वड़ियाई, तिस ते उपर नाही कोए, कौन डरै डर किसका होए।
ਗੁਰਮਤੀ ਸਾਂਤ ਵਸੈ ਸਰੀਰ, ਸਭ ਚੀਨ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪੀਰ, ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਦੁਖ ਪਾਏ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਹਿ ਸਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖੈ ਹਦੂਰ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਦ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਹਰਿ ਆਪ ਕਰਾਏ, ਏਕੋ ਵਰਤੈ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਮਨ ਰੋਸ ਕੀਜੈ ਜੇ ਦੂਜਾ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ, ਦਰ ਸਾਚੈ ਸਾਚੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਏ, ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਸਭ ਆਵੈ ਜਾਹੇ, ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਨਿਹਚਲੋ ਸਦਾ ਸਚ ਸਮਾਹੇ, ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਾਂ ਸੱਚ ਰਾਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਚੇ, ਮਨਮੁਖ ਮਰੈ ਮਰ ਬਿਗਤੀ ਜਾਹੇ, ਏਕ ਨ ਚੇਤੈ ਦੂਜੈ ਲੋਭਾਹੇ, ਅਚੇਤ ਪਿੰਡੀ ਅਗਿਆਨ।

ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिया एक एक वखाणिया आत्म पसारा करनहारा प्रभ ना नहीं जानिया आप करता आप पहुता आप कारण किया बिनवंत नानक से ही जाने जिन्नी हर रस पिया बिलावल महला पंजवां संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सखी आओ सखी वस आओ सखी असी फिरका मंगल गावे तजमान सखी माते अपने प्रीतम पावे तजमान मोह विकार दूजा सेव एक निरंजन हो लग चरण सरण दयाल प्रीतम सगल दुर्त बिखंडनो होए दास दासी ताजो दासी बहुड़ विधि ना तावा नानक पयम पै करो कृपा ताम मंगल गावा अमृत प्रे का नाम मैं अंधले टोहनी ओह जो है बहु प्रकार सुंदर मोहनी मोहनी महाबचित्र चंचल अनक भाव दिखावे होए टीठ मीठी मने लागे नाम लैण ना आवे गृह बने तीरे बर्त पूजा बाट काटे जोहनी नानक पयम पै दया तारो मैं नाम अंदरे टोहनी मोहे नाथ प्रे नाथ ज्यो जानो त्यों रखो चतराई मोहे नाए रिझावो कै मुखो नह चतर सुगर सुजान बेती मोहे निर्गुण गुण नहीं नह

पाए, गुण रवै गुण संग्रह ज्योति ज्योत में लाए, इस युग में विरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंदै चित लाए। नानक जिन को नजर करे हर सच्चा से नाम रहे लिवलाए। महला तीजा, सतगुर की सेवना कीतिया शब्द ना लगो पाओ, हम मैरो कमावना अदीर्घ बहु सुआओ। मन हठ कर्म कमाव दे फिर जोनी पाए, गुरमुख जन्म सफल है जिसनो आपे लय मिलाए। नानक नदरी नदर करे ता नाम तन पल्लै पाए पौड़ी, सब वड्याइया हर नाम विच हर गुरमुख त्याई है। जे वस्त मंगी है साई पाई है, जे नाम चित लाई है गोज गल जी की कीचै, सतगुरु पास ता सर्व सुख पाई है। गुर पूरा हर उपदेश दे सब भुख लै जाई है, जिस पूर्व होवै लिखिया सो हर गुण गाई है। सलोक महला तीजा, सतगुर ते खाली को नहीं मेरे प्रभ मेल मिलाए। सतगुर का दर्शन सफल है जिहा को इच्छे तिहा फल पाए। गुर का शब्द अमृत है सब तृष्णा भुख गवाए, हर रस पी संतोख होवा सच वस्या मन आए। सच ते आए अमरा पद पाया अनहद शब्द बजाए, सचो दै दस पसरिया गुर कैसे सुवाए। नानक जिन अंदर सच है से जन छपै ना किसै देश पाए। महला तीजा, गुर सेवा ते हर पाई है जा को नदर करे, मानस ते देवते पए सच्ची भगत जिस दे। हाँ मैं मार मिलायन गुर कै शब्द सोचे, नानक सहजे मिल रहे नाम वड्याई दे पौड़ी। गुर सतगुर विच नाम है की वड्डी वड्याई, हर करतै आप वधाई। सेवक सिख सब वेख वेख जीवन ओना अंदर हिरदै पाई। निंदक दुष्ट वड्याई वेख ना सकन, ओना प्राया भला ना सुखाई। क्या होवै किस ही दी क्या होवै किस ही की चख मारी, जा सच्चे स्यों बने आई। जे गल करते पावै सा नित नित चढ़ै सवाई, सब चख चख मरै लोकाई। सलोक महला तीजा, त्रिग एह आसा दूजे भाव की, जो मोहे माया चित लाए। हर सुख पल्लर त्यागिया नाम सार दुख पाए। मन मुख अज्ञानी अंधले, जन्म मरै फिरे आवै जाए। कार्य सिद्ध न होवनी अंत गया पछताए। जिस कर्म होवै तिस सतगुर मिलै, सो हर हर नाम ते आए। नाम रते जन सदा सुख पाए, न जन नानक तन बल जाए। महला तीजा, आसा मनसा जग मोहनी, जिन मोया संसार सब को जम के चीरे विच है। जेता सब आकार, हुक्मी ही जम लगदा सोबरै जिस बख्शै करतार। नानक गुर प्रसादी हो मंतांतर है, जा छोड़ै हंकार। आसा मनसा मारे निराश होए, गुर शब्दी विचार पौड़ी। जिथे जाइए जगत मैं तिथे हर साई, अगै सब आपे वरतदा हर सच्चा न्याई। कूड़ यारा के मोह फिटकी, सच भगत वड्याई। सच साहेब सच्चा न्याओ है सिर निंद कशाई। जन नानक साचा राध्या गुरमुख सुख पाई। सलोक महला तीजा, पूरे भाग सतगुर पाई है। जे हर प्रभस करे ओ पावा सिरे, ओ पाओ है ना प्राप्त होए। अंदर शीतल सांत है हृदय सदा सुख होए। अमृत खाना पहनना नानक नाए वड्याई होए। महला तीजा, ए मन गुर की

तही जैसे पुरवन पात मिथ्या कर माया तजी सुख सहज विचार। कह कबीर सेवा करो मन मंज मुरार, बिलावल जन मरण का भ्रम गया गोविंद लिव लागी, जीवत सुन समानिया गुरसाखी जागी रहाओ। काशी ते तुनी उपजै तुन काशी जाई, काशी फूटी पंडता तुन कहां समाई। त्रिगुटी संद मैं पेखिया कट हूं कट जागी, ऐसी बुद्ध समाचरी कट माहे त्यागी। आप ते जानिया तेज तेज समाना, कहो कबीर अब जानिया गोविंद मनमाना। बिलावल चरण कमल जा कर दे बस है, सो जन क्यों डोले देव। मानो सब सुख नव निदता कै, सहज सहज जस बोले देव रहाओ। तब एह मत जो सब मैं पेख कुटल गांठ।

कहे कबीर में ना मेरा मन मानिया राम प्रीत कियो लै देव। बिलावल बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सफल जन्म मोको गुर कीना दुख बिसार सुख अंतर लीना। ज्ञान अंजन मोको गुर दीना राम नाम बिन जीवन मन हीना रहाओ। नाम दे सिवरन कर जाना जग जीवन स्यो जियो समाना। बिलावल बाणी रविदास भगत की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दार्द देख सबको हसै ऐसी दशा हमारी। अष्ट दशा सिद्ध करतल है सब कृपा तुम्हारी। तू जानत मैं किश नहीं।

एको ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद। राग गोंड चौपदे महला चौथा कर पहला। जे मन चित आस रखे हरि उपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई। हर जाने सब किश जो जिए वरतै प्रभ कालिया किसै का एक तिल ना गवाई। हर जिस की आस की जय मन मेरे जो सब मैं स्वामी रह समाई। मेरे मन आसा कर जगदीश गुसाई जो बिन हर आस अवर काहू की जय। साने फल आस सब बिरथी जाई रहाओ जो दिसे माया मोह कुटंब सब मत तिसकी आस लग जन्म गवाई। इनके किश हाथ नहीं कहां करे एह बपड़े इनका वाहया कश ना वसाई। मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की जो तुझ तारे तेरा कुटंब सब छिड़ाई।

ज्योतुत उपकरै दुख सुखासा, जिसका परवासा क्योंकि जय मन मेरे जोवंती अवसर रखना सुकासा। हर जप मंत गुरु उपदेश लै जापो, तन अंत छड़ाए जिन हर प्रीत चितासा। जन नानक अंदर नाम जपो हर संतो, एहो छूटन का साचा परवासा। गोंड महला चौथा, हर सिमरत सदा होए आनंद, सुख अंतर सांत शीतल मन अपना। जैसे सगत सूर बहु जलता, गुर सस देखे लह जाए सब तपना। मेरे माने अंदन त्याए नाम हर जपना, जहां कहां तुझ राखै सब ठाई। सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाओ, जा मैं सब निदान। सो हर जप मन मेरे गुरमुख खोज लो हर तना, जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी। तिनके चरण मलो हर दसना, शब्द पछाण राम रस पावो। ओ उत्तम संत भयो बड़ बड़ना, ते जन की वडियाई हर आ वधाई। ओ कटै ना किसै की कटाई, एक तिल तिल तिल ना। जिस ते सुख पावै मन मेरे, सो सदा त्याय नित कर जुरना। जन नानक हर दानिक दीजै, नित बसै हृदय हरी मोहि चरना। गुण महला चौथा, जितने साहा पात साहा उमराव, सिकदार चौधरी सब मिथिया झूठ पाव दूजा जान। हर अबनासी सदा थर नह चलो, तिस मेरे मन भज परवान। मेरे मन नाम हरी पज सदा दीबान, जो हर महल पावे गुरबचनी, तिस जेवड़ अवर नाही किसै दातान। रहाओ जितने तनवंत कुलवंत मिलखवंत, दिसै मन मेरे सब बिन सजाहे, जो रंग कुसुंभ कचान। हर सत निरंजन सदा सेव मन मेरे, जित हर दरगह पावै तू मान। ब्राह्मण खत्री सूद वैस, चार वर्ण चार आश्रम है, जो हर त्यावै सो प्रधान। ज्यों चंदन निकट वसै हिरड बपड़ा, त्यों सत संगत।

सो प्रभ मन मेरे सदा त्याए, आए न जावे निश्चल तनी, बेअंत गुणा ताके एके त्रिगनी, लाल नाम जाके परे भंडार, सगल घटा देवे आधार, सत पुरख जा को है नाउ, मिटै कोट या

ओट, नाम जपत मिटै पाप कोट, रास दी हरे को नाम, मन का इष्ट गुर संग ध्यान रहाओ।

सिमरत शास्त्र वेद पुराण पार ब्रह्म का करै वख्याण। जोगी जति वैष्णो रामदास मित नाही।

पतन होए। जिस कौ राखै सिरजनहार, चख मारो सगल संसार। प्रभ अपने का पया विसास, जियो पिंड सब तिस की रास। नानक को उपजी प्रतीत, मनमुख हार गुरमुख सद जीत। गोंड महला पंजवा। नाम निरंजन नीर नारायण, रसना सिमरत।

ना जाहे, नारायण सेव सगल फल पाहे। नारायण मन माहे आधार, नारायण बोध संसार। नारायण कहे तो जम भाग पलायण, नारायण दंत पाने डायण। नारायण सद सद बख्शेंद, नारायण कीने सुख आनंद। नारायण प्रगट कीनो प्रताप, नारायण संत को माई बाप। नारायण साध संग नारायण, बारंबार नारायण गायण। बस्त्या गोचर गुर मिल लही, नारायण ओट नानक दास गही। गुण महला पंजवा, जा कौ राखै राखनहार, तिसका अंकर निरंकार। रहाओ मात गर्व में अगन ना जो है, काम क्रोध लोमो ना पो है। साध संग जपै निरंकार, निंद कै मोय लागे शार। राम कवच दास का सना हो, दूत दुष्ट तिस पोहत नाहे। जो जो गर्व करे सो जाए, गरीब दास की प्रभ शरणाए। जो जो शरण पया हर राए, सो दास रखिया अपने कंठ लाए। जे को बहुत करे अहंकार, ओ खिन मैं रुलता खाकू नाल। हैपी साचा हो बनहार, उस दास दा जाई बलिहार। अपने दास रखे कृपा तार, नानक के प्र प्राण आधार। गोंड महला पंजवा, अचरज कथा महान रूप। प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप रहाओ। ना हो बूढ़ा ना हो बाला, ना इस दुख नहीं जमजाला। ना हो बिनसे ना हो जाए, आज गादी रहा सुमाए। ना इस पुसन नहीं है सीत, ना इस दुश्मन ना इस मीत। ना इस अर्ख नहीं है सोग, सब किश इसका एहो करने जोग। ना इस बाप नहीं है समाया, एहो परम्पर होता आया। पाप उनका इसलिए अपना लागे, कट कट अंतर सद ही जागे। तीन गुणा एक सकतो पाया, महा माया तां की है छाया। अशाला शेदा पे दयाल, दीन दयाल सदा कृपाल। ता की गतमित कशु ना पाए, नानक ता कै बल बल जाए। गोंड महला पंजवा, संतन कै बलहार है जाओ। संतन कै संग राम गुन गाओ। संत प्रसाद किलवख सब गए, संत शरण वड़ पागी पए। राम जपत कश विघ ना लागे, राम जपत कश विघ ना व्यापै। गुर प्रसाद अपना प्रभ जापै रहाओ। पार ब्रह्म जब होए दयाल, साधु जन की करै लवाल। काम क्रोध इस तंते जाए, राम रतन वसै मन आए। सफल जन्म ताका प्रवाण, पार ब्रह्म निकट कर जान। पाए भगत प्रभ कीर्तन लागे, जन्म जन्म का सोया जागे। चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रहो सच व्यापार। दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तुहूर।

केस जले जैसे कास का पूला, कहो कबीर तभी नर जागे, जम का डंड मूंड में लागे, गोंड आकाश गगन पाताल गगन है, चौदस गगन रहाए ले, आनंद मूल सदा पुरखोत्तम, कट बिनसै गगन न जाए ले, मोहे बैराग पयो एहो जियो आए कहां गयो रहाओ, पंच तत् मिल काया कीनी तत् कहां ते कीन रे, कर्म बद तुम जियो कहता हो, कर्म है किन जियो दीन रे, हर मैं तन है तन मैं हर है सर्ब निरंतर सोए रे, कहे कबीर रा राम नाम ना छोड़ो, सहजे होए सो होए रे, राग गोंड

हरे महावत तुझ दारो काट, इसे तुरावो कालो साट। हस्त ना तोरै तरै त्यान, वा कर दे बसै भगवान। क्या अपराध संत है कीना, बांध पोट कुंचर कौ दीना। कुंचर पोट लै नमस्कार, बूझी नहीं काजी अंधियार। तीन बार पतिया पर लीना, मन कठोर अजू ना पतीना। कह कबीर हमरा गोबिंद, चौथे पद मैं जन की जिंद। गोंड नायो मानस नायो देओ, नायो जति कहा वैसे ओ। ना हो जोगी ना अवधूता, ना समाय ना काहू पूता। या मंदिर मैं कौन बसाई, ताका यंतना को उपाई रहाओ। ना हो गृही ना हो दासी, ना हो राजना पीख मगासी। ना इस पिंड

देख इस मरते को जे को रोवे जो रोवे सोई पत खोवे। गुर प्रसाद मैं डगरो पाया जीवन मरण दो मिटवाया। कहो कबीर एहो राम की अंश जस कागत पर मिटे ना मंस गोंड। टूटे तागे निखुटी पान द्वार ऊपर चिलकावे कान। कूच बिचारे फूए फाल या मुंडिया सरचट बोकाल। एहो मुंडिया सगलो दरब खोई आवत जात नाग।

पे जाहे। एक दोए मंदर एक दोए बाट, हमको साक्षर उनको खाट। मूंड पलोस कमरबद पोथी, हमको चाबन उनको रोटी। मुंडिया मुंडिया हुए एक, ए मुंडिया बुढ़द की टेक। सुन अंदली लोई बेपीर, इन मुंडिया न पज सरन कबीर। गोंड खसम मरे तो नार ना रोवे, उस रखवारा और होवे। रखवारे का होए विनाश, आगे नरक यहां भोग बिलास। एक सुहागन जगत प्यारी, सगले जी जंत की नारी। रहाओ सोहागन गल सो है हार, संत कौ बेख बिकसै संसार। कर सिंगार बह पखियारी, संत की ठिठकी फिर बिचारी। संत भाग हो पाछै पर, गुर प्रसादी मारो डरै। सागत की हो पिंड परायण, हम कौ दृष्ट पर त्रखडायण। हम तिसका बहु जान्या पेओ, जब हुए कृपाल मिले गुरुदेओ। कहो कबीर अब बाहर परी, संसार कै अंचल लरी। गोंड गृह सोभा जा कैरे नाहे, आवत पैया खुदे जाहे। वाकै अंतर नहीं संतोख, बिन सोहागन लागै दोख। तन सोहागन महापवीत, तपित पिसर डोलै चीत। रहाओ सोहागन कृपन की पूती, सेवक ताज जगत स्यों सूती। साधु कै ठांडी दरबार, शरण तेरी मोको निस्तार। सोहागन है अत सुंदरी, पग नेवर शनक शन हरी। जव लग प्राण तऊ लग संगे, नाहे ता चली बेग उठ नंगे।

पांच नारद कै संग बिद्वार, पांच नारद के मिटवे फूटे, कहो कबीर गुर कृपा छूटे गोंड। जैसे मंदिर में बलहर ना ठहरै, ना बिना कैसे पार उतरै, कुंभ बिना जल ना टीकावै, साधु बिन ऐसे अवगत जावै, रहा जा रो तिसै जो राम ना चेतै, तन मन रमत रह मैं खेतै रहाओ। जैसे हलहर बिना जिमी नहीं बोई है, सूत बिना कैसे मणि परोई है, कुंडी बिन क्या गंठ चढ़ाई है, साधु बिन तैसे अवगत जाई है। जैसे मात पिता बिन बाल ना होई, बिंब बिना कैसे कपड़े धोई, कोर बिना कैसे असवार, साधु बिन नाही दरबार। जैसे बाजे बिन नहीं लीजे फेरी, खसम दुहागन ताज ओहेरी, कह कबीर एक कह कर करना, गुरमुख होए बहुर नहीं मरना गोंड। कूटन सोए जो मन को कूटे, मन कूटे तो जमते छूटे, कुट कुट मन कसवटी लावे, सो कूटन मुक्त बहु पावे। कूटन किसे कहो संसार, सगल बोलन के माहे विचार रहाओ। नाचन सोए जो मन स्यो नाचै, झूठ ना पतिए पर चै साचै, इस मन आगे पूरे ताल, इस नाचन के मन रखवाल। बजारी सो जो बजारै सोदै, पांच पलीतै कहो प्रबोदै, नौ नाए की पंक्त पिछानै, सो बाजारी हम गुरमाने। तस्कर सोए

अश्वमेध जग ने तुला पुरख दाने प्राग इशनाने तौ ना पुजे हर कीर्त नामा अपने रामै भज रे मन आलसिया रहाओ। गया पिंड भरता बनारस अस बसता मुख बेद चतर पड़ता सगल धर्म अशता गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहित रहता सिवा सख्त संवादं मन छोड़ छोड़ सगल भेदं सिमर सिमर गोबिंदं भज नामा तरस पव सिंदं गोंड नाद प्रमे जैसे मृगाए प्राण तजे वाको ध्यान न जाए ऐसे रामा ऐसे हेराओ राम छोड़ चित अंत ना फेराओ रहाओ। ज्यो मीना हेरै पशुआरा सोना गढ़ते हरै सोनारा ज्यो बिखई हेरै परनारी कौडा डारत हरै जुआरी जय जय देखो तै तै रामा हर के चरण।

सिमरन द्रौपद सुत उदरी गौतम सती सला निस्तरी केसी कंस मथन जिनकिया जी दान काली कौदिया प्रणवै नामा ऐसो हरी जास जबद पै अपदा तरी गोंड पैरो पूत सीतला तावै खर बाहन ओ शारो डावै हौ तौ एक रमैया लै हो आन देव बदला वंदै हो रहाओ शिव शिव करते जो नर त्यावै बर्द चढ़े डौरू टमकावै महामाई की पूजा करै नरसै नर होए अवतरै तू कहत ही अद भवानी मूत की बरिया कहां छपानी गुरमत राम नाम गहो मीता प्रणवै नामा यो कह गीता।

मारिया था। पांडे तुमरा रामचंद सो पी आवत देख्या था। रावण सेती सरबर होई कर की जोए गवाई थी। हिंदू अन्ना तुरकू काना दोहां ते ज्ञानी सियाणा। हिंदू पूजे देहोरा मुसलमान मसीत नामे सोई सेव्या जय देहोरा नाम सीत। रागोंड बाणी रविदास जियो की कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मुकंद मुकंद जपो संसार बिन मुकंद तन होए अवहार। सोई मुकंद मुक्त का दाता सोई मुकंद हमरा पित माता।

जप मुकंद मस्तक निशान, सेव मुकंद करै बैरागी सोई मुकंद दुर्बल तन लादी, एक मुकंद करै उपकार हमरा कहां करै संसार। मेटी जात हुए दरबार तुही मुकंद जोग जुगतार, उपजो ज्ञान हुआ प्रगास कर कृपा लीने कीटदास। कहो रविदास अब तृष्णा चुकी, जप मुकंद सेवा ताहू की। गोंड जे हो 68 तीर्थ नावे, जे हो द्वादश शिला पूजावै, जे हो कूप तटा देवावै करै निंद सब बिरथा जावै। साध का निंदक कैसे

करने दो कमने नहीं गुना, जे हो अनक प्रसाद करावे भूमदान शोभा मंडप पावे, अपना बिगार बिराना संड कर निंद बोजो नी हंड, निंदा कहा करो संसारा निंदक का प्रगट पहारा, निंदक सोध साध बिचारिया कहो रविदास पापी नरक सिधारिया जोड़। राम कली।

काल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद, कोई पढ़ता सहसा करता कोई कड़े पड़े पुराना, कोई नाम जपे जप माली लागे तसै त्याना। अब ही कभी किशु ना जाना तेरा एको नाम पछाना, ना जाना हरे मेरी कवन गते हम मूर्ख गया।

मरण लिखाए मंडल में आए जीवन साजै माई। एक चले हम देखे स्वामी पाहे बलंती आई। ना किसी का मीत ना किसी का भाई, ना किसे बाप ना माई। प्रणवत नानक जे तू देवे अंते हुए सखाई। राम कली महला पहला, सर्ब जोत तेरी पसर रही। जै जै देखा तै नरहरी, जीवन तलब निवार स्वामी। अंध कुप माया मन गाड़िया, क्यों कर उतरो पार स्वामी रहाओ। जह पीतर कट पीतर बसया, बाहर काहे नाही। तिन की सार करे नित साहेब, सदा चिंत मन माही। आपे नेड़ा आपे दूर, आपे सरबर भरपूर। सतगुर मिले अंधेरा जाए, जै देखा तै रया समाए। अंतर से सा बाहर माया, नैनी लग सबाणी। प्रणवत नानक दासन दासा, परता पैगा प्राणी। राम कली महला पहला, जित दर वसै कमन दर कहिया। दरा पीतर दर कमन लह, जिस दर कारण फिरा उदासी। सो दर कोई आए कह, किन बिद सागर तरिया। जीव त्यान मरिया रहाओ, दुख दरवाजा रोहो रखवाला। आसा अंदेसा दोए पट जड़े, माया जल खाई पानी कर बांधया। सत कह आस

जब आशा अंदेशा तब ही क्यों कर एक कहे, आशा पीतर रहे निराशा तव नानक एक मिले। इन विद सागर तरिय जीवत आयो मरिय रहाओ दूजा, राम कली महला पहला सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी बाजे लोक सुने। पत झोली मंगण कै ताई पीखिया नाम पड़े, बाबा गोरख जागे गोरख सोजन गोए उठाली करते बार ना लागे रहाओ। पानी प्राण पवन बंद राखे चंद सूरज मुख दिए, मरण जीवन कौ धरती दीनी एते गुण विसरे। सिद्ध साधक यार योगी जंगम पीर पुरश बहु तेरे, जेतन मिला ता कीर्त आखां ता मन सेव करे। कागद लून रह कृत संगे पानी कमल रह, ऐसे भगत मिले जन नानक तिन जम क्या करे। राम कली महला पहला सुन माशंदरा नानक बोले, वसगत पंच करे नहीं डोले। ऐसी जुगत जो कौ पाले आप तरह सगले कुल तारे, सो अवधूत ऐसी मत पावे अहनिस सुन समाज समावे रहाओ। भिखिया पाए भगत पै चले, होवे सो तृप्त संतोख अमुले। ध्यान रूप होए आसन पावे सच नाम ताड़ी चितलावे, नानक बोले अमृत बाणी सुन माशिंदरा औदू निशानी। आसा महे निरास वलाए निहचो नानक करते पाए, प्रणवत नानक अगमुख सुनाए गुर चेले की संद मिलाए। दीखिया दारू भोजन खाए छे दर्शन की सोजी पाए। हराम कली महला पहला हम डोलत बेड़ी पाप भरी है, पवन लगे मत जाई। सनमुख सिद्ध पेटन कौ आए निहचो देवड़े आई। गुर तार तार नहारिया देह भगत पूर्ण अविनाशी, हाँ तुझको बलिहारिया रहाओ। सिद्ध साधक जोगी अर जंगम एक सिद्ध जिनी त्याया, परसत पैर सिजते स्वामी अखर जिनको आया। जप तप संजम कर्म ना जाना, नाम जपी प्रभ तेरा। गुर परमेसर नानक पेटे ओ साचा शब्द नवेरा। राम कली महला पहला सुरती सुरत्र लाइय एत, तन कर तुल्हा लंगे जेत। अंतर पाहे तुसै तू रख अहनस दीवा बलै अथक,

पाए, जिन किश किया सो किश करै, अपनी कीमत आपे तरै। गुरमुख प्रगट होवा हर राय, ना को आवै ना को जाए, लोक तिकार कहै।

रामकली महला पहला, सागर में बूंद, बूंद में सागर, कवन बुझे बिद जाने, उत्पो चलते आप कर चीने, आपे तत् पछाने, ऐसा ज्ञान विचारे कोई, तिस्ते मुक्त परम गत होई रहाओ, दिन में रहन, रहन में दिनियर, उसन सीत बिद सोई, ताकि गत मित यवर ना जाने, गुरबिन समझ ना होई, पुरख में नार, नार में पुरखा, बुझो ब्रह्म ज्ञानी, तुन में ध्यान, ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी, मन में जोत, जोत में मनुआ, पंच मिले गुर पाई, नानक तिन कै सत बलिहारी, जिन एक शब्द ले बलाई, राम कली महला पहला, जहां हर प्रभ कृपा तारी, ताह मैं विचो मारी, सो सेवक राम प्यारी, जो गुर शब्दी बिचारी, सो हर जानो हर प्रभ पावे, अहनिस भगत करे दिन राती, ला छोड़ हर के गुण गावे रहाओ, तुन वाजे अनहद कोरा, मन मान्या हर रस मोरा, गुर पूरे सच समाया, गुर आद पुरख हर पाया, सब नाद बेद गुरबाणी, मन राता सारंग पाणी, तह तीर्थ वर्त तप सारे, गुर मिलिया हर निस्तारे, जय आप गया पौ पागा, गुर चरणी सेवक लागा, गुर सतगुर परम चुकाया, कहो नानक शब्द मिलाया, राम कली महला पहला, शादन भोजन मांगत पागै, खुदया दुष्ट जलै दुख आगै, गुरमत नहीं लीनी, दुरमत पत खोई, गुरमत भगत पावै जन कोई, जोगी जुगत सहज कर वासै, एक दृष्ट एको कर देखिया, भीखिया पाए सब तृप्ता सह रहाओ, पंच बैल गड़िया देह तारी, राम कला निभै पत सारी, तर टूटी गाडो सिर पार, लकड़ी बिखर जरी मंज पार, गुर का शब्द विचार जोगी, दुख सुख सम करना सोग बियोगी, भुगत नाम गुर शब्द विचारी, अस्त्र कंध जपै निरंकारी, सहज जगोटा बंधन ते छूटा, काम क्रोध गुर शब्दी लूटा, मन मैं मुंदरा हर गुर सरना, नानक राम भगत जंतरना, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राम कली महला तीजा, कर पहला सतयुग सच कहे सब कोई, कर कर भगत गुरमुख होई, सतयुग धर्म पैर है चार, गुरमुख बूझे को बिचार, जुग चारे नाम वड्याई होई, जे नाम लागै सो मुक्त होवै, गुरबिन नाम ना पावै कोई रहाओ, त्रेता एक कल कीनी दूर, पाखंड वर्त्या हर जान दूर, गुरमुख बूझै सोजी होई, अंतर नाम वसै सुख होई, द्वापर दूजै दुबदा होए, परम भुलाने जाने दोए, द्वापर धर्म दोए पैर रखाए, गुरमुख होवै ता नाम दृढ़ाए, काल युग धर्म कला एक रहाए, एक पैर चलै माया मोह वधाए, माया मोह वत गुबार, सतगुर पेटै नाम उधार, सब युग में साचा एको सोई, सब में सच दूजा नहीं कोई, साची कीर्त सच सुख होई, गुरमुख नाम वखाणै कोई, सब युग में नाम उत्तम होई, गुरमुख विरला बूझै कोई, हर नाम ते आए भगत जन सोई, नानक जुग जुग नाम वड़े आई होई, राम कली महला चौथा, कर पहला एको ओंकार सतगुर प्रसाद, जे वडभाग होवै वडभागी, ता हर हर नाम ते आवै, नाम जपत नामे सुख पावै, हर नामे नाम समावै, गुरमुख भगत करो सद प्राणी, हृदय प्रगास होवै लिव लागै, गुरमत हर हर नाम समाणी रहाओ, हीरा रतन जवे हर माणक, बहु सागर भरपूर किया, जिस वड भाग होवै वड मस्तक,
ਤਿੰਨ ਗੁਰਮਤ ਕਢ ਕਾਢ ਲਿਆ। ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਹਰਨਾਮਾ ਗੁਰ ਕਾਢ ਤਲੀ ਦਿਖਲਾਇਆ। ਭਾਗਹੀਣ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤ੍ਰਿਣ ਓਲੈ ਲਾਗ ਛਪਾਇਆ। ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਹੋਵੇ

जीवन दाते हर संत पगी ले पावै। हौ काटो काट बाढ़ सिर राखो जित नानक संत चढ़ आवै। और राम कली

हम बारक हर प्रतपारे राग राम कली महला पंजवां कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद कृपा करहो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना बिचारो कोई माटी का क्या तोपै स्वामी मानस की गते ही मेरे मन सतगुर सेव सुख होई जो इच्छा हो सोई फल पावो फिर दुख ना व्यापै कोई रहाओ काचे पांडे साज निवाजे अंतर ज्योत समाई जैसा लिखत लिखिया तुर करता है हम तैसी कृत कमाई मन तन थाप किया सब अपना ए हो आवन जाना जिन दिया सोचित ना आवै मोहे अंध लपटाना जिन किया सोई प्रभ जाने हर का महल अपारा भगत करी हर के गुण गावा नानक दास तुम्हारा राम कली महला पंजवा पवो चरना तल उपर आवो ऐसी सेव कमावो आपस ते उपर सब जानो तौ दरगह सुख पावो संतो ऐसी कथो कहानी सुर पवित्र नर दे पवित्रा खिन बोलो गुरमुख बाणी रहाओ परपंच छोड़ सहज कर बैसो झूठा कहो ना कोई सतगुर मिलो नवे निध पावो इन बे तत बिलोई परम चुकावो गुरमुख लिव लावो आत्म चीना पाई निकट कर जानो सदा प्रभ हाजर किस्यों कहो बुराई सतगुर मिले मार्ग मुक्ता सहजे मिले स्वामी तन तन से जन जिन्नी कल मैं हर पाया जन नानक सतगुरबानी राम कली महला पंजवा आवत हरखना जावत दुखा नह व्यापै मन रोगनी सदा आनंद गुर पूरा पाया तो उतरी सगल बेयोगनी एह बिध है मन जोगनी मोह सोग रोग लोग ना व्यापै तय हर हर हर रस भोगनी रहाओ स्वर्ग पवित्रा मृत पवित्रा पयाल पवित्र अलोगनी आज्ञाकारी सदा सुख पुंचै जतकत पेखो हर गुनी नह शिव शक्ति जल नहीं पमना तह आकार नहीं मेदनी सतगुर जोग का तहा निवासा जह अवगत नाथ अगम तनी तन मन हर का तन सब हर का हर के गुण हो क्या गनी कहो नानक हम तुम गुर खोई है अंबै अंब मिलोगनी राम कली महला पंजवा त्रै गुण रहत रह निरारी साधक सिद्ध ना जाने रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण सतगुर कै खजाने अचरज किछ कहण ना जाई बसता गोचर पाई रहाओ मोल नाही कछ करने जोगा क्या को कह सुनावै कथन कहन को सोजी नाही जो पेखै तिस बन आवै सोई जाने करने हारा कीता क्या बेचारा अपनी गत मित आपे जाने हर आपे पूर पंडारा ऐसा रस अमृत मन चाखिया तृप्त रहे आ गाई कहो नानक मेरी आसा पूरी सतगुर की सरनाई राम कली महला पंजवा अंगीकार किया प्रभ अपने बैरी सगले साधे जिन बैरी है एह जग लूटिया ते बैरी लै बादे सतगुर परमेसर मेरा अनक राज भोग रस माणी नाव जपी परवासा तेरा रहाओ चीतना आवस दूजी बाता श्री उपर रखवारा बेप्रवाह रहत है स्वामी एक नाम कै आधारा पूर्ण होए मिले सुखदाई ऊन न काई बाता तत सार परम पद पाया छोड़ न कत हूं जाता वर्ण ना सकौ जैसा तू है साचे अलख अपारा अतुल अथाह अडोल स्वामी नानक खसम हमारा
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਤੂੰ ਅਬਜਲ ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਪਾਤੀ, ਤੂੰ ਅਡੋਲ ਕਦੇ ਡੋਲੈ ਨਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਹਮ ਕੈਸੀ ਤਾਤੀ। ਏਕੈ ਏਕੈ ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ, ਏਕੈ ਏਕੈ ਤੂੰ ਰਾਇਆ, ਤਉ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਰਹਾਉ। ਤੂੰ ਸਾਗਰ ਹਮ ਹੰਸ ਤੁਮਾਰੇ, ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਾਣਕ ਲਾਲਾ, ਤੁਮ ਦੇਵੋ ਤਿਲ ਸੰਕ ਨਾ ਮਾਨੋ, ਹਮ ਪੁੰਚੈ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲਾ। ਹਮ ਬਾਲਕ ਤੁਮ ਪਿਤਾ ਹਮਾਰੇ, ਤੁਮ ਮੁਖ ਦੇਵੋ ਖੀਰਾ, ਹਮ ਖੇਲੈ ਸਭ ਲਾਡ ਲਡਾਵੈ, ਤੁਮ ਸਦਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਤੁਮ ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹੇ ਸੰਪੂਰਨ, ਹਮ ਪੀ ਸੰਗ ਅਗਾਏ, ਮਿਲਤ ਮਿਲਤ ਮਿਲਤ ਮਿਲ ਰਹਿਆ, ਨਾਨਕ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਰ ਕਰ ਤਾਲ ਪਖਾਵਜ ਨੈਨੋ, ਮਾਥੈ ਵਜੈ ਰਬਾਬਾ, ਕਰਨੋ ਮਦ ਬਾਸਰੀ ਬਾਜੈ, ਜਿਹਵਾ ਤੁਨਿਆ ਗਾਜਾ। ਨਿਰਤ ਕਰੇ ਕਰ ਮਨੁਆ ਨਾਚੈ, ਆਣੇ ਕੂਗਰ ਸਾਜਾ, ਰਾਮ ਕੋ ਨਿਰਤਕਾਰੀ, ਪੇਖੈ ਪੇਖਨਹਾਰ ਦਿਆਲਾ, ਜੇਤਾ ਸਾਜ ਸਿੰਗਾਰੀ ਰਹਾਉ। ਆਖਾਰ ਮੰਡਲੀ ਧਰਨ ਸਬਾਈ, ਉਪਰ ਗਗਨ ਚੰਦੋਵਾ, ਪਵਨ ਵਿਚੋਲਾ ਕਰਤੇ ਅਕੇਲਾ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਤ ਹੋਵਾ। ਪੰਚ ਤਤ ਕਰ ਪੁੱਤਰਾ ਕੀਨਾ, ਕਿਰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਵਾ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੁਇ ਜਰੇ ਚਿਰਾਗਾ, ਚਹੋ ਕੁੰਟ ਭੀਤਰ ਰਾਖੇ, ਦਸ ਪਾਤੋ ਪੰਚ ਸੰਗੀਤਾ, ਏਕੈ ਪੀਤਰ ਸਾਥੇ। ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਹੋਏ ਭਾਵ ਦਿਖਾਵੈ, ਸਭੋ ਨਿਰਾਰੀ ਭਾਖੇ, ਘਰ ਘਰ ਨਿਰਤ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਤੂਰਾ, ਏਕ ਨਚਾਵੈ ਏਕ ਪਵਾਵੈ, ਇਕ ਆਏ ਜਾਏ ਹੋਏ ਤੂਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਬਹੁਰ ਨਾ ਨਾਚੈ, ਜਿਸ ਗੁਰ ਭੇਟੈ ਪੂਰਾ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਓਵੰਕਾਰ ਏਕ ਤੁਨ ਏਕੈ, ਏਕੈ ਰਾਗਾ ਲਾਪੈ, ਏਕਾ ਦੇਸੀ ਏਕ ਦਿਖਾਵੈ, ਏਕੋ ਰਿਆ ਵਿਆਪੈ, ਏਕਾ

पंच बचित्र करे संतोखा सात सुरा लै चाल बाजा मान तान ताई ताना पाओ न बिंगा कल फेरी फेर न होवे कभी एक शब्द बंद पाल नारदी नरहर जान हदूरे कुंगर खड़ग त्याग विसूरे सहजानंद दिखावे पावे यो नृतकारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकर पावे कोट मद एहो कीर्तन गावे साध संगत की जावो टेक कहो नानक तिस कीर्तन एक।

कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू, कोई बंश है पिस्त, कोई सुरग हिंदू। कहो नानक जन हुक्म पछाता, प्रभ साहेब का तन भेद जाता। राम कली महला पंजवा, पवन मैं पवन समाया, ज्योति मैं ज्योत रल जाया। माटी माटी होई एक, रोवन हारे की कमन टेक।

जप नाथ दिन रह नाई तेरी खिंथा दो दिहाई रहाओ। गहरी बिपूत लाए बैठा ताड़ी मेरी तेरी मुंद्रा तारी। मांगै टूका तृप्त ना आवै नाथ छोड़ जाचे लाज ना आवै। चल चित जोगी आसन तेरा सिंगी वाजै नित उदासेरा। गुर गोरख की तै बूझ ना पाई फिर जोगी आवै जाई। जिसनो होवा

संत हमारी निर्मल रास, संत हमारा राखिया पड़दा, संत प्रसाद मोए कबू ना करदा, संत संग दिया कृपाल, संत सहाई पय दयाल, सुरत मत।

ताप कपट खुलाने भ्रम नाठे दूरे नानक कौ गुर पेटे पूरे। राम कली महला पंजवां कोट जापता विश्राम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनक रूप रंग भोग रसै गुरमुख नाम निमख हृदय वसै हर के नाम की वडियाई कीमत कहण न जाई रहाओ। सूर बीर तीरज मत पूरा सहिस मातुन गहर गंभीरा सदा मुक्त ताके पूरे काम जा कर दे वसे हर नाम। सगल सुख या नांद्या रोग समदर्शी पूर

रहाओ जब उसको कोई देवे मान तब आपस ऊपर रखे गुमान। जब उसको कोई मन पर हरे तब यो सेवक सेवा करे मुख बेरावे अंत ठगावे एक ठौर ओ कई ना सुमावे। उन मोहे बहुते ब्रह्मंड राम जनी कीनी खंड खंड जो मांगे सो भूखा रह इस संग राचे सो कछु ना लह। ऐसे त्याग सत्संगत करे वडभागी नानक हो तरह। राम कली महला पंजवां आत्म राम सर्व मैं पेख पूर्ण पूर रहा प्रभ एक। रत्न मोल हृदय मैं जान अपनी वस्तु पछान पी अमृत संतन प्रसाद। वड़े भाग होवे तो पाइए बिन जेवा क्या जाने स्वाद। रहाओ अठ दस वेद सुने कह डोरा कोट प्रगास ना दिसे अंधेरा। पशु प्रीत का संग रचे जिसने बुझावे सो कित बिद बुझे। जानन हार रहया प्रभ जान ओत पोत भगतन संगान। बिगस बिगस अपना प्रभ गावे नानक तिन जम नेण न आवे। राम कली महला पंजवा दीनो नाम कियो पवित हर तन रास निरास ए बित। काटी बंद हर सेवा लाए हर हर भगत राम गुण गाए। बाजे अनहद बाजा रसक रसक गुण गावे हर जनो अपने गुरुदेव निवाजा। रहाओ आए बनयो पूर्वला भाग।

सदा आनंद न होवी सोग, कबू न व्यापै हमै रोग। खोजो संतो हर ब्रह्म ज्ञानी, बिस्मन बिस्म भय बिस्मादा। परमगत पावै हर सिमर प्राणी रहाओ। गन मिन देखो सगल विचार, नाम बिना को सकै ना तार। सगलो पावना चल संग, पव जल तरिय।

मिट जाए कर कृपा पार ब्रह्म दयाल मानते कबो न विसर गोपाल तेरे दास की हो मातूर नानक की प्रभ सरदा पूर राम कली महल्ला पंजवा तेरी शरण पूरे गुरुदेव तुझ में दूजा नाहीं कोए तू समरथ पूर्ण पार ब्रह्म सो त्याए पूरा जिस कर्म तरण तारण प्रभ तेरो नाओ एका शरण गही मन मेरा तुझ बिन दूजा नाहीं ठाओ रहाओ जप जप जीवा तेरा नाओ अगे दरगे पावो ठाओ दुख अंधेरा मन ते जाए दुरमत बिनसै रचै हर नाए चरण कमल स्यों लागी प्रीत गुरपुरे की निर्मल रीत पाओ भागा निरपव मन बसै अमृत नाम रसना नित जपै कोट जन्म के काटे फाहे पाया लाभ सच्चा तन लाहे तोट न आवै अखुट भंडार नानक भगत सोहै हर द्वार राम कली महला पंजवा रतन जिवे हर नाम सत संतोख ज्ञान सुख सहज दया का पोता हर भगता हवाले होता मेरे राम को भंडार खात खर्च कष्ट उठ न आवै अंत नहीं हर पारावार रहाओ कीर्तन निर्मोल कहीरा आनंद गुणी गहीरा अनहद बाणी पूंजी संतन हथ राखी कुंजी सुन समाद गुफा तय आसन केवल ब्रह्म पूर्ण तय बासन भगत भगत संग प्रभ गोष्ट करत तय हरख ना सोग ना जन्म ना मरत कर कृपा जिस आप देवाया साध संग तिन हर तन पाया दयाल पुरख नानक अरदास हर मेरी वर

अवतार न जाने अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत, अपनी गाते आप जाने, सुन सुन अवर वखाने रहाओ, संकरा नहीं जाने पेव, खोज तहारे देव, देविया नहीं जाने मर्म, सभी ऊपर अलख पार ब्रह्म, अपना रंग करता केलो, आप बिछोरे आपे मेल, एक परमे एक भक्ति लाए, अपना किया आप जनाए, संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो पेखे आखी, नहीं लेप तिस्पुन्ना पाप, नानका प्रभ आपे आप, राम कली महला पंजवा, किशु काजना कियो जान, सुरत मत नाही किश ज्ञान, जाप ताप सील नहीं धर्म, किशु ना जानो कैसा कर्म, ठाकुर प्रीतम प्रभ मेरे, तुझ बिन दूजा अवर ना कोई, भूले चूके प्रभ तेरे रहाओ, रिद ना बुद्ध ना सिद्ध प्रगास, बिखे ब्याद के गाव में बास, करण हार मेरे प्रभ एक, नाम तेरे की मन में टेक, सुन सुन जीवो मन एहो विश्राम, पाप खंडन प्रभ तेरो नाम, तू अगंत जी का दाता, जिसे जनाम है तिन तू जाता, जो उपायो तिस तेरी आस, सगला राधा है प्रभ गुणतास, नानक दास तेरे कुर्बान, बेअंत साहेब मेरा मेहरबान, राम कली महला पंजवा, रखन हर दयाल, कोट पव खंडे निमख ख्याल, सगल अराधय जंत, मिलिया प्रभ गुर मिलमंत, जियन को दाता मेरा प्रभ, पूर्ण परमेश्वर स्वामी, घट घट राता मेरा प्रभ रहाओ, ताकि गही मन ओट, बंधन ते होई छोट, हृदय जप परमानंद, मन माहे पय आनंद, तारण तरण हर शरण, जीवन रूप हर चरण, संतन के प्राण आधार, ऊचे ते ऊचे अपार, सुमत सार।

सगल सियान पिछाड़ कर सेवा सेवक साज अपना आप सगल मिटाए मन चिंदे से ही फल पाए हो सावधान अपने गुर स्यों वासा मनसा पूर्ण होवे पावे सगल निधान गुर स्यों रहाओ दूजा नहीं जाने कोए सतगुर निरंजन सोए मानुख का कर रूप न जान मिली न माने मान गुर की हर टेक टकाए अवरे आसा सब लाहे हर का नाम मांग निधान ता दरगह पावे मान गुर का बचन जप मंत एहा भगत सार तत् सतगुर पै दयाल नानक दास निहाल राम कली महला पंजवा होवे सोई पहलमान अपना तजा मान दिन रहन सदा गुण गाओ पूर्ण ही सो आओ आनंद कर संत हर जप छाड़ सियाणप बहु चतराई गुर का जप मंत निर्मल रहाओ एक की कर आस भीतर निर्मल जप नाम हर हर गुर के चरण नमस्कार भवजल उतरे पार देवन हार दा तार अंतना पारा वार जाके कर सर्ब निदान रखन हार निदान नानक पाया एहो निदान हरे हर निर्मल नाम जो जपे तिसकी गत होए नानक कर्म प्राप्त होए रामकली महला पंजवा दुलभ देह सवार जाए ना दरगह हार हलत पलत तुदोए वड्याई अंत की बेला ले छड़ाई राम के गुण गाओ हालत पलत होहे दो है सुवेले अचरज पुरख ते आओ रहाओ उठत बैठत हर जाप बिनसह सगल संताप बैरी सब होवे मीत निर्मल तेरा होवे चीत सब ते उत्तमे हो कर्म सगल धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर सिमरन तेरा होए उधार जन्म जन्म का उतरै पार पूर्ण तेरी होवे आस जमकी कटिया तेरी फास गुर का उपदेश सुनीजै नानक सुख सहज।

बूढ़त लोहो साध संग तरह नानक छा प्राप्त करै। रामकली महला पंजवा मन माहे जा भगवंत गुरपुरै हो दीनो मंत मिटे सगल पैतरास पूर्ण होई आस सफल सेवा गुरदेवा कीमत किश कहण ना जाई साचे साचा लाखा पेवा रहाओ। करन कराम ने आप तिस को सदा मन जाप तिसकी सेवा करनी तो सच सहि सुख पावे मीत। साहेब मेरा अत भारा खिन मैं था प्यो था पनहारा तिस बिन अवर ना कोई जन का राखा सोई। कर कृपा अरदास सुनी जय अपने सेवक को दर्शन दी जय नानक जापी जब जाप सब ते ऊजा का प्रताप। राम कली महला पंजवा बिरथा प्रवासा लोक ठाकर प्रभ तेरी टेक अवर छूटी सब आस अचिंत ठाकर भेटे गुणतास। एको नाम त्याय मन मेरे कार्य तेरा होवे पूरा हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ। तुम ही कारण करण चरण कमल हर शरण मन तन हर ओही ते आया आनंद हर रूप दिखाया। तिस ही की ओर सदीव जाके कीने है जीव सिमरत हर करत निदान रखन हार निदान। सर्व की रेण हो बीजै या मिटाए मलीजै अंदिन त्याई नाम सफल नानक हो काम। राम कली महला पंजवा कारण करन करीम सर्व प्रतपाल रहीम अल्लै लाख्या पार खुद खुदाए वड बेसुमार। ओ नमो भगवंत गुसाई खालक रव रया सर्व ठाई रहाओ। जगनाथ जग जीवन माधो पौ पंजन रिद माया राधो रिखी केस गोपाल गोविंद पूर्ण सर्वत्र मुकंद।

राम नाम जब सदा सुहेले, सगल बिना से रोग कूरा रहाओ। एक अरादो साचा सोए, जाकी शरण सदा सुख होए। नींद सुहेली नाम की लागी भूख, हर सिमरत बिन सह सब दुख। सहज आनंद करो मेरे भाई, गुरपूरै सब चिंत मिटाई। आठ पहर प्रभ का जप जाप, नानक राखा हो आयाप। राग राम कली महला पंजवां, पड़ताल करती जा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नर नर है नमस्कारं, जलन थलन बस गगन एक।

क्यों लागी निवरै प्रताप, गुर कै शब्द रचै मन पाए, भिख्या सहज विचारी खाए, भस्म चढ़ाए करै पाखंड, माया मोहे सहजम दंड, फूटै खापर पीख ना पाए, बंधन बांध्या आवै जाए, बिंदना राखै जती कहावै, माई मांग तो त्रै लोभ आवै, निर्दया नहीं जो तो जाला, बूढ़त बूढ़े सर्व जंजाला, पेख करै खिंथा बहु थटुआ, झूठो खेल खेलै बहु नटुआ, अंतर अगन चिंता बहु जारे, विणकर्मा कैसे उतर सपारे, मुंद्रा फटक बनाई कान, मुक्त नहीं विद्या विज्ञान, जेहवा इंद्री साध लोबाना, पशु पय नहीं मिटै निशाना, तिरबद लोगा तिरबद जोगा, शब्द विचारै चूक सोगा, उज्जल साच सो शब्द होए, जोगी जुगत विचारे सोए, तुझ पह नौ निद तू करना जोग, थापो थापे करे सोहोग, जात सत संजम सच सोचीत, नानक जोगी तिर पवन मीत, रामकली महला पहला, खट मट देही मन बैरागी, सुरत शब्द तुने अंतर जागी, वाजे अनहद मेरा मन लीना, गुरबचनी सचनाम पतीना, प्राणी राम पग सुख पाई है, गुरमुख हर हर मीठा लागै, हर हर नाम समाई है रहाओ, माया मोह विवर्ज समाए, सतगुर पेटै मिल मिलाए, नाम रतन निर्मोल कहीरा, तितराता मेरा मन तीरा, हम मैं ममता रोग न लागै, राम पग जम का पौ भागै, जम जम दार न लागै मोहे, निर्मल नाम हृदय हर सोहे, शब्द विचार पय निरंकारी, गुरमत जागे दुरमत परहारी, अंदन जाग रहे लिवलाई, जीवन मुक्त गति अंतर पाई, अलिप्त गुफा में रहे निरारे, तस्कर पंचो सब संगारे, पर कर जाए न मन डोलाए, सहज निरंतर रहो समाए, गुरमुख जाग रहे अवधूता, सतवै रोगी तत्परोता, जग सूता मरिया वह जाए, बिन गुर शब्द ना सोजी पाए, अनहद शब्द वजह दिन राती, अवगत की गत गुरमुख जाति, तौ जानी जा शब्द पछानी, एको रव रहा निर्वाणी, सुन समाज सुन समाध सहज मन राता, तजहो लोभा एको जाता, गुर चेले अपना मन मानिया, नानक दूजा मेट समानिया, राम कली महला पहला, साहा गणे ना करे बिचार, साहे उपरे एकंकार, जिस गुर मिले सोई बिद जाने।

गण गण जोत कुकंडी कीनी, पढ़े सुनावै तत न चीनी, सब सही उपर गुर शब्द विचार, होर कथनी बदौ न सगली शार। नावै तोवै पूजै सैला, बिन हर रातो मैलो मैला, गर्भ निवार मिलै प्रभ सार्थ, मुक्त प्राण जप हर कृतार्थ। वाचै वादना वेद विचारै, आप डुबै क्यों पितरा तारै, घट घट ब्रह्म चीनै जन कोए, सतगुर मिलै ता सोजी होए। गणत गणीयै सहसा दुख जीयै, गुर की शरण पवै सुखती है। कार्य अपराध शरण हम आया, गुर हर बेटे पुरख कमाया, गुर शरण ना आईयै ब्रह्म ना पाईयै, परम भुलाईयै जन मरियाईयै। जम दरबा दो मरै बेकार, नारद नाम ना शब्दाचार, एक पांदे पंडित मिस्र कहावै, दुबदारा ते महल ना पावै, जिस गुर प्रसादी नाम आधार, कोट मदे को जन अपार। एक बुरा भला सच एक, बूझ ज्ञानी सतगुर की टेक, गुरमुख विरली एको जानिया, आवन जाना मेट समाणिया। जिनकै हृदय एक अंकार, सर्वगुणी साचा विचार, गुर कै पाणे कर्म कमावै, नानक साचे साच समावै। आराम कली महला पहला, हठ निग्रह कर काया छीजै, वर्त तपन कर मन नहीं पीजै, राम नाम सर अवरना पूजै, गुर से मना हर जन संग कीजै, जम जनदार जोहे नहीं सकै, सरपन डस ना सकै, हर का रस पीजै, रहाओ वाद पड़ै रागी जग पीजै, त्रैगुण बिखिया जन मरीजै, राम नाम बिन दुख सहीजै, चारस पवन सिंहासन पीजै, न्यौली कर्म खट कर्म करीजै, राम नाम बिन बिरथा सास लीजै, अंतर पंच अगन क्यों तीर जतीजै, अंतर चोर क्यों साध रहीजै, गुरमुख होए काया गड़ली जै, अंतर मैल तीर्थ परमी जै, मन नहीं सूचा क्या सोच करी जै, किरत पया दोष का कौ दी जै, आना खाहे देही दुख दी जै, बिन गुर ज्ञान तृप्त नहीं थी जै, मनमुख जन्म जन्म मरी जै, सदगुर पूछ संगत जन की।

नानक नाम मिले कृपा प्रभ की जय। राम कली महला पहला अंतर उत्पुज अवर ना कोई, जो कही ऐसो प्रभते होई जुगे जुगंतर साहिब साहिब सोई, उत्पुत परलो अवर ना कोई ऐसा मेरा ठाकर गहर गंभीर, जिन जपया तिन्हीं सुख पाया हर कै नाम ना लगे जंपीर। रहाओ नाम रतन हीरा निर्मोल, साचा साहेब अमरिया तोल जेवा सूची साचा बोल, कर दर साचा नाही रोल एक बन में बैसे डूगरिया स्थान, नाम विसार पचाया अवमान नाम बिना क्या ज्ञान ध्यान, गुरमुख पावे दरगह मान हठ हंकार करे नहीं पावे, पाठ पढ़े ले लोक सुनावे तीर्थ परमस ब्याद ना जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे जतन करे बिंद किवे ना रहाई, मनुआ डोले नर के पाई जंपर बांधे लह सजाई, बिन नावे जियो जल बल जाई सिद्ध साधक केते मुन देवा, हठ निग्रह ना तृप्तावे पेवा शब्द विचार गह गुरसेवा, मन तन निर्मल अवमान्या पेवा कर्म मिलाए पावे सच नाओ, तुम शरणागत रहो।

पंडी हुक्म बुझै सो योगी कहिया एक स्यों चित लाए सहसा टूटै निर्मल होवै जोग जुगत इव पाए नदरी आवंदा सब किश बिनसै हर से ती चित लाए सतगुर नाल तेरी भावनी लागै ता एह सोजी पाए एहो जोग ना होवै जोगी जे कुटुंब छोड़ पर पवन करै ग्रह शरीर में हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रबल है एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया अनेक जतन पेख करै जोगी रोग ना जाए गवाया हर का नाम औखद है जोगी जिसनो मन वसाए गुरमुख होवै सोई बूझै जो जुगत सो पाए जोगै का मार्ग बिखम है जोगी जिसनो नदर करे सो पाए अंतर बाहर एको वेखै विचों परम चुकाए विण वजाई किंगरी वाजै जोगी सा किंगरी वजाए कह नानक मुक्त होवै जोगी साचे रहै समाए राम कली महला तीजा भगत खजाना गुरमुख जाता सतगुर बूझ बुझाई संतो गुरमुख दे वड़ियाई रहाओ सच रहो सदा सहज सुख उपजै काम क्रोध विचों जाई आप छोड़ नाम लिव लागी ममता शब्द जलाई जिसते उपजै तिसते बिनसै अंते नाम सिखाई सदा हजूर दूर न देखो रचना जिन रचाई सच्चा शब्द रवै कट अंतर सच्चे सो लिव लाई सतसंगत में नाम निर्मोलक वड्डे पाग पाया जाई भरम ना चुकाओ सतगुर सेवाओ मन रखो इकठाई बिन नाम ऐसा पूली फिरदी बिरथा जन्म गवाई जोगी जुत गवाई हंडै पाखंड जोग ना पाई शिव नगरी में आसन बैसै गुरसबदी जोग पाई तातर बाजी शब्द निवारे नाम वसै मन आई एहो शरीर सरवर है संतो इशनान करे लिव लाई नाम इशनान करै से जन निर्मल शब्दे मैल गवाई त्रै गुण अचेत नाम चेतै नाही बिन नामै बिन सजाई ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै मूर्त त्रै गुण परम पुलाई गुर प्रसादी त्रिगुटी छूटै चौथै पद लिव लाई पंडित पढ़ै पढ़वाद वखाणै तिन्ना बूझ न पाई बिखिया माते परम पुलाए उपदेश कह किस पाई भगत जना की उत्तम बाणी जुग जुग रही समाई।

मनसा मार मन सह समाणा बिन रसना उस्तत कराई, लोयन देख रहे बिस्मादी चेता दिष्ट लगाई। अदिष्ट सदा रहे निरालम ज्योति ज्योत मिलाई, हाँ गुरसा लाही सदा अपना जिन साची बूझ बुझाई। नानक एक है बेनंती नाम गत पत पाई, राम कली महला तीजा हर की पूजा दुलंब है संतो कहना कछु न जाई। संतो गुरमुख पूरा पाई नामो पूज कराई रहाओ, हर बिन सब किश मैला संतो क्या हो पूज चढ़ाई। हर साचे पावे सा पूजा होवे पाणा मन वसाई, पूजा करे सब लोग संतो मन मुक्ताए ना पाई। शब्द मरे मन निर्मल संतो एह पूजा थाए पाई। पवित्र पावन से जन साचे एक शब्द लिव लाई, बिन नामे होर पूजना होवी परम भुली लोकाई। गुरमुख आप पछाणे संतो राम नाम लिव लाई, आपे निर्मल पूज कराए गुर शब्दी थाए पाई। पूजा करे पर विद नहीं जाने दूजे पाए मल लाई, गुरमुख होवे सो पूजा जाने पाणा मन वसाई। पहाने ते सब सुख पावे संतो अंते नाम सखाई, अपना आपना पछाणे संतो कूड़ करे वड्याई। पाखंड कीने जम नहीं छोड़े लै जासी पत गवाई, जिन अंतर शब्द आप पछाणे गत मित तिन ही पाई। एहो मनुआ सुन समाद लगावै ज्योति ज्योत मिलाई, सुन सुन गुरमुख नाम वखाणे सतसंगत मिलाई। गुरमुख गावै आप गवावै दर सचै शोभा पाई, साची बाणी सच वखाणे सच नाम लिवलाई। पै भंजन अत पाप निखंजन मेरा प्रभ अंत सिखाई, सब किश आपे आप वरतै नानक नाम वड्याई। राम कली महला तीजा हम कुचल कुचील अत अभिमानी, मिल सबदे मैल उतारी संतो गुरमुख नाम निस्तारी। सच्चा नाम वस्या कट अंतर करतै आप सवारी रहाओ, पारस परसे फिर पारस होए हर जीव अपनी कृपा तारी। एक भेख करे फिर अभिमानी तिन जुए बाजी हारी, एक आंदन भगत करे दिन राती राम नाम उर तारी। आंदन राते सहजे माते सहजे हों मैं मारी, पै बिन भगत ना होई कभी पै पाए भगत सवारी। माया मोह शब्द जलाया ज्ञान तत् बिचारी, आपे आप कराए करता आपे बख्श भंडारी। तिस क्या गुणा का अंत ना पाया हों गावा शब्द विचारी। हर जियो जपी हर जियो सा लाही विचों आप निवारी, नाम पदार्थ गुरते पाया खुट सचे भंडारी। अपनिया भगतां नू आपे तुठा अपनी किरपा कर कल तारी। तिन साचे नाम की सदा भुख लागी गावन शब्द विचारी। जियो पिंड सब किश है तिसका आखण बिख विचारी, शब्द लगे से जन निस्तरे पौजल पारे उतारी। बिन हर साचे को पार ना पावे बूझे को विचारी, जो तुर लिखिया सोई पाया मिल हर शब्द सवारी। काया कंचन शब्दे राती साचे नाए प्यारी, काया अमृत रही पर पूरे पाइये शब्द विचारी। जो प्रभ खोजे से ही पावे होर फूट मोए हंकारी, बादी बिन सह सेवक सेवै गुर कै हित प्यारी। सो जोगी तत् ज्ञान विचारे हम मैं तृष्णा मारी, सतगुर दा

अवर न कर न जाई, आपे साजे सृष्टि उपाए सिर सिर धंधा लाई, तिसै सरेबो ता सुख पावो सतगुर मेल मिलाई। अपना आपो पाए अलख न लखना जाई, आपे मार्जी वाले आपे तिसनो तिल ना तुमाई।

राम कली महला पंजवा जी जंत सब पेखिए प्रभ सगल तुम्हारी धारणा एहो मन हर के।

काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बिदारणा। नाम जपत मन निर्मल होवे सुखे सुख गुदारना। भगत सरण जो आवे प्राणी तिस इहां उहां ना हारना। सुख दुख इस मन की बिरथा तुम ही आगे सारना। तू दाता सबना जिया का अपन किया पालना। अनक बार कोट जन ऊपर नानक वन्य वारना। राम कली महला पंजवा अष्टपदी एको ओंकार सतगुर प्रसाद। दर्शन पेटत पाप सब नासै हर स्यों दे मिलाई। मेरा गुर परमेसर सुखदाई पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए अंते होए सखाई। रहाओ सगल दुख का डेरा पन्ना संत धूर मुखलाई। पतत पुनीत की अखन पीतर अज्ञाना देर वंजाई। करण कारण समरथ स्वामी नानक ते शरणाई। बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए एक शब्द लिवलाई। अंधकूप बिखिया ते काढ़ियो सात शब्द बने आई। जन्म मरण का सहसा चूका बाहुड़ कतो ना ताई। नाम रसायण एहो मन राता अमृत पी तृपताई। संत संग मिल कीर्तन गाया निचल वस्या जाई। पूरे गुर पूरी मत दीनी हर बिनयान ना पाई। नाम निधान पाया वड भागी नानक नरक ना जाई। काल सियाणप उकतना मेरी पूरे गुरु कमाई। जप तप संजम सोच है सोई आपे करे कराई। पुत्र कलत्र महा बिखिया मैं गुरसाचै लाए तराई। अपने जीता आप संभाले आप लिए लड़ लाई। साज धर्म का बेड़ा बांधया पवजल पार पवाई। बेसुमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई। अकाल मूर्त अजूनी संपो काले अंधकार दीपाई। अंतरजामी जियन का दाता देख तृप त्यागाई। एक अंकार निरंजन निरपो सब जल थल रया समाई। भगत दान भगता को दीना हर नानक जाचै माई। राम कली महला तीजा राम कली महला पंजवा सलोक। सिखो शब्द प्यारे ओ जन्म मरण की टेक। मुख उज्जल सदा सुखी नानक सिमरत एक। मंत्रण राता राम प्यारे हर प्रेम भगत बन आई संतो। सतगुर खेप निबाही संतो हर नाम लहा दास को दिया सगली तृष्ण उलाही संतो। रहाओ खोजत खोजत लालिक पाया हर कीमत कहन ना जाई संतो। चरण कमल स्यों लागो ध्याना साचै दर्श समाई संतो। गुण गावत गावत पए निहाला हर सिमरत तृप्त्याग आई संतो। आत्म राम रविया सब अंतर कत आवे कत जाई संतो। आदि जुगादी हैपी होसी सब जिया का सुखदाई संतो। आप बेअंत अंत नहीं पाई है पूर रया सब ठाई संतो। मीत साजन माल जोबन सोत हर नानक बाप मेरी माई संतो। राम कली महला पंजवा मान बच कर्म राम नाम चितारी। कुमन केर महात बिखड़ी गुरमुख नानक पार उतारी। रहाओ अंतर सूखा बाहर सूखा हर जप मलन पए दुष्टारी। जिसते लागे इतने निवारे प्रभ जीव अपनी कृपा तारी। उदरे संत परे हर सरणी पच बिन से महा अहंकारी। साधु संगत एहो फल पाया एक केवल नाम आधारी। ना कोई सूर ना कोई हीणा सब प्रगति जो तुम्हारी। तुम समराथया काथा गोचर रव्या एक मुरारी। कीमत कौन कर

लभ लोभ अहंकार ता तृष्णा बहुत नाही बोलना खन्यो तिखी वालो निकी एत मार्ग जाना गुरप्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समाणी कहे नानक चाल भगता जुगो जुग निराली ज्यो तू चलाए हे तिव चले स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे जिव तू चलाए हे तिवै चल है जिन्ना मार्ग पावहे कर कृपा जिन नाम लाए हे से हर हर सदा त्यावहे जिसनों कथा सुना है अपनी से गुरुद्वारे सुख पावहे कहे नानक सच्चे साहेब जो पावै तिवै चलावहे एहो सोहेला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहेला सतगुरु सुनाया एहो तिन कै मन वसिया जिन तुरों लिखिया आया एक फिरै कनेरे करे गल्ला गली किनै ना पाया कहे नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया पवित होए सेजना जिनी हर त्याया हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटुंब सहित स्यों पवित संगत सवाईया कहिंदे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया कहे नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया करमी सहज ना उपजै विण सहजै सहसा ना जाए नह जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कुमाए सहस जियो मलीन है कित संजम तोता जाए मन तोहवो शब्द लागो हर स्यो रहो चित लाए कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै एहो सहसा इव जाए।

कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग मैं आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन न वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया, कह नानक एहो शरीर प्रमाण होवा, जिन सतगुर स्यों चित लाया। ए नेत्रो मेरे ओ हर तुम मैं जो धरी, हर बिन अवर ना देखो कोई, हर बिन अवर ना देखो कोई, नदरी हर निहालिया। एहो विस संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया, जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर ना कोई, कह नानक हे नेत्र अंध से, सतगुर मिलिया दिव दृष्ट होई। ए श्रवणो मेरे हो, साचै सुनै नो पठाए, साचै सुनै नो पठाए, शरीर लाए, सुनो सत बाणी, जित सुनी मंतन हरिया हो, वरसना रस समाणी, सच अलख विडाणी, ता की गत कही ना जाए, कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो, साचै सुनै नो पठाए। हर जियो गुफा अंदर रख कै, वाजा पवन वजाया, वजाया वाजा पौन नौ द्वारे, प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया, गुरुद्वारे लाए पावनी, एक ना दसवां द्वार दिखाया, तह अनेक रूप नाव नाम ने दो, तिसदा अंत ना जाई पाया, कह नानक हर प्यारे, जियो गुफा अंदर रख कै, वाजा पवन वजाया। एहो साचा सोहेला, साचै कर गावहो, गावहो ता सोहेला कर साचै, जिथे सदा सच ते आवहे, सचो ते आवहे, जा तुद पावै, गुरमुख जिना बुझावहे। एहो सच सबना का खसम है, जिस बख्से सो जन पावहे, कह नानक सच सोहेला, सचै कर गावहे। आनंद सुनहो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पए सरसे, पूरे गुरते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया पर पूरे, बिनवंत नानक।

राम कली सद एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोए भगत वछल ते होलोए जियो गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोए जियो अवर ना जाने शब्द गुर कै एक नाम ते आवे प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावे आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया जग अमरिया टालिया तोल ठाकर भगत ते हर पाया हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रपाह जियो सतगुर करे हर पह बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो पैज रखो हर जने केरी हर देहो नाम निरंजनो अंत चलदिया होए बेली जमदूत काल निखंजनो सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो हर तार कृपा सतगुर मिलाया तन तन कह साबाह जियो मेरे सिख सुनो पुत पाई हो मेरे हर पाणा आओ मैं पास जियो हर पाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाणा पावे आनंद अनहद वजह वाजे हर आप गल मेलावे तुसी पुत पाई परवार मेरा मन वेखो कर निर्जाह जियो तुर लिखिया प्रवाणा फिर नाही गुर जाए हर प्रपाह जियो सतगुर पाणे अपने बह परवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोग सी सो मैं मूल ना पाया मित पैजै मित बिकसै जिस मित की पैज पावे तुसी विचार देखो पुत पाई हर सतगुरु पैनावे सतगुरु प्रतख होंदै बहराज आप टिकाया सब सिख बंदप पुत पाई रामदास पैरी पाया।

महागर्भ मुठिया जलबाज मछली तड़फड़ावे संग माया रुठिया कर पाप जोनी पै पीत होई दे ससन जाम जियो बिनवंत नानक ओढ़ तेरी राख पूर्ण काम जियो सलोक सरदा लागी संग प्रीत मैं एक तिल रहन ना जाए मन तन अंतर रव रहे नानक सह सुभाए कर गैलीनी सजने जन्म जन्म के मीत चरने दासी कर लई नानक प्रभित चीत शंत रुत बरस सुहेलिया सावन भादवे आनंद जियो कण उन्म उठे जल थल पूरिया मकरंद जियो प्रभ पूर रहया सर्ब ठाई हर नाम नवनित गृह भरे सिमर स्वामी अंतर जामी कुल समूहा सब तरे प्रेरंग जागे ने शिदर लागे किरपाल सद बख्शेंद जियो बिनवंत नानक हर कंत पाया सदा मन पावंद जियो सलोक आस प्यासी मैं फिराऊं कब पेखां गोपाल है कोई साजन संत जन नानक प्रभ मिलनहार बिन मिल बे सांत ना उपजै तिल पल रहन ना जाए हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए शंत रुत सर्द अडंबरो असू कतके हर प्यास जियो खोजंती दर्शन फिरत कब मिलिए गुणताह जियो बिनकंत प्यारे ने सूख सारे हार कंगण त्रिग बना सुंदर सुजान चतर बेती सास बिन जैसे तना ईत ओत दह दिसै लोकन मन मिलन की प्रभ प्यास जियो बिनवंत नानक तार कृपा मिलो प्रभ गुणताह जियो सलोक जलन बुझी शीतल पै मन तन उपजी सांत नानक प्रभ पूर्ण मिले दुतिया बिनसी प्रांत साध पठाए आप हार हम तुमते नाही दूर नानक भ्रम पै मिट गए रमन राम भरपूर शंत रुत सिसियर शीतल हर प्रगटे मंगर पोहे जियो जलन बुझी दर्श पाया बिन से माया तो जियो सब काम पूरे मिल हजूरे हर चरण सेवक सेवया हार डोर सिंगार सब रस गुण गाओ लाखा पेवया पाओ भगत गोविंद बांशत जमना साकै जोहे जियो बिनवंत नानक प्रभ आप मेली तहना प्रेम बिश हो जियो सलोक हर तन पाया सोहागणी डोलत नाही चीत संत संजोगी नानका गृह प्रगटे प्रभ मीत नाद बिनोद आनंद कोड प्रे प्रीतम संग बने मन बाइथ फल पाया हर नानक नाम पर।

आए मंत आए से सुंदर सोहिया वन त्रैण त्र पवन पए हरिया देख दर्शन मोहिया मिले स्वामी इच पुन्नी मन जपया निर्मल मंत जियो फिर मंत नानक नित करो रलिया हर मिले श्री तरकंत जियो सलोक संत सहाय जी के पव जल तारन हार सब ते उचे जानिए नानक नाम प्यार जिन जानिया सही तरे से सूरे से बीर नानक तिन बलिहारने हर जप उतरे तीर शंत चरण विराजत सब ऊपरे मिटिया सगल क्लेश जियो आवन जावन दुख हरे हर भगत किया प्रवेश जियो हर रंग राते सहज माते तिल ना मनते बिसर तज आप सरनी परे चरनी सर्व गुण जगदीश्वर गोविंद गुण निध श्री रंग स्वामी आद कौवा देह जियो बिनवंत नानक मया तारो जुग जुगो एक वेश जियो राम कली महला पहला दखनी ओ अंकार एक ओंकार सतगुर प्रसाद

ओंकार शब्द उधरे ओंकार गुरमुख तरे ओ नम अखर सुनो विचार ओ नम अखर त्रिपवन सार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाओ सस्य सब जग सहज उपाया तीन पवन एक ज्योति गुरमुख वस प्राप्त हो वै चुन लै मानक मोती समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै सा समाले बिन साचे जग काचा तदै धर्म धरे धर्मापुर गुणकारी मन तीरा तदै तूल पड़े मुख मस्तक कंचन पहे मनूरा तन तरनी तर आप जोनी तोल बोल सच पूरा करते की मित करता जाने कह जाने गुरसूरा ज्ञान गवाया दूजा पाया गर्भ गले बिख खाया गुरस गीत बाद नहीं पावे सुनिए गहर गंभीर गवाया गुर सच कहया अमृत लहया मंतन साज सुखाया आपे गुरमुख आपे देवे आपे अमृत पी आया एको एक कह सब कोई हम मैं गर्भ व्यापै अंतर बाहर एक पछाण इं कर महर सियापै प्रभ नेड़े हर दूर न जान हो एको सृष्ट सवाई एक अंकार अवर नहीं दूजा नानक एक समाई इस करते कहो क्यों गह राखो अफरियो तुल्यो न जाई माया के देवाने प्राणी झूठ गौरी पाई लब लोभ मोहताज विगूते इब तब फिर पछताई एक सिरे वै ता गतमित पावै आवन जान रहाई एक आचार रंग एक रूप पौन पानी अग्नि अस्वरूप एको पवर पवै तिहो लोए एको बूझै सूझै पत होए ज्ञान ध्यान ले समसर रह गुरमुख एक विरला कोल है जिसनों दे कृपा ते सुख पाए गुरु द्वारे आग सुनाए ऊरम तूरम ज्योति उजाला तीन पवन मैं गुर गोपाला ऊग व्या असरूप दिखावै कर कृपा अपने कर आवै ऊन बरसै निजर तारा उत्तम शब्द सवारण हारा इस एक का जाने पे ओ आपे करता आपे दे उगवै सूर असर संघार है उचो देख सब विचार है ऊपर आद अंत तिहो लोए आपे करे कथै सुने सोए ओह विधाता मन तन दे ओह विधाता मान मुख सोए प्रभ जग जीवन अवर ना कोए नानक नाम रते पत होए राजन राम रवै हितकार रण में लूजै मनुआ मार राधनंत रह रंगराता तीन पवन जुग चारे जाता जिन जाता सो तिसी जेहा अत निर्मायल सिज सेहा रैसी राम हृदय कपाए अंतर शब्द साच लिवलाए रोस ना कीजै अमृत पीजै रहन नहीं संसारे राजे राय रंक नहीं रहना।

चेतन नित नीत चिंतत ही दिशा सब कोए, चेता एक तही सभोए चित्त वसै राचै हरनाए मुक्त भया पथ।

बंधन काट मुक्त करयाण छाया छूछी जगत पुलाना लिखया किरत तुरे परवाना छिजे जोबन जरुआ सिरकाल काया छिजे पई सिवाल जापै आप प्रभु तेह लोए जुग जुग दाता अवर ना कोए ज्यो पावै त्यो राखै राख जस जाचौ देवै पत साख जागत जाग रहा तुद पावा जा तू मेले ता तुझै समावा जय जयकार जपो जगदीश गुरमत मिलिया बीसा कीस चख बोलन क्या जग स्यों वाद चूर मरै देखै प्रमाद जन्म मुए नहीं जीवन आसा आए चले पहे आस निरासा।

जिन नाम दिया तिस सेव सा तिस बलहारै जाओ, जो उसारे सो ढांसी तिस बिन अवर ना कोए, गुर प्रसादी ते संभला तां तन दुख ना होए, हणा को मेरा

फिर फाही फासे कौआ, फिर पछताना अब क्या हुआ। फाथा चो चुगै नहीं बूझै, सतगुर मिलै ता आखी सूझै। ज्यों मछली

गुणिया गुणले प्रभ मिले क्यों तन मिलो प्यार तिन्ही जैसी थी रहा जप जप हृदय मुरार। अवगुणी भरपूर है गुण पी वसै नाल विण सतगुर गुण ना जपनी जिचर शब्द ना करे विचार। लश्करिया कर संभले आए वजो लिखाए कार कमावै सिर तनी लाहा पल्ले पाए। लब लोभ बुरियाइया छोड़े मनो विसार गढ़ दोही पातशाह की कदे ना आवै हार। चाकर कहिए खसम का सहोए उत्तर दे वजो गवाए अपना तख्त ना बैसै से प्रीतम हथ वड्याइया जय पावै तै दे। आप करे किस आखिए अवरना कोय करे बीजो सूजै को नहीं बह दुली चा पाए। नरक निवारण नर नर साचो साच नाए। वन त्रिण ढूंढत फिर रही मन में करो विचार लाल रतनी लाल रतन बहुमान की सतगुर हाथ भंडार। ऊतम होवा प्रभ मिले एक मन एक पाए नानक प्रीतम रस मिले लाहा लै परथाए। रचना राच जिन रची जिन सिर आया कार गुरमुख बेअंत त्याई है अंत ना पारा वार। राड़ै रूड़ा हर जियो सोई तिस्मिन राजा अवर ना कोई। राड़ै गारड़ तुम सुनो हर वस है मन माहे गुर प्रसादी हर पाई है। मत को परम पुलाहे सो साहो साचा जिस हर तन रास गुरमुख पूरा तिस्सा वास। रूड़ी बाणी हर पाया गुरसब दी बीचार आप गया दुख कटिया हर वर पाया नार। सोयना रूपा संची है तन का चा बिक्षार साहो सदाए संच तन दुबदा होए खुआर। सचियारी सच संचया साचो नाम अमोल हर निर्माइल उजलो पत साची सच बोल। साजन मीत सुजान तू तू सरवर तू हंस साचो ठाकर मन वसै हम बलिहारी तिस। माया ममता मोहनी जिन की ती सो जान बिखिया अमृत एक है बूझे पुरख सुजान। खेमा में होने खप गए खून लाख्या संख गणत ना आवै क्यों गणी खप खप मोए बिसंख। खसम पछाण अपना खूले बंद ना पाए शब्द महली खरा तू खेमा सच सुख पाए। खर्च खरा तन ध्यान तू आपे वसै शरीर मन तन मुख जापै सदा गुण अंतर मन तीर। हम मैं खपै खपाए सी बीजो वथ विकार जंतो पाए विच पायन करता अलग अपार। सृष्टे प्यो न जाने कोय सृष्टा करै सो निश्चय होए संपै कोई सिर त्याई है संपै पुरब लिखे की पाई है। संपै कारण चाकर चोर संपै साथ न चाले होर बिन साचे नहीं दरगे मान हर रस पीवै छुटै निदान। हेरत हेरत हे सखी होए रही हैरान हाँ हाँ करती मैं मुई शब्द रवै मन ज्ञान। हार डोर कंकन कणे करथा की सिंगार मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गलहार। नानक गुरमुख पाई है हर स्यों प्रीत प्यार हर बिन किन सुख पाया देखो मन विचार। हर पढ़ना हर बुझना हर स्यों रखो प्यार हर जपिए हर ध्याइए हर का नाम आधार। लेख ना मिटई हे सखी जो लिखिया कर।